0: पीछे जीरो, आगे जीरो, पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद।
6: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
7: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पर गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं

0: धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं, वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, ताकता जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों की

को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त

0: चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगर लिंक्स ईयर लिंक्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत

सकती है बीजों को। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा है इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हम मिट्टी को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अनजाने में उर्वरकों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। और जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो पुराने समय से हम खेती गृहस्थी में रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सारी बातों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खगेश कुमार। आप हैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भागलपुर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस

0: कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों आन पड़ी है?
1: जी ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने मैम कि प्राकृतिक खेती क्यों आन पड़ी है, क्यों जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि आज हम जितना चीज हम खा रहे हैं वो एक तरह से रसायन से उत्पाद किया हुआ है और वो कहा जाए तो एक जहर है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जहर है, और जहर ये आया कहाँ से? तो जहर आने का मतलब कई कारण है। पहला कारण है कि हम रसायन जो डाल रहे हैं वो मिट्टी में डाल रहे हैं, और मिट्टी में हमारा जितना फसल है वो मिट्टी से ही हमारा उत्पाद आता है। मिट्टी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है, और हम आधार को ही अगर हम बर्बाद कर दिए तो फिर हम जहर ही खाएंगे और जहर ही उगाएंगे। तो आज जरूरत इसलिए पड़ गई है कि आज चाहे वो गरीब तबके के हो या बहुत बड़े घराने से हो, वो बीमारी को बेच नहीं सकता और अपने स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता। ठीक है मैम। तो प्राकृतिक खेती है अपने जीवन को बचाने के लिए, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, खुद आने वाले जो पीढ़ी है उनको बचाने के लिए इसलिए जरूरत है।
0: तो सर जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती की जरूरत क्या है, तो रासायनिक खेती के ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जिसे जिसकी वजह से रासायनिक खेती को पीछे छोड़ा जा रहा है?
1: देखिये रासायनिक खेती का जो दुष्प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव है हमारा मिट्टी। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो रसायन जो है एक कंपटीशन के रूप में किसान इनका अंधाधुन प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम रसायन डाल रहे हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा, हमारे किसान भाई खास करके जो कि रसायन पर टिके हुए हैं, उनके लिए ये संदेश है कि वो अपनी मिट्टी का जांच नहीं करवाते। अगर करवाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। और बगल के किसान जितना रसायन डाल रहे हैं, मान लिया जी वो एक बैग डाल रहे हैं, तो वो आने वाले जो अगले फसल होते हैं उसमें उसका डोज जो है डेढ़ या दो गुना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेढ़ गुना ज्यादा देंगे तो हमारा फसल जो है ज्यादा उत्पाद लेके आएगा। तो रसायन पर किसानों का जो झुकाव है ज्यादा, वो है आपके उनके रासायनिक खाद को ज्यादा देने की आदत सी पड़ गई है, जिनके बदौलत वो रसायन मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ उनका उर्वरा शक्ति भी छिन्न होता जा रहा है, और फसल जो उत्पाद हम लेते हैं, चाहे फल के रूप में लेते हैं, चाहे अनाज के रूप में लेते हैं या तेल के रूप में लेते हैं, उसमें मतलब लगभग देखा जाए तो कम से कम 10-15% वो रसायन का भी प्रभाव आ जाता है, जो कि हम खाते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितना पैसा हम कमाते हैं सारे पैसे को हम डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, इसलिए जरूरत है।
0: रासायनिक खेती का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वो हमारे शरीर पे ही देखने के लिए मिलता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं।
1: जी
0: तो सर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती अपनाई जा सकती है?
1: देखिए प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाना है। ये हमारे पुराने पद्धति है जो की हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो की गाय रखते थे, हल रखते थे, साथ ही साथ अपने घर में बीज भी रखा करते थे। लेकिन ये सारे चीज को जो है ये जब से ये हाइब्रिड का जो कल्चर आया, मतलब F1 जब से ये बीज का इजाद हुआ, तब से हमारे किसान के बीच ये सबसे बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने घर में किसी भी बीज को वो रख नहीं पा रहे हैं। समस्या उनको ये भी है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, और पहले जो साधन हुआ करता था वो अपने पास का जो छोटा बड़ा संसाधन होता था उनमें वो व्यवस्थित करके रखते थे, जो कि अपना ही बीज से वो उत्पाद लेते थे और शुद्ध लेते थे। लेकिन आज क्या है कि आज डंकल प्रस्ताव जब से आया अपने देश में, उनके बाद हमारे देश की कृषि में तो बहुत ज्यादा मतलब उपज आया, इतना आया कि हम विदेशों को भी दे रहे हैं। लेकिन परिणाम यह है कि उत्पाद के साथ साथ आज हम कई तरह के बीमारियों को भी जन्म दे दिए। तो प्राकृतिक खेती जो हमारे गाय से आधारित है, यानी देसी गाय हो तो देसी गाय से हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो देसी गाय का मूत्र भी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं, तो घी ये दही भी हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को जब हम अपनी खेती और अपने संसाधन के जो भी एग्रीकल्चर से के पार्ट होते हैं, वेस्टेज जो हमारे

0: करते हैं उनको अगर हम डिकम्पोज करें तो अपने खेत में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएंगे वो हमारे प्राकृतिक खेती के लिए कारगर होगा मैम।
1: बिल्कुल, तो सर जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं, हमेशा से हमारी पद्धति चली आ रही है कि जो हमारे आसपास सामान है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना, यानी कि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना, तो सर इसके लाभ तो हमें बहुत सारे आमतौर पर पता होते हैं, लेकिन और इसके क्या लाभ हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के?
0: सबसे बड़ी लाभ ये है मैम कि प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाएं। अगर मिट्टी स्वस्थ हो जाए तो हमारा सारा चीज स्वस्थ हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम गाय के मूत्र एवं गाय के गोबर और वो मिट्टी जो हमारे सजीव मिट्टी है, अब मिट्टी वो रहा नहीं, सजीव मिट्टी इसलिए बोला जाता है कि जहां पर हम रसायन डाल दिए वहां के जीवाणु माइक्रोब्स वो क्या हुए, या तो मर गए या नहीं तो नीचे चले गए। तो हम मिट्टी को अगर अपने स्थिति में लाएंगे तो उनको सही स्थिति में लाने के लिए हमको ये समझना होगा कि अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखना होगा, यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य को बचा के रखना है और लंबे समय तक बना रहे, इनके लिए हमको मिट्टी में जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा मैम। तो वो बढ़ेगा कैसे, तो उनको बढ़ाने और उत्पाद को मतलब वास्तविक उत्पाद लेने के लिए हमें जीवामृत की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है। तो जीवामृत कहाँ से आएगा, तो जीवामृत का घर कहाँ है, तो जीवामृत का घर है हमारे मिट्टी में, और वो मिट्टी कहाँ है जहाँ की हम रसायन नहीं डाले हैं। अब रसायन कहाँ नहीं डाले हैं, तो जो हमारे पुराने जंगल हैं या पुराने बड़े हमारे बरगद के पेड़ हैं वहाँ हम कोई रसायन नहीं डाले हैं, और वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का सॉइल जीवित है, उसमें अभी भी जीवाणु करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद है। वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले और गाय का मूत्र और बेसन गुड़ ये छोटा छोटा सामग्री है जो कि हम जीवामृत के रूप में बना के मिट्टी में डालते हैं, तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार आता है और हमको मिट्टी पुनर्जीवित हो जाता है, जिससे कि हमारा उत्पाद जो है मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
1: तो सर आपने अभी बताया कि रसायन नहीं, तो किस तरीके से किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और कौन कौन से खाद रसायन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लाभ कम प्राप्त होगा, तो इस वजह से भी बहुत सारे किसान आज भी रसायन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार के खाद का इस्तेमाल?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मैम कि किसान को उत्पाद से संबंधित उनको ज्यादा परेशानी रहता है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारा उपज जो है घट जाएगा, उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा 3-4 साल का ये अनुभव कहता है कि आपका उत्पाद नहीं घटेगा। हो सकता है आप किसी भी फील्ड में अगर आप रसायन

0: क्या कि रसायन तो आप बाजार से लेते हैं, लेकिन आप जो इनपुट बनाते हैं या खुद बनाते हैं या आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनसे खरीदते हैं, जो कि कम पैसे में वो आपको मुहैया कराता है, कि जिससे आपके फसल में जैसे कि कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या आपका डीएपी के रूप में घन जीवामृत हो, ये सारा इनपुट को अगर किसी रिसोर्स पोर्शन के यहाँ से आप लेते हैं तो उस वो आप कम पैसे में लेते हैं और अपने फसल में डालते हैं, तो उसमें कॉस्ट कम पड़ता है जिससे कि आपके लागत में कमी आती है और उत्पाद आपका बढ़ता है।
1: ये सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और रसायन के दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया और किस तरीके से हम रसायन के बदले भी प्राकृतिक खेती अपनाकर भले ही हमें पहले साल में जब मिट्टी को आदत हो चुकी है तो पहले साल में थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा लेकिन बाद में वो चीज़ें हो जाती है मैनेज, तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए।
0: थैंक यू मैम।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ बम्बई हुआ उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
13: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
14: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
13: और लाइट बिल के
14: अब 0 रुपए कैसे दो?

0: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। श्रोताओं, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ खास बातें आप सभी के लिए उन्नत कृषि में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा हर रोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट, और आज फिर से हमारे एक खास विषय के लिए हमारे पास है एक खास एक्सपर्ट, और उनका नाम है डॉक्टर गिरीश चंद, और ये है एसोसिएट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: और जैसा कि हम अपने लिसनर्स को बता दें, हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है केला के प्रमुख रोग एवं उपचार। वैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केले बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहीं मेट्रो सिटीज़ की बात करें, महानगरों की बात करें, आप जाएंगे तब आपको केले का जो महत्व है वो समझ में आएगा कि वहाँ पर केले कितने महंगे मिलते हैं। क्योंकि केला अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फल है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहारी हैं और बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लिए उपयुक्त जलवायु मिलती है और यहाँ उपजता है और हमारे किसान भाई इसे उपजाते हैं हमारे लिए। लेकिन जब हम इसकी खेती करते हैं, जब हम इसे अपने बागानों में लगाते हैं, तब जरूरी होता है कि हम इसका रखरखाव करें। जो कीट पतंगे होते हैं वो इस पर नजर टिकाए बैठे रहते हैं, और अगर हम इस समय में इनकी सुरक्षा का खास ख्याल ना रखें तो इन्हें कई रोगों से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से हमारे जो केले के जो कई जो गाछ हैं, वृक्ष हैं, वो खराब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को घाटा भी पड़ जाता है। तो आइए, सबसे पहले जरूरत होता है

0: और हमारा जो बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्थिक कृषि की आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और उत्पादन के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा, जब हम बाग को लगाते हैं, बाग लगाने से या केले के पौधे लगाने से लेकर कटाई तक, इसमें बहुत ढेर सारी क्रियाएं होती हैं और ये लगभग 12 से लेकर 13 महीने तक का इसमें टाइम लग जाता है, तब जाकर इसमें कहीं हम फल को काट पाते हैं। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग 1 साल
1: एक साल
0: पूरा लग जाता है। तो 1 साल का ये पौधा होता है और इसमें अगर समय समय पर हम ध्यान नहीं देते हैं और लगातार एक ही खेत में अगर हम किसी फसल को लेते हैं तो इसमें कई तरह से मिट्टी का, मृदा का क्षरण होता है, ह्रास होता है और धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान हमारी फसलों को पहुंचाते हैं। तो इसमें ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारा जो केला का फसल है इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और इनका क्या पहचान है, इनका क्या लक्षण है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। जब तक हम लक्षण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसका निदान या सही दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो केला है, केला में कितने प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें रोग लगता है उसमें उकठा रोग लगता है और उसके बाद दूसरा रोग लगता है वो सिगाटोका रोग लगता है या पत्रलांछन रोग कह सकते हैं। केला का एक तीसरा रोग है, उसे हम कह सकते हैं कि श्याम बर्ण रोग या एंथ्रेक्नोज रोग लग जाता है। और एक चौथा रोग होता है जिसे हम बंची टाप या पौधा छोटा हो जाता है, ये विषाणुओं द्वारा होता है। तो इस तरह से जो हमने चार प्रमुख रूप के रोग बता रहे हैं इसको जान लेना है। पांचवा एक और रोग लगता है, वो होता है सूत्रकृमि या जड़ ग्रंथि रोग होता है, जो जड़ों में गांठें बन जाती हैं, पौधा खुराक लेना बंद कर देता है या खुराक ले भी लेता है तो जड़ में जो सूत्रकृमि होता है वो उसमें गांठ में जमा करते रहता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उत्पादक क्षमता घट जाता है। तो आइए सबसे पहले जो केला में प्रमुख रोग है वो है उकठा रोग, और उकठा रोग का पहचान करना बहुत आवश्यकता है। ऐसे भी आप यदि खेत में देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय है ये, जब रोग का लक्षण अपने कह सकते हैं कि एकदम चरम पे होता है, जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है वो बहुत ही चरम पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा फसल ख़त्म हो जाता है और अगला फिर हम फसल लेने की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो उकठा में दो तरह का उकठा होता है, और एक तो होता है पनामा विल्ट जिसे हम फ्यूजेरियल विल्ट कहते हैं, ये फफूंद जनित रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा आजकल हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है, लगभग हमारे पूरे उत्पादन का 30 से लेकर 40% तक नुकसान पहुँचा रहा है और बाकी सब और दूसरे रोग हैं वो भी नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा इसमें जो उकठा का ही रूप होता है वो जीवाणु उकठा होता है या बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं। अब इसमें देखना है कि लक्षण क्या है, यदि फफूंद जनित लक्षण आते हैं तो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, यदि बैक्टीरिया जनित रोग दिखाई देता है लक्षण तो आप बैक्टीरिया नाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, तभी केले के जो रोग लगते हैं उससे आप निदान पा सकते हैं। तो फफूंद जनित रोग में जो लक्षण होता है, शुरुआत इसका जब पहला बारिश होता है जून के प्रथम सप्ताह में या जून के मध्य में, उसी समय इसका जो फफूंद होता है उसके जो बीजाणु होते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं उसके जो अंडे होते हैं, उसी समय इसका जमाव शुरू हो जाता है। और ये इतना खतरनाक कह सकते हैं रोग होता है, इतना भयंकर रोग होता है कि इसके जो अंडे होते हैं यदि मिट्टी में रहता है तो वो 25 से लेकर 30 साल तक इसके अंडे जीवित रहते हैं, और यदि हम फसल का मतलब लेने के बाद खेती का उत्पादन करना केले का बंद कर देते हैं, दूसरी फसलों को अगर हम समावेश कर लेते हैं, फिर अगर हम 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी यदि केले की खेती करेंगे फिर पुनः ये रोग जागृत हो जाता है, उग्र रूप में आ जाता है। तो ये फफूंद जनित रोग का लक्षण कैसा होगा, लक्षण इसका जैसे ही पहला बारिश होता है फफूंद इसका जागृत हो जाता है, बीजाणु जमने शुरू हो जाते हैं, इसका जो जड़ तंत्र होता है जड़ तंत्र में प्रवेश करता है और जड़ तंत्र प्रवेश करने में उसमें अपना संख्या बढ़ा लेता है और इसमें जो वुंड्स बनता है, घाव बनाता है और जड़ को खुराक लेने से

0: भुगता है, इसका जो जाइलम होता है वो चोक कर जाता है, यानी जिससे हमारा पौधा खुराक लेता है, पानी लेता है, तत्व लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है और पौधे में ले जाता, पत्ती तक पहुंचाता, फिर फोटोसिंथेसिस करके नीचे तक इस तरह से हमारी जो क्रिया होता है पौधे का वो पूरा ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। और जैसे ही चोक करता है उसके तुरंत बाद इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ओल्डर लीव्स होते हैं, उस पर पीले पीले कलर के धब्बे दिखाई देते पत्तियों के किनारे से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है। और जब ये रोग उग रूप में आता है तो इसका जो तना होता है, इसके तने तो हम कह सकते हैं कि ये आभासी तना होता है, स्यूडो स्टेम होता है, और खानी सहित यानी पुष्पावस्था में है तो पुष्पावस्था में, या फल वाले अवस्था में तो फल अवस्था में, या ये नहीं भी हुआ है तब भी ये जैसे ही रोग लक्षण दिखाई देता है तो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर ये जाकर गिर जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पूरा पूरा हमारा जो उत्पादन होता है कह लीजिए खत्म हो जाता है, जिस पौधे में ये रोग लग गया उसका उत्पादन जीरो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका लक्षण होता है। इसका लक्षण पहचान करने के बाद आप कैसे इसका उपचार करेंगे, तो उपचार करने के लिए ये है कि आप इसमें जो फफूंद नाशक दवाएं हैं उसका आप शुरुआती अवस्था में जरूर ध्यान दें। जब इसका गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे में कार्बेंडाजिम या बविस्टीन कम से कम 10 ग्राम पर गड्ढा इस तरह से हम दे देंगे, तो इसमें जो दूसरे हानिकारक फफूद होते हैं खासतौर से फ्यूजेरियम, वो उसका संख्या खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो इस तरह से पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं और शुरुआत में नहीं ध्यान देते हैं तो ये जो सकर्स ले आते हैं, इसका जो बच्चा ले आते हैं केले का, वो ध्यान देंगे कि वो किसी टिशू कल्चर प्रयोगशाला से ले आएं या जो हमारा सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल्स होता है, नर्सरी होता है, वहाँ से ले आएं, या दूसरे खेत से या अपने खेत से दूसरा नया इसका सकर्स लगाना चाहते हैं, नए खेत में या बगान नया तैयार करना चाहते हैं तो इसका सकर्स जो होता है उसको उपचार करके लगाएं। उपचार करने के लिए जो मैंने अभी पूर्व में दवा बताया कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन, उसे आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए, या ट्राइकोडर्मा आप ले सकते हैं, बायोएजेंट होता है, जैव जीवनाशी होता है जो फफूंद नाशक के तौर पे काम करता है, दूसरे फफूंद को खा जाता है, खासतौर से फ्यूजेरियम को खूब खाता है। तो इस तरह से हम बायोएजेंट में ट्राइकोडर्मा लेंगे तो ट्राइकोडर्मा का अगर लेते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। इस तरह से आप चाहे फफूंद नाशक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं कार्बेंडाजिम बविस्टीन का या टाइकोडर्मा का, घोल जब बनाएंगे तो आधे घंटे तक सकर्स को यानी केले के बच्चे को उसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद छायेदार जगह में रखेंगे, घोल में रखकर फिर उसके बाद घोल से निकालेंगे और छायेदार जगह में रख देंगे ताकि इसमें जितना मतलब पानी है एक्सेस ज़्यादा वो निथर जाए, निकल जाए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए पानी निकल गया है तब जाकर रोपड़ी करने के लिए तैयार रहता है, तो गड्ढे में आप रोपाई करेंगे। तो इस तरह से पूरे जीवन भर ट्राइकोडर्मा इसके साथ रहता है और कभी इस तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है या फफूंद होता है या सूत्रकृमि होता है इसको कभी आने नहीं देता है, तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। आप अगर ये भी क्रिया नहीं कर पाए हैं और खड़ी फसल में आपको जुलाई में इसका लक्षण पूरा पौधे दिखाई देता है, पौधा पीला पीला हो जाता है, अगस्त में खानी सहित गिर जाता है, सितंबर में और भयंकर रूप हो जाता है, अक्टूबर में जाते जाते पूरा बागान खत्म कर देता है, तो आप शुरुआत में जब बारिश होता है जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के शुरुआत में, तो उसी समय बारिश के ठीक बाद आप एक बार कार्बेंडाजिम या बविस्टीन का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसका खूब अच्छी तरह से भिगो दें, और ऐसा अगर नहीं है तो आप टाइकोडर्मा को भी आप ले लीजिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसको भिगो दें। तो इस तरह से भिगोने की जो प्रक्रिया होता है वो 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार करते हैं, तो इस तरह से खड़ी फसल में भी हम जो रोग लग जाता है उसे रोक सकते हैं। और पनामा रोग या इस तरह से कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग है यहाँ अपने क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्र बिहार आजकल बहुत जोरों पे है कि हमारे केला के फसल में पीलिया रोग लग गया है, तो पीलिया रोग हो या अंगूठा रोग हो या पनामा रोग हो सब एक ही तरह के हैं, तो ये फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मास्पिसिस क्यूबेंस नामक फफूंद से होता है, तो इसके रोकथाम के लिए भी मैंने आपको बताया वो इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो आप रोकथाम इस तरह से करेंगे। दूसरा एक और इसी तरह का रोग होता है वो जीवाणु

0: से होता है उसे हम बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। तो बैक्टीरियल बिल्ट रोग के रोकथाम के पहले आप ये देख लीजिए कि इसका लक्षण किस तरह का है, बैक्टीरियल की तरह से है या फफूद की तरह से है। तो फफूद का मैंने बताया, बैक्टीरियल का इसका थोड़ा अंतर है, इसमें जो पत्तियां होती हैं वो किनारे वाला ना सूख कर बीच वाला सूखता है। इसका जो लक्षण, ये भी बारिश होने पर जब ज़्यादा गर्मी होता है और ज़्यादा उमस होता है और ज़्यादा नमी होता है वातावरण में, इस समय ये भी जो जीवाणु होता है वो भी उग्र फार्म में आ जाता है। तो जीवाणु आएगा तो ये भी साथ साथ में लक्षण दिखाई देता है पौधे के ऊपर। तो जैसे बताया आपको इसका लक्षण इस तरह दिखाई देता है, तो आप इसमें पुरानी पत्तियों पर ना ध्यान देकर नई पत्तियां जो आती है उस पर देखिए, सबसे पहले वही पीला होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि उसमें बहुत पौधे पर अंतर हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको जहाँ से पौधा प्रभावित होता है, एक दो पौधे में अगर इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो जहाँ से जड़ और तने का लगाव होता है उसे हम कॉलर रीजन कहते हैं, उसे ले लीजिए और काट दीजिए। काटने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा गोल आकार छल्ला होता है, तो ये जो गोल आकार छल्ला होता है इसमें से बहुत बैक्टीरियल ऊजिंग होता है, जिसे हम कह सकते हैं हल्का पीले रंग का, पहले शुरुआत में तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का ये दूध की तरह से पदार्थ लसलसा दिखाई देगा, फिर ये दो तीन घंटे के बाद काटने के बाद ये हल्का पीले पीले रंग में हो जाता है। ये सबसे अच्छा पहचान करने का तरीका है जो बैक्टीरियल विल्ट होता है। अगर ऐसा काट देते हैं, ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है, यदि उसमें जो जहाँ से काटे हैं बीच वाला पोर्शन में इसलिए लसलसा पदार्थ या दूध की तरह पदार्थ नहीं निकल रहा है और वो सूखा है और इसका जो बीच वाला पोर्शन हल्का भूरे रंग का है, तो ये समझ जाइए कि ये फफूद वाला रोग है जिसे हम पनामा बिल्ट कह रहे हैं। और यदि इसमें लसलसा पदार्थ निकलता है तो समझ जाइए कि जीवाणु है। और दूसरा एक और लक्षण हम जीवाणु का बता देते हैं कि जब काट देंगे तो वहाँ से बहुत तेज सड़ा हुआ जिसे मछली होता है या अंडा होता है, इस तरह बदबू तीक्ष्ण गंध आता है, ये बैक्टीरियल बिल्ट जो होता है केला में, ये सबसे बड़ा दूसरा लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण का अगर पहचान हो जाता है तो आप बैक्टीरियल नाशक दवाओं में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लीजिए, इसके साथ थोड़ा कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक साथ 15 दिन के अंतर में दो बार प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि ये जो बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या है वो नहीं होगा। एक और आपसे रोग का चर्चा हम करना चाहेंगे, वो है सीगाटोका। सीगाटोका ये किसी भी समय आ सकता है, लेकिन जो बिल्ट का समस्या दिखाई दे रहा है अपने इस बिहार क्षेत्र में वो जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है और अक्टूबर तक पूरा खूब रहता है खेत में। इस समय आप जाएंगे तो खूब आपको उगठा रोग का लक्षण दिखाई देगा और इस समय आपको दूसरे रोग भी दिखाई देंगे।
1: यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में जो रोग हैं वो केले के पेड़ में या फिर वृक्ष में लगते
0: जी, हैं। जी जी जी वृक्ष में लगते हैं। और एक और आपको अलग से रोग बताना हम चाहेंगे जो सीगाटोका है, वो सीगाटोका इस समय तो लगता है और ज्यादातर इसका जो आक्रमण होता है वो देखते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में खूब होता है।
1: अच्छा।
0: इस समय भी होता है लेकिन इसका उग्र रूप उसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो ये किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सकता है सीगाटोका। तो इसके जो लक्षण होते हैं पत्तियों के ऊपर गोल गोल आकार के पीले पीले शुरुआत में धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे भूरे और काले काले रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर लक्षण बनते हैं तो पत्तियों के चारों तरफ भूरे भूरे काले काले रंग के धब्बे बनते हैं, तो पत्रलांछन केला का रोग होता है जिसे हम सीगाटोका रोग कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए डाइथेमियम 45 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम 3 बार छिड़काव करेंगे और छिड़काव करते समय ये ध्यान देंगे कि जो केला का पत्ता होता है वो बहुत चिकना होता है, इसमें हम किसी स्टीकर का या जो डिटर्जेंट्स पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो दवाएँ जो हमारी हैं केले के पत्ते के ऊपर चिपकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधे में जो रोग लगे हुए हैं सीगाटोका को उससे बचाएंगे। लक्षण इसका हमने आपको बताया और किसान भाइयों एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि इसके जो पत्ती होता है, पत्ती के एकदम किनारे नहीं, किनारे से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए तो एकदम एक तार एक लाइन से कभी कभी इधर उधर मतलब छिटफुट इधर उधर आपको पत्तियों के ऊपर धब्बे शुरुआत में पीले रंग के रहेंगे, बाद में वो काले भूरे और काले रंग बदल जाते हैं।
1: तो ये लक्षण थे
0: जी, इस तरह से लक्षण होता है।
1: तो ये जो सारे रोग हैं आपने उपचार के बारे में बताया, तो सारे रोग जून से लेकर के अक्टूबर माह तक लगते हैं या फिर कोई
0: उकठा रोग है, उकठा रोग से जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है, लेकिन ये जो

0: आपको हम अभी बताए हैं ये सीगाटोका का, ये पौधे के छोटे अवस्था में वो जनवरी फरवरी में भी लग जाएगा, वो इस समय भी अक्टूबर नवंबर में भी लग जाएगा।
1: तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्बेंडाजिम आप अगर गड्ढे खोद कर लगा रहे हैं उसके पौधों को, तो पहले कार्बेंडाजिम डाल दें और उसके बाद लगाएं। तो कुछ बातों का आप खास ध्यान रखेंगे तो आप इन अपने केले के वृक्षों को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो बस इसका खास ख्याल रखें। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको बड़े विस्तार में बताया और उपचार के बारे में भी बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा जो एक वक्ता है वो कह सकता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: इसमें अभी चर्चा जो इस तरह दो तीन रोग का हो गया, एक और है श्याम बर्ड रोग जो एंथ्रेक्नोज कहते हैं। हाँ। ज्यादातर वर्षा ऋतु में आता है, वर्षा ऋतु में जैसे आता है तो इसका जो बीजाणु होता है ज़्यादा फैलने लगता है, तो इसका जो लक्षण होता है पत्तियों के ऊपर, फलों के ऊपर, तने के ऊपर, इस तरह से जो ऊपर भाग होता है, ये जो एरियल भाग होता है उसके ऊपर काले काले रंग का धब्बा बनाता है। तो इससे जो हमारा फल का गुणवत्ता खराब होता है, बाजार भाव कम हो जाता है या खराब कर देता है, और धीरे धीरे फल को या तने को सड़ा भी देता है। अच्छा। और पत्तियों के ऊपर इसका जितना काला काला धब्बा हो जाता है कि ये खुराक लेना बंद कर देती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए आप कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्टीकर मिलाकर इस तरह से 10 से 12 दिन के अंतर पर कम से कम छिड़काव करेंगे तो जो श्याम बर्ड रोग है इससे भी केला की फसल को बचाया जा सकता है।
1: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
0: जी। एक और इसमें रोग लग जाता है वह है बंची टॉप। ये तो पहले बहुत लगता था लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने और किसान भाइयों के थोड़ा खेती करने का तरीके में नए तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं फसलों का, तो इसमें ये रोग अब आता है लेकिन कम आता है। लेकिन फिर भी अगर ये रोग आ जाता है तो ध्यान देंगे शुरुआती अवस्था में ही इसका लक्षण दिखाई देता है। जैसे पौधा आप ले आए 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है, लगाते हैं, जब पौधा पकड़ लेता है तो इसका लक्षण शुरुआत में ही 3-4 महीने का सकर्स होता है, उसी के ऊपर ही इसका लक्षण दिखाई देता है। पौधा छोटा रह जाएगा और उसमें जो पत्तियां ढेर सारी निकलेंगी लेकिन छोटी छोटी रहेंगी और पौधे का विकास रुक जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं बंची टॉप रोग है केला का। अच्छा। ये विषाणु वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है और एक पौधे से दूसरे पौधे या एक खेत से दूसरे खेत में जो फैलाने का काम करता है, इसमें कुछ हमारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, वेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा होता है। ये कीड़ा एक खेत से दूसरे खेत या एक पौधे से दूसरे खेत में फैलाने काम करता है। तो यहाँ आवश्यकता है कि विषाणु नाशक दवा के जगह पे आप कीटनाशक दवाओं में इमिडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पे छिड़काव 2 बार कर देंगे तो इस तरह से जो कीड़ा लगता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो बंची टॉप रोग है अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
1: तो किसान भाइयों आपने सुना केले के प्रमुख रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर गिरीश चंद जी और इनसे विशेष बातें हो रही थी इस विषय पर और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डॉक्टर साहब ने और ज़रूरत है कि आप इनकी बातों को समझें, इसे अपनाएं और जो भी अगर रोग हैं उनको पहचान कर उन्हें जो भी कीटनाशक दवा या फिर और भी जो दवाएं डॉक्टर साहब ने आप सभी को यहाँ पर आप सभी के सामने कहा प्रिस्क्राइब किया तो आप उसे लेकर छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आपसे और मुलाकातें होंगी और हमारे किसान भाइयों से भी मेरी मुलाकातें होती रहेंगी उन्नत कृषि में। तो सुनते रहें 90.8 FM ग्रीन हमेशा और सुनते रहें उन्नत कृषि।
2: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या

0: किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
6: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन।

0: सेहत सही लाभ गई।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96

और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीज उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ग्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर
या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें, या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी

0: की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

अब फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
9: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे धान में कीट व्याधियों का नियंत्रण कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर SN रे। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
10: थैंक यू मैडम।
9: डॉक्टर साहब, धान में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उनके नाम सबसे पहले बता दीजिए।
10: बिहार भारत की सर्वाधिक धान उगाने वाला राज्य है। बिहार राज्य में धान की खेती एक प्रमुख फसल के रूप में की जाती है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन उपज क्षमता सबसे कम होती है। कम उपज क्षमता के बहुत से कारण हैं, परंतु कीट समस्या सबसे प्रमुख है। धान की अच्छी पैदावार कीट समस्या का एक मुख्य बाधक रही है। खरीफ मौसम में तो कीट समस्याएं बढ़ाने में और भी उपयुक्त है। इस मौसम में आबोहवा आर्द्रता के साथ साथ गर्म रहती है, यह कीटों के प्रबंधन एवं गुणन के लिए बहुत ही सहायक है। अतः इस मौसम में उचित वातावरण मिलने पर फलस्वरूप इसकी संतति तीव्र गति से बढ़ती है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उचित वातावरण मिलने पर उग्र रूप धारण

0: धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे धान का तनाबेधक कीट, धान का मधुआ कीट, गंधी कीट, राइस हिस्पा, सैनिक कीट आदि। इस कीटों के अलावे धान में लगने वाले प्रमुख कीट धान की बभनी, धान का केसवर, धान का पत्र बेलक, धान का पतंगा आदि हैं। धान की फसल की क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों एवं कीटनाशियों के प्रबंधन में जानकारी आवश्यक है, जिससे कि उचित समय पर कीटों को रोकथाम कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, तना भेदक कीट की बात करते हैं, ये तो धान को फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, साथ ही प्रबंधन कैसे करेंगे?
0: तना कीट भेदक, तना भेदक मादा पतंग हल्के पीले रंग उजली कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल पर बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों के गुच्छे से रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। यह मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं, जिसको हम लोग शिशु कहते हैं। यह लार्वा पत्तियों से चलकर पौधे की बढ़ती कोमल में भेदक तने में घुस जाती है और अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप तना सूख जाता है
1: जी।
0: इसे डेड हार्ट का या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती तथा इन्हें वाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल दो या अधिक बार ली जाती, तना बेधा का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करें। प्रबंधन में हम जानना चाहते बताना चाहते हैं, इस कीट के बचाव हेतु रुपाई के समय पौधों की पत्तियों को ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रुपाई करें, ताकि इस कीट के अंडे गुच्छे में खेत में न जा सके। पौधों को रोपने से पहले जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस एवं साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तना बेधक का बचाया जा सकता है। तना बेधक व्यस्क को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तना बेधक कीट के अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। तना बेधक की आर्थिक क्षति होने पर कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम, फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरॉन 3G 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोक्रोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
1: जी, तो ये बात हो गई तना भेदक कीट की, उसका नियंत्रण से कैसे पहचानते हैं और ये कैसे हानि पहुंचाता है फसलों को। अब मधुआ कीट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसका पहचान कैसे किया जाए?
0: धान का मधुआ कीट भी प्रमुख कीट है। यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर लंबी होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुँचाते हैं। यह कीट धान के पौधे के तनों से रस को चूसते हैं, जिसे पत्तियां सूख एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था में हॉपर बर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान की ऊपरी भूमि में अपेक्षा निम्न भूमि की धान पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के तनों को रस चूसता है, जिससे

0: पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के प्रकोप होने पर वृद्धि की अवस्था में पुष्प एवं गुच्छ निकलने के बाद होता है, तो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10-70% तक क्षति हो जाती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। हरा मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। इसका प्रबंधन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपनी करने से इसका प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप अधिक होता है, उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा नेत्रजन का प्रयोग इस कीट के बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों की क्षति प्रति हिल 5-10 मधुआ कीट दिखाई दे, तभी कीटनाशी दवा का प्रयोग करें। तरल दवा में बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 250 मिलीलीटर, या थायोमिथोएक्जेम दवा का 250 ग्राम, या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस कीट का ध्यान रखें कि कीटनाशी का घोल पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुँचे।
1: जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया था गंधी कीट जो एक प्रमुख कीटों में से एक है जो धान में लगते हैं और इन्हें हानि पहुँचाते हैं, तो इसका प्रबंधन और इसकी पहचान कैसे की जाए?
0: गंधी कीट भी एक बहुत ही हानि पहुँचाता है। यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है, जिसके पीठ पर काले बादामी रंग का धब्बा पाया जाता है। इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, जिसकी इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। इस कीट की प्रकोप आघात वाले किस्म में ज़्यादा होता है। वयस्क मादा पीले रंग का 20-30 अंडे पत्तियों के एक कतार में देती है। इस अंडों से 6-7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों अवस्था में फसल को दुग्धावस्था के दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों पर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण अगाध प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट का आक्रमण हो जाता है, उस खेत के धान को चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए खेत के मीणों को खरपतवार न उगने दें, क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। खेत में प्रकाश प्रपंच, जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर 20 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से, ताकि वयस्क कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत को चारों ओर धान की फसल को साफ कर देना चाहिए, घास के साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या 1 से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े, तो इकालक्स डस्ट या मलाथियन डस्ट या प्रोफेनोल डस्ट का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में इसका भुरकाव करें, जिससे कि इसे निदान मिल सकता है।
1: जी, और अब बात करते हैं पत्र लपेटक कीट की, इसकी पहचान और नियंत्रण कैसे करें?
0: पत्र लपेटक कीट भी कभी कभी बहुत ही हानि पहुंचाता है। इस कीट की भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिससे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षति पाई गई है। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का वयस्क हल्का बादामी रंग का होता है, तथा इसको पंखों पर काली धारियां पाई जाती हैं। वयस्क मादा पत्तियों की सिराओं को या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इस अंडों से 3-4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागों बनाकर पत्तियों को

0: किनारे से मोड़ देती हैं और अंदर ही अंदर हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां की सफ़ेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु लार्वा जिसको लार्वा का अवस्था कहते हैं फसल ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इस प्रबंधन के लिए खेत के मेड़ को उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की संख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने हेतु ट्राइकोग्रामा क्लोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। अंतराल पर 6 बार करें। 10% पत्तियों की क्षति होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण हेतु कोई रासायनिक दवा करते हैं तो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 800 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1,000 लीटर में पानी का छिड़काव के साथ कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में एक और कीट सैनिक कीट, ये भी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है जो कि फसल को हानि पहुंचाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
0: सैनिक कीट ही बहुत ही हानि पहुंचाता है। जब धान पकने की स्थिति में होता है उस समय यह कीट बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है। इसके शिशु हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यह कीट धुंधली के बाद रात में पौधों को पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं और इस कीट का के द्वारा अधिक आक्रमण होने पर पकने के पूर्व ही फसल की बालियां कटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अधिक आक्रमण होने पर पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए धान की कटाई के बाद पुआल एवं खर पतवार एवं को नष्ट कर देना चाहिए। धान के कटते ही हल चलाकर खेत को जुताई कर देना चाहिए जिससे कि शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु या 1 वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो खेत के मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या कोशिश करें कि जो भी किसान करें लार्ज स्केल पर करें जिससे कि इसका निदान मिल सके। नहीं तो एक जगह आक्रमण करने पर या दवा देने पर दूसरी जगह भी ये चले जाते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि समूह में इसका उपचार करें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, उनका पहचान कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, सारी जानकारी आपको किसान भाइयों मिल गई होंगी और आशा करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो 1-2 महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को 1-2 महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
7: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं।

0: पर रबी फसलों की ओर ध्यान ना देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं, और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपना

0: तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगर लिंक्स ईयर लिंक्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की

स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरियां जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं। और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: का अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी भारत की नहीं है, ये कहानी है तिब्बत की। हम जो कहानियां कहते हैं, सुनते हैं, वे सब कहानियां हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होती हैं, या यूं कहें कि संस्कृति का ही एक रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्त होता है। जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं, उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियां आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की यादों में ही जीवित रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप लिए भी रहती है। आज जो आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये तिब्बत की लोक कथा है। तो आज हम सुनेंगे तिब्बत की लोक कथा, लेकिन कहानी का नाम क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं। आपने पूछा भी तो नहीं। तो आपने अगर कहानी का नाम पूछा है तो मैं कहानी का नाम बता देती हूँ। कहानी का नाम है राख की रस्सी। ये कैसा नाम है? ये ही तो नाम है, राख की रस्सी। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि राख की रस्सी कैसे बन सकती है। रस्सी तो अलग होती है और राख अलग होती है, और राख की रस्सी कैसे बन सकती है? तो बस यही राज है इस कहानी का। इस कहानी में ऐसे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं जिन्हें सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। तो हम शुरू करें अपनी कहानी। तो लीजिए, पेश है आप सब बच्चों के लिए एक लोक कथा, तिब्बत की लोक कथा राख की रस्सी। पता है बच्चों, लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर

जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। बस यही चिंता लोनपोगार को सताती रहती थी। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। बच्चों, जानते हैं आगे क्या हुआ? लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी पता है क्या हुआ? तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। अब बेचने से जो रुपए मिले, उससे उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन पता है क्या किया? दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और पता है बच्चों क्या हुआ? हुआ भी वही कि वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। पता है आगे क्या हुआ? भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। पता है लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। पता है बच्चों क्या हुआ होगा आगे? अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। कैसी लगी आपको कहानी?

हाँ हो ये अच्छी बात है, लेकिन लोन पुगार अपने बेटे के बारे में ये सोच सोच कर परेशान थे कि न जाने मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, दुनिया तो उसे बेवकूफ बना लेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। ये अच्छी बात है कि लोन पुगार भोला था, होशियारी नहीं थी उसमें, यानी कि छल कपट उसमें नहीं था। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी थी, और वह क्या बात थी बच्चों? वह यह बात थी कि जब जब लोन पुगार ने बेटे को कोई काम करने के लिए कहा, तब तब लोन पुगार के बेटे ने वो काम किया। लेकिन लोन पुगार के बेटे ने अपने पिता से ये सवाल नहीं किया कि ये काम आप उसे क्यों दे रहे हैं। बस लोन पुगार ने अपने बेटे से काम करने के लिए कहा और लोन पुगार के बेटे ने वह काम कर दिया। अब आपको ये सोचना है कि अगर इस कहानी में लड़की नहीं होती तो क्या होता? तो कहानी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती। कहानी कहाँ खत्म होती? वही जहाँ पहली बार लोन पुगार ने अपने बेटे से कहा कि तुम ये भेड़ लेकर जाओ और जौ के 100 बोरों के साथ वापस आना। तो कहानी तो वही खत्म हो गई होती। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं, नहीं, कहानी वहाँ खत्म नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती? वह इसलिए नहीं होती, अगर लड़की नहीं मिलती तो कोई और मिलता, कोई और व्यक्ति मिलता लोन पुगार के बेटे को, और वह इस समस्या का समाधान बता देता। अच्छा बच्चों, आप एक बात और सोचिए, क्या ये जरूरी है कि हमारे पास कोई समस्या हो और हर बार हमें कोई व्यक्ति उस समस्या का समाधान बताए? ये तो जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम कभी समझदार बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समस्या आएगी और हमें लगेगा कि उस समस्या को सुलझाने के लिए कोई एक व्यक्ति हमारी मदद करेगा और फिर हमारी समस्या सुलझ जाएगी। यानी हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। और हमें करना क्या है? हमें यही करना है, अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान खोजने की कोशिश करें, खूब जोर डालें अपने दिमाग पर कि अच्छा ये समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। लेकिन लोन पुगार के बेटे को हर बार वो लड़की मिल गई, लड़की ने एक समाधान बता दिया, वही समाधान लेकर लोन पुगार का बेटा अपने पिता के पास चला गया। तो यानी कि लोन पुगार के बेटे को तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी समस्याओं के समाधान खुद खोजने हैं। अगर नहीं भी मिल पाए मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तसल्ली तो होगी ना कि हमने मेहनत की है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप अपने दिमाग में जितनी तरह के समाधान खोज सकते हैं वो खोजने की कोशिश करते, धीरे धीरे हम समस्याओं का समाधान करने लगते, बस ऐसे होता जाता। लोन पुगार के बेटे ने जब दूसरी बार लड़की से समाधान मांगा तो उसने ये भी सोचा था और उसे ये लग रहा था कि लड़की यहाँ जरूर आएगी। तो लोन पुगार के बेटे को ऐसा क्यों लगा कि वह लड़की मुझे दोबारा मिलेगी? अगर वह लड़की नहीं मिलती तो कहानी कैसे आगे बढ़ती? तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे कि अगर यह लड़की दोबारा नहीं मिलती तो कोई तीसरा व्यक्ति मिलता, और कोई तीसरा व्यक्ति मिलता तो लोन पुगार के बेटे की समस्या का समाधान भी बता देता, तो कहानी फिर आगे बढ़ती। तो लोन पुगार ने उस लड़की की परीक्षा क्यों लेनी चाहिए? आपको इसका जवाब मिलता है कुछ? सोचिए। अब आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए ना तो लड़की आएगी और ना कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, और ना ही मैं आपकी मदद करूंगी। तो बच्चे सोचिए कि लोन पुगार ने उस लड़की की परीक्षा क्यों ली? आप में से कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि लोन पुगार अपने आप को बहुत चतुर समझता था और उसे ये नहीं लगता था कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा चतुर हो सकता है। ये तो हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि लोन पुगार आखिर उस लड़की तक पहुंचना चाहता था कि वो कौन व्यक्ति है जो मेरे बेटे की मदद कर रहा है, वह उस व्यक्ति की चतुराई की परीक्षा लेना चाहता था। लेकिन कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि लोन पुगार
अपने बेटे को लेकर

0: बहुत चिंतित था कि मेरे बाद उसका क्या होगा। याद आया आपको कहानी में? बिल्कुल सही कहा आपने। लोन पुगार को ये चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, और अगर कोई व्यक्ति मेरे बेटे की इस तरह से मदद कर रहा है तो यकीनन वह बहुत समझदार होगा, और अगर मैं उस व्यक्ति के साथ अपने बेटे को छोड़ दूं या उस व्यक्ति को अपने घर ले आऊं, तो मेरे बाद मेरा बेटा और वह व्यक्ति साथ साथ रहेंगे, तो मेरे बेटे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो लोन पुगार के बेटे ने जब हर बार आकर अपनी आपबीती सुनाई, उस लड़की की चतुराई के बारे में बताया, तो लोन पुगार को ये तसल्ली हो गई थी, अगर इस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो फिर मैं चैन से रह सकता हूँ, फिर मुझे अपने बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लोन पुगार ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए। और उसने परीक्षा के लिए क्या चुना था? उसने परीक्षा के लिए एक असंभव बात चुनी थी। और ये असंभव बात क्या थी? असंभव बात यही तो थी, राख की रस्सी। यानी कि एक राख की रस्सी कैसे बन सकती है? रस्सी को तो हम पकड़ते हैं, रस्सी को पकड़कर हम ऊपर चढ़ जाते हैं, रस्सी से हम सामान को बांधते हैं और नीचे डाल देते हैं, लेकिन राख की रस्सी तो कैसे काम करेगी? और कहानी में ये भी तो कहा गया है कि राख की रस्सी को तो हम छू भी नहीं सकते, जैसे ही छुएंगे उसे वैसे राख बिखर जाएगी और रस्सी खत्म हो जाएगी। तो लोन पुगार को ये समझ में आने लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राख की रस्सी बन जाए, इसलिए उसने लड़की की ये शर्त मान ली थी कि हाँ मैं राख की रस्सी लेकर आऊंगी, लेकिन आपको उसे पहनना होगा। बस लोन पुगार यही मात खा गए, और लड़की की चतुराई के सामने उनकी अपनी चतुराई धरी की धरी रह गई। तो मजा आया इस कहानी में? आपके पास भी तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारे चतुराई वाले सवाल होंगे जिनके जवाब खोजने में आपको मजा आएगा। तो आप कुछ ऐसी ही मजेदार समस्याएं खोजिए और उनके समाधान खोजिए और हमें जरूर बताइएगा। तब तक मैं उषा दीदी आप सभी से विदा लेती हूँ, और आप सब बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार, इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या A&M से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और A&M से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
6: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
9: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
11: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
12: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SK चौधरी सर। सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद मैडम।
12: सर सबसे पहला प्रश्न यही है कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है?
13: धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा। जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4,22,00,000 हेक्टेयर में की जाती है। आजकल धान का उत्पादन लगभग 9 करोड़ टन तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा बिहार राज्य में इसकी खेती लगभग 31,00,000 हेक्टेयर में की जाती है तथा इसकी उपज 70,00,000 टन तक तथा उत्पादकता 22.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी क्षमता से काफी कम है। इसके कई कारण प्रमुख हैं, जैसे कि कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन, बीज की गुणवत्ता में कमी, और भी इसके अलावा जो खरपतवार का प्रबंधन की समस्या और गलत शस्य क्रियाएं, इस सब कारणों से जो औसत उपज है वो बिहार राज्य में कम है। धान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की खेती को अपनाना होगा। हमारे देश तथा बिहार राज्य में मुख्यतः दो परिस्थितियों में धान की खेती की जाती है, पहला वर्षा आधारित और दूसरा संचित अवस्था में।
12: जी सर, अगर अब हम बात करें कि धान में अगर

0: खरपतवार का प्रबंधन ना करें तो खरपतवार से किस प्रकार से हानि पहुंचता है हमारे धान के फसल को?
1: सबसे पहले तो खरपतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसलों में खरपतवार से लगभग 15 से 85% तक का नुकसान होता है। कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है। सीधे बोए गए धान में खरपतवार से नुकसान रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणु एवं कीट व्याधियों का भी आश्रय देता है। कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धान में 20 से 40 किलोग्राम नत्रजन, 5 से 15 किलोग्राम स्फुर और 15 से 50 किलोग्राम पोटास तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 7 से 14 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेता है तथा धान की फसल में पोषक तत्व से वंचित कर देता है और यह डायरेक्टली जो उपज है उसको कम कर देता है।
0: तो धान के फसलों में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो उगाते हैं?
1: मुख्यतः धान में या कोई भी फसल में तीन तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार और एक होता है मोथा कुल के खरपतवार। उसमें से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसमें नाम है जो इक्लिप्टा अलवा जिसको कहते हैं, कैना भी नाम से जानते हैं, सिजुलिया एक्जेलरिस है, कोमेलिना बेंगेलसिस है, एजीटीटम कोनोजॉइट्स जो उस फैमिली का प्रजाति का जो घास है वो निकल आते हैं और उस तरह से लाल साग को भी देखा गया है जो कभी कभी निकल आते हैं खरीफ मौसम धान के फसल में। इसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसको खास घास कुल के खरपतवार है, उसमें जो है छोटा सावक जिसको हम लोग इकाइनोकोलोना कोलोनम भी कहते हैं। उसके बाद एक सावक होता है जो इकाइनोकोलोना क्रुसिगेली होता है। इसके अलावा जो है मरुआ जिसको एलोसिन इंडिका। इसके अलावा एरगोटिस जेपोनिका जो मुरमुर नाम से जो खरपतवार है वो प्रायः सकरी पत्ती वाले खरपतवार है। इसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार आते हैं उसमें से जो साइप्रस इरिया है, साइप्रस फैमिली के मुख्य खरपतवार आते हैं, जिसमें साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस जो कि स्केपरस मेरिसिमस इत्यादि, ये जो जो खरपतवार है वो मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
0: तो सर कौन सी स्टेज पे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं?
1: धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान, खरपतवारों की संख्या, धान की किस्म एवं फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास के कुल के खरपतवार जैसे सावा, कोदो, फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि सिजुलिया जिसको थुकचट्टा भी कहते हैं। इसके अलावा जो वन साग के जो एमरेंथस होता है वो सब जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फसल के लेट मतलब कि देरी से निकलते हैं। इसके अलावा जो है धान में बुआई के लगभग 15 से 45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35 से 45 दिन के धान में बाद समय में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक या नाजुक दिन के बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए आते हैं। इस दिनों में खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल के उत्पादन में भी अधिक प्रभावित नहीं करता है।
0: तो अब बात करते हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
1: खरपतवार का प्रबंधन बहुत तरह से करते हैं, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। धान की फसल में खरपतवार की रोकथाम निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला है निवारक विधि। इस विधि में वो सस्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धान की खेती में खरपतवार के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे कि प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करके, अच्छी सरी गोबर की खाद जो हम खेत को तैयारी करते समय देते हैं उसको अपना करके, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके, सिंचाइयों की नाली साफ सफाई करके, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र की बुआई से पूर्व साफ सफाई करके, इसके अलावा जो है यांत्रिक

विधि है जो कि खरपतवार को पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इस विधि में किसान अपने हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। खेतों में हो चलाकर या पेडीवीडर चलाकर खरपतवार का रोकथाम करते हैं। समानता धान की खेती की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन बाद करने से खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो शस्य क्रिया विधि है उसमें भी परिवर्तन करके खरपतवार को आप अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है बुआई से पूर्व खरपतवार को नष्ट करके, इसको स्टेल सीड बेड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कहते हैं खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसको शाकनाशी जैसे ग्लाइफोसेट पाराक्वाइट जो केमिकल जो शाकनाशी है उसके द्वारा स्प्रे करके उसका एप्लीकेशन करके आप यांत्रिक विधि जोताई करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफी कमी आती है। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवार के बीज एवं उसके कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर ऊपरी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इस विधि से कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। रोपाई वाले खेत में पडलिंग करके खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। पडलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खेत में पानी भरकर लंबे समय तक खरपतवार को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस्मों को चयन जो सही चयन करके आप उसका भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्या है जहां पर खरपतवार के रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां पर ऐसी धान की किस्म का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़ावार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों को आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई असिंचित उपजाऊ भूमि में धान का छिटकाव विधि से बोते हैं। छिटकाव विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। अतः धान को हम कतार में ही बोना लाभदायक होता है और उसमें खरपतवार की जो समस्या है वो छिटकाव विधि से कम होता है। इसके अलावा जो कतार की जो बीच की दूरी है उसको आप मेंटेन करके भी खरपतवार को अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें करते हैं धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखते हैं, खरपतवार उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवार की संख्या एवं वृद्धि में कमी की जा सकती है। धान की कतारों को संकरा करने से लगभग 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा देने से प्रयोग करने से खरपतवार को वृद्धि की दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। एक ही फसल को बार बार एक खेत में उगाने से भी खरपतवार की समस्या और भी जटिल हो जाती है तथा उसका जो रख रखाव है जो एक ही इकोलॉजी का जो खरपतवार है वो ज्यादा उगते हैं। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष एक ही खेत में एक ही फसल लेने की बजाय फसल के बाद उसमें दूसरी फसल जो पल्सेज है ऑयल सीड है अगर दूसरी कोई भी परिवार का फसल है उसको लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल का प्रबंधन करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। रोपाई किए गए धान में पानी की उचित प्रबंधन करके खरपतवार को रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1 से 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी का स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग किए गए धान सीधे बोए धान की खेत में जब फसल 30 से 40 दिन का हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई क्रॉस जुताई करके पाटा लगा देने से भी खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। उर्वरक का प्रयोग करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की मात्रा उर्वरक देने की विधि एवं समय के फसल एवं खरपतवार की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में निहित पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्व की उपलब्ध

0: गुणवत्ता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाता है। असिंचित उपजाऊ भूमि जहां खरपतवार समस्या अधिक होती है, वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा में बुआई समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है, तथा नाइट्रोजन को धान में की लाइनों के पास डालना चाहिए जिससे कि इसका ज्यादा भाग फसल को मिल सके।
1: जी सर, ये तो आपने बताया अलग अलग तरीकों से किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन धान के फसलों में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। सर, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि रासायनिक विधि से खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और इस विधि के दौरान कौन कौन से रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन।
0: निश्चित ही रासायनिक विधि बहुत ही कारगर, जितने भी विधि बताएं उसमें सबसे ज्यादा कारगर रासायनिक विधि को माना जाता है। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम की यांत्रिक विधियां तथा हाथ से निराई गुड़ाई यद्यपि काफी प्रभावी पाई गई है, लेकिन विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया है। इनमें से मुख्य कारण यह है कि धान के पौधे एवं समय स्वसमय खरपतवार जैसे जंगली धान एवं सावा के पौधे में पुष्प अवस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है, इसलिए पहले साधारण किसान निराई गुड़ाई के समय आसानी से इनको पहचान नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी में विधियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय में मजदूरों की उपलब्धता में कमी, खरीफ मौसम का असामान्य मौसम जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है, अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवार का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने के समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना भी बनी रहती है। धान की फसल के प्रयोग की जाने वाली प्रमुख रासायनिक बहुत से हैं, जिसमें कि जो हम शुरू के ही समय बताए थे, जो धान में मुख्यतः तीन तरह के खरपतवार पाई जाती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और साथ ही साथ मोथा कुल के खरपतवार। उसको मारने के लिए चाहे उसका प्रबंधन करने के लिए निम्न रसायन का प्रयोग करना किसान के भाइयों के द्वारा उचित होता है, जिसमें से सबसे पहला है ब्यूटाक्लोर, जो कि बहुत अच्छी दवाई है, जिसको मिंचेट नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग बुआई एवं रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। ये लगभग में इसका जो मात्रा है वो कम से कम 1.5 से 2 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जो कि सिर्फ घास कुल के खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है एलिलोफॉस एलिलोगार्ड, जिसका मात्रा जो है 400 से 500 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, ये भी प्री इमरजेंस जो है उसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी बुआई के 2-3 से 4 दिन के बाद ही उसको देना लाभदायक है। ये भी घास एवं मोथा कुल के खरपतवार के लिए कारगर है। इसके अलावा जो है बिस्पेरीबैग सोडियम नाम का एक दवा है, जो कि इसका जो 10% इसी की मात्रा पाया जाता है, जो कि लगभग में 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका दर होता है और ये 25 से 30 दिन के बाद देना उपयुक्त होता है। ये चौड़ी पत्ती एवं घास कुल के खरपतवार के लिए कारगर होता है। इसके अलावा जो है एक ऑक्सीडाइजोन जो है कम से कम 750 से 1500 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर की दर से है, जो कि घास और मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नर्सरी लगाते हैं उसमें भी बहुत से खरपतवार का प्रकोप रहता है, उसमें भी ये दवा जो है वो कारगर है, जैसे कि पेट्राक्लोर, जो कि 50% इसी का मात्रा पाया जाता है, जिसका डोज है 750 ml से 1000 ml AI प्रति हेक्टेयर। यह घास मोथा चौड़ी पत्ती कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, जो कि आप इसको धान के नर्सरी में भी और जब रोपा करते हैं उस समय भी देना बहुत ही लाभदायक। जो कि एक और भी दवा है जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 240D नाम का एक दवा है, जिसका जो डोज है 0.5 liter से 1 liter ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद देना कारगर पाया गया है और ये सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा

0: जो है बहुत से दवा है जैसे ऑल मिक्स जो दो दो हर्बिसाइड दो शाकनाशियों का कम्बिनेशन है जिसमें क्लोरोमिरोन और मेटसल्फिरोन है ऑल मिक्स करके आता है, वो 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से पाया जाता है जिसमें कि चौड़ी पत्ती मोथाकुल के खरपतवार के कारगर है। जिन किसान भाइयों को चौड़ी पत्ती और मोथाकुल के खरपतवार को मारना है उसमें इथॉक्सी सल्फिरोन सनराइज के नाम से है जो कि 100 ml प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से है जिसमें चौड़ी पत्ती और मोथाकुल के खरपतवार को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाइयों सिर्फ मोथा को ही मारना है उसमें है एजीम सल्फिरोन नाम का एक है जिसमें 50 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से देते हैं जो कि सिर्फ मोथा के ही घास जो कुल है उसको ये कारगर होता है। इसके अलावा जो भी और भी जो खरपतवार है इतना अगर कोई भी अगर शाकनाशी अवेलेबल है उपलब्ध है उसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको जो रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन में सहायता मिल सकता है।
1: जी सर, सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश यही है जो अगर आपके खेत में खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या है तो सबसे पहले तो उसका पहचान करना बहुत ज़रूरी है, उसके उपरांत ही आप कोई भी जो उसका उपाय है उसका आप उपयोग करें, नहीं तो लाभ के बदला हानि का हानि ही हो सकता है। और साथ साथ पहले आप उसकी पहचान करें उसके बाद ही उस शाकनाशियों को उसके जो अगेंस्ट जो उसका में काम करें उसका प्रयोग करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाई बहनों जिस तरीके से सर ने बताया उन तरीकों को अपनाकर आप धान की फसलों में खरपतवार का प्रतिबंधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पिट गया बिल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का

0: बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का

मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 cm की दूरी पर 10 से 15 cm ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 cm ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों

संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किस प्रकार से परवल की खेती की जाती है और क्या समस्याएं आती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी ही बातों के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आरवी वर्मा। सर, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि परवल के क्या फायदे होते हैं।
2: देखिए, परवल जो है, जिसको कुकुरबिटेसी कहते हैं या लतेर वाली जो है फैमिली जो कहते हैं, उस फैमिली का एक ऐसा पौधा है जो लगभग 7 से 8 महीने तक फल देता है। और यह फल समझिए इमरजेंसी पीरियड में भी देता है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर जब पानी आता है उस समय, और अन्य सब्जियां सब खत्म जब हो जाती हैं, तो उस समय भी मार्केट में आपको जो है परवल मिलता है। और परवल की उपयोगिता ही बहुत ही ज़बरदस्त है। परवल एक ऐसा फ्रूट है, समझ लीजिए फ्रूट इस वेजिटेबल में आता है ये, कि इसमें जो है एक तो सबसे पहले कि इसमें विटामिन A, B और C पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है, जिससे आप शुगर फ्री के शुगर वाले पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल कम 0.3% के आसपास होती है, इसलिए जो मोटापा जो है उसको भी कम करता है। ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जो होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं लो एनर्जी के कारण जो है, तो ये लो एनर्जी कारण जो बहुत सारे रोगों में कभी कभी आप देखते हैं जॉइंटिस सब हो जाता है, तो उसमें भी हम परवल का चोखा या परवल की जो है सब्जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप परवल की सब्जी लीजिए, तो ये हल्की होती है। इसके तमाम इसके एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी वेट को आपको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो परवल की आप देखते हैं स्वीट्स भी बनते हैं आजकल, जो परवल की मिठाई बनती है, तो परवल की ये तमाम सारी उपयोगिताएँ हैं। और ऐसी फसल भी है जो आपको 7 से 8 महीने तक फल भी देती है, तो इन सब सारी उपयोगिताओं को देखते हुए परवल का स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है। और परवल की खेती हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसकी खेती सफलतापूर्वक आप करें, इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
1: जी सर, लाभदायक होती है लेकिन कई बार कुछ समस्याएं भी आती है, तो परवल की खेती में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं?
2: हाँ, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परवल की खेती में। देखिए, एक तो होता है सेक्स की प्रॉब्लम उसमें, कि उसमें जो है नर और मादा दोनों जो है अलग अलग होते हैं। ये डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट मतलब जिसमें एक पौधे पर होगा तो केवल नर ही होगा और दूसरे पर होगा तो केवल मादा ही होगा। और हमेशा फल जो होता है वो मादा पुष्प पे ही आता है, नर पुष्प पे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसान भाई के खेत में ऐसा भी पौधा दिखाई पड़ता है कि जिसमें केवल फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है, तो किसान भाई क्या करते हैं, उसको खेत से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, जब नर पौधा नहीं रहेगा तो पोलिनेशन की समस्या हो जाती है, और पोलिनेशन नहीं होगा तो पता

0: चला आपके पौधे में फूल तो आ रहा है, लेकिन वो फूल जो है पीला होकर के फिर से सूख जा रहा है। इसका कारण यही है कि वहाँ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डायोसियस पौधा है, और जब भी लगाना है इसको तो नर और मादा दोनों ले जाके लगाना है, और दोनों को लगाने का एक जो अनुपात होता है वो 9:1 का अनुपात होता है। यानी 9 पौधे अगर आप मादा आप ले जाते हैं तो एक पौधे नर आप जरूर ले जाइए, इससे उसका रेशियो मेंटेन रहता है और परागण के लिए पौधे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बहुत दूर 1.5 किलोमीटर तक दूर तक इसका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, बट उतना दूर से परागण आएगा और परागित करने में उसको समय लगेगा, फिर जो है नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वहाँ आपकी जो प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 9:1 का रेशियो आप उसमें रखें। 9:1 रेशियो रखेंगे तो उसका जो है पोलिनेशन अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या इसमें ये होती है, एक तो ये आ गई प्लांटिंग रेशियो कि 9:1 में आप प्लांटिंग करिए, इससे आपको नर और मादा का जो है 9 मादा और एक जो है नर, तो इसे आपके ऊपर। दूसरा ये होता है इसमें कि देखिए इसमें सीड प्रोपोगेशन हम नहीं करते हैं। कभी कभी ये किसान भाई कहते हैं कि उन्हें हम बीज से ही कर लें, तो बीज से करने में समस्या ये होती है कि जो आप एक तो पहले बीज इसका ऐसा होता है कि आप जैसे पकने के बाद इसको निकालिएगा 2 मिनट के लिए हवा में छोड़िएगा तो फिर जमेगा ही नहीं, तो उसमें ये होता है कि तुरंत उसका फल पका हुआ निकालिए, तुरंत उसको जमीन में लगाना होता है। एक तो समस्या ये है, दूसरी समस्या ये है कि इसके बीज को अगर लगाते हैं तो उसमें 50% नर आ जाता है और 50% मादा आ जाती है, और ये नर और मादा का अनुपात जो 50-50% जो हो जाता है लगभग जो है, यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसमें फ्लावर या फूल नहीं आ जाता है। तो फूल आने के लिए आप साल भर इंतजार करिएगा, साल भर आप खेत को फंसा के रखिएगा, तब जब फूल आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो नर है और ये मादा है, तो आपके खेत की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज ये कि ये लंबा समय लेता है, क्योंकि एक साल भर की बताया हमने कि इसको ये पूरा साल भर चलता रहता है, ये बायनियल मतलब ये जो है पेरेनियल पौधा है, एक बार लगाइएगा तो 3 साल तक इससे काटिएगा कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी जो हमको बीज से इसका जो है प्रोपेगेशन नहीं करना है, इसका प्रोपेगेशन हमेशा कटिंग से करना है जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो उपयुक्त मतलब प्रजाति हो उसी को लेना है, अन्यथा आपकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पैदावार घट सकती है।
1: तो सर हमें विस्तार से बताइए कि प्रवर्धन कैसे करें।
0: हाँ, इसके प्रवर्धन के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमने बता दिया कि एक जो है 9:1 रेशियो में आपको नर और मादा लेना है, अब नर और मादा में अब क्या लेना है, एक तो इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, सीड से प्रोपगेशन नहीं करते हैं। तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो इसमें हम उसकी वाइन लेते हैं, और वाइन कैसी होगी, एकदम मेच्योर वाइन हो जो साल भर पुरानी हो गई हो, ऐसा नहीं कि टेंडर वाइन लीजिएगा, टेंडर वाइन लीजिएगा तो वो जो है सूख जाएगा, तो हमेशा आपको मेच्योर, जो मेच्योर वाइन होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा जब मेच्योर वाइन हो जाती है जनरली जो जड़ से निकलती है, देखिए जब खूब मेच्योर हो जाती है तो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी व्हाइटिश हो जाती है, जो ग्रीनिश रहती है उसका रूप बदल के हल्का सा लाइट व्हाइटिश कलर में आ जाता है, तो समझिए कि वाइन पूरी तरह से मेच्योर हो गई है। तो सबसे तो पहले कि आपको 1 ईयर ओल्ड मेच्योर वाइन सेलेक्ट करना है, दूसरी बात उस वाइन को अगर काट लीजिए, काटने के बाद उसको कितना लंबा रखेंगे, तो कम से कम जो है उसको 50-60 सेंटीमीटर उसको लंबा रखिए, और उसको क्या करिएगा, उसको अंग्रेजी का 8 जो होता है उसके आकार में आप उसको मोल्ड कर लीजिए, 8 के आकार का बना लीजिए, और दोनों सिराओं को फिर मोड़ दीजिए, 8 के आकार के जो दोनों लास्ट की सिराएं हैं उसको आपस में मोड़ दीजिए, और बीच में उसे मिट्टी डाल करके जो है बीच में मिट्टी से उसको एक गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप इसका कल्टीवेशन करें तो सॉयल आपकी एकदम सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें बालू की मात्रा बढ़िया हो, उसमें इसकी उपज जो है ज्यादा अच्छी होगी। कड़ी मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी उपज थोड़ी कम हो जाएगी, और उसमें अगर बालू कड़ी मिट्टी है या लोमी मिट्टी है तो इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि आपको जो उस मिट्टी में जो है बालू, गंगा बालू अगर मिलता है तो गंगा बालू और आपका जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फ्यूराडान मिला करके उसको बढ़िया से उसका पिट बना लें, फिर उस पिट में लगाएंगे, तो वो जो है आप जो है 50-60 सेंटीमीटर लंबा जो वाइन लिए थे उसको 8 के आकार में बना लिया, और उसके दोनों

0: को वाइन्स को आप ऊपर ले लेते हैं छोर को जो है, और साइड से जो है मिट्टी में दबा करके उसको पूरी तरह से उसको दबा देते हैं। हल्का हल्का सा वो दिखाई पड़ता है जो सूर्य की रोशनी उसको मिलते रहे, हल्का सा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। लगाते समय एक बार का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसके साथ कोई मरोगत मत करिए। अगर उसमें मान लीजिए आपने प्रेस नहीं किया है, बढ़िया से दबाया नहीं है, तो होता क्या है कभी कभी जब आप पानी देते हैं तो उसमें होल बन जाता है, तो जब होल बन जाएगा तो वहां से हवा चला जाएगा, और हवा जाएगा तो उसके सूखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, पौधा लगेगा। आप कहेंगे कि हमने पौधा लाया था स्वस्थ लगाया लेकिन चला नहीं, तो इससे देखना है लगाते समय उसकी वाइन्स को खूब बढ़िया मिट्टी से दबा दिए, ताकि मिट्टी का संपर्क उससे खूब अच्छी तरह से हो जाए और उसका जो नमी बराबर मिलती रहे। तो ये करना, लगाने के बाद आप उस पर मल्च डाल दीजिए, मल्च डालने के बाद उसको जो हल्की सी सुबह शाम सिंचाई करते रहिए। तो ये तो इससे हम प्रोपगेशन करते हैं वाइन से, सीड से हम नहीं करते, जैसा पहले बता दिया था। तो इसका प्रोपगेशन हम वाइन से ही करते हैं, वाइन वन ईयर ओल्ड वाइन्स लेते हैं, मेच्योर वाइन लेते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर लगते हैं, जिसमें 7 से 8 कम से कम नोड हो, इसको ध्यान में रखना है, कि इसलिए कि नोड से ही जो है जड़ें निकलती हैं। तो जब नोट्स नहीं रहेगा तो जड़ें नहीं निकलेंगी। अगर एक नोट्स लगाइएगा तो एक नोट्स मान लीजिए वीक हो गया या खत्म हो गए तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए 6 से 7 उसमें नोट रखिए, जिससे कोई भी नोट्स उसमें चलेगी, रूट्स निकल जाएगी तो पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने बताई, एक तो ये बता दिया वाइन से आपको लगाना है तो आप अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर वो भी 15 अक्टूबर के आसपास लगाए जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर स्प्राउट नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने डारमेंट रहती है। अक्टूबर लास्ट अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने डारमेंट रहती है, इसमें आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा इसका तरीका एक और है, मान लीजिए आपके पास जो है सैपलिंग, दूसरा तरीका है सैपलिंग तैयार करना। आप कुछ नहीं है, मान लीजिए आपकी वाइन खत्म हो रही है, तो आप क्या करिएगा, आप अक्टूबर या सितंबर या जनवरी सितंबर या अगस्त कभी भी जो है आप उसकी सैपलिंग तैयार कर लीजिए। सैपलिंग तैयार करने के लिए 2 तरीके हुए, एक तो आप पोली बैग ले लीजिए, पोली बैग में 2 से 3 नोड लेकर के उसको जो है अंदर जो है पोली बैग मिट्टी भरे रहते हैं उसमें आप उसको दबा दीजिए, तो उससे वो स्प्राउट कर जाएगा, स्प्राउट कर जाएगा तो वो चलेगा। उस आप जो है सैपलिंग को आप रखे रहिए, उसके देख रेख करते रहिए। जैसे मान लीजिए आप नहीं लगा पाए, आपका खेत खाली नहीं है, तो आप फरवरी में आपका खेत खाली हो तो आप उसको फरवरी में सीधे उस सैपलिंग को खेत में ले जाइए और उसमें लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया चलेगा। उसमें स्प्राउटिंग बहुत फास्ट होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ कवर करेगा, आपका फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है सैपलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें 2 से 3 नोट जरूर रखिए, एक नोट पे मत लगाइए उसको, और 2 से 3 नोट रहेगा तो उसमें रूटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो सैपलिंग से आप जो है फरवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं।
1: जी सर, तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रबंधन का सही समय क्या है।
0: हाँ, देखिए इसका जो है, जब ये हम इसको जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो बहुत अच्छा महीना है, इसमें स्प्राउटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर काट करके वाइन वैसे भी लगा दीजिएगा या उसको दबा दीजिएगा तो चल जाएगी, लेकिन इस समय चूंकि परवल जो है एकदम अपने पीक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है, इसलिए कोई भी किसान अपने खेत से वाइन आपको नहीं देगा। लेकिन ये आपका मार्च से स्टार्ट हो करके और अक्टूबर तक फ्रूटिंग देता है, देखिए 7 से 8 महीने फल देता है। तो जब सितंबर के लास्ट तक जो है समझिए इसकी फ्रूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वीक हो जाती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। अक्टूबर में इसको लगाने का समय जो है सबसे बढ़िया क्या होता है कि अक्टूबर में आप जो है जो वाइन्स जैसे हमने बताया, लगाने की विधि जैसे हमने बताई है, आप जो इसको खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करके इसमें 2 तरीके से, एक तो आप पंडाल विधि से भी आप लगा सकते हैं, मचान विधि जिसको कहते हैं, पंडाल बना लीजिए, और या तो एक ऐसे पोल गाड़ करके सीधा 2-2 मीटर की दूरी पे आप पोल गाड़ करके उस पर रस्सी तान करके वैसे भी लगा सकते हैं, या ओपन फील्ड कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2-2 मीटर दूरी पर लगाइएगा, तो 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइएगा। अगर फील्ड में लगाना है तो आप 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइए बेहिचक, इसलिए कि इसकी वाइन जब फैलती है तो जगह जगह पे अपनी रूट्स को जमीन में पकड़ती जाती है, तो जो एरिया खाली रहता है उसको आसानी से वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप जो है पोल पे लगाइएगा तो पोल पे हमेशा जो है 2 मीटर पोल से पोल की दूरी होगी और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर फील्ड कंडीशन में लगाते हैं तो कम से कम आपको

0: है 5,000 कटिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पोल पे लगाते हैं तो 5,000 कटिंग जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं इसे ओपन में 2x2 पे लगाते हैं तो लगभग 2,500 आपके कटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख लेना हमको कि किस विधि से आप लगा रहे हैं उसमें कितनी हमको कटिंग मिल रही है, कितनी अगर नहीं भी मिली है, कम भी मिली है जो है, तो आप फील्ड में लगा दीजिए, आप उससे अगले साल उसको प्रोपगेट कर लिए, उससे आप वाइन बना लीजिए अगर अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है तो।
1: जी सर, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की तो।
0: हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है जितनी भी कुकुरबिटेसी सब्जी होती है, लतेर वाली सब्जियां होती है, एक जनरल फंडामेंटल बता दें कि इन सब्जियों में जो है नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा देंगे, और लेकिन इसके देने से पहले हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद भी इसमें देंगे। उसके अतिरिक्त ये होगा आपका 100-60-60 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन इसलिए हम जनरली कुकुरबिट्स में 80 के आसपास चलती है, लेकिन इसमें हमने 100 इसलिए कहा कि चूंकि ये लंबे अवधि की क्रॉप है, हमने बताया कि एक बार आप मार्च में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं तो चलती है, फिर अक्टूबर तक चलती है, तो ये लंबी अवधि की क्रॉप है, इसलिए मैं थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है तो 100 किलोग्राम है। इससे ज़्यादा जहाँ भी नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो समझिए उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आती है। हालांकि नर इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नर अलग ही होता है और मादा अलग होता है, लेकिन जनरल कुकुरबिट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप खाद जो है 20 से 25 टन FYM, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस एंड 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास संभव है तो इसमें आप जो है नीम की खली ये थोड़ा सा जो है नहीं ज़्यादा मिलता है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास जो है प्रति प्लांट नीम की खली से मिला दें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। खास करके जो है परवल में निमेटोड की एक समस्या आती है जो लगातार 2-3 दिन तक आप छोड़ दें, 2-3 साल तक छोड़ देते हैं तो वो सब समस्याओं से समाधान इसका होता रहेगा।
1: सर अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं?
0: अब देखिए इसमें वैसे तो बिहार में जो है इसकी बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब तमाम तरह की जो है प्रजातियां हम उगाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है उपजाऊ प्रजातियां हैं, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें जैसे राजेंद्र परवल 1 अपने यहाँ बहुत ज़्यादा राजेंद्र परवल है, राजेंद्र परवल 2 है, अभी नई वेराइटी अभी गवर्नमेंट से रिलीज हुई अपने यहाँ की जो है सबौर परवलन है, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसमें धारी नहीं होता है, उसमें सीड्स कम होते हैं, मिठाई के लिए भी अच्छी है और जो है सब्जी के लिए भी अच्छी है। तो एक सबौर परवल 1 है, दूसरा स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण रेखा है, तो ये सब जो है प्रजातियां जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, इन सब उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के आप इसका कटिंग प्राप्त कर लें और इनको लगा करके इसकी आप खेती करें, ये ज़्यादा उपजाऊ हैं और ज़्यादा आपको उपज देंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे।
1: सर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कीट और व्याधि कौन कौन से होते हैं परवल में और कैसे बचे?
0: देखिए जनरल जो है एक जो है शुरू में जो सबसे कीट लगता है जिसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल, ये रेड ये तो सारे कुकुरबिट्स का एक पेस्ट हम इसको बोलते हैं, तो ये रेड पम्पकिन बीटल होता है, ये जो जैसे हालांकि इसमें तो कॉटिलीडर नहीं निकलता है, इससे निकलता है स्प्राउटिंग होती है, तने से स्प्राउटिंग होती है इसके, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुकुरबिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, रेड पम्पकिन बीटल आता है जो कॉटिलीडर निकलती है उसी को खा जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन इस खेत में चूंकि हमारा चलता है स्टेम से निकलता है, इसलिए इसमें उसकी इनिशियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम इसकी नहीं रहती। इसकी प्रॉब्लम फ्रूटिंग स्टेज में आकर के एक फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे जबरदस्त रहती है। ये फ्रूट फ्लाई क्या करती है, कभी कभी किसान भाई के प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे फल तो लग रहा है लेकिन वो सड़ जा रहा है, पक जा रहा है, तो उसकी समस्या में हमने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई है ये भी एक कारण है। एक तो कारण ये है कि हमने बताया कि आपने जो प्लांटिंग रेशियो अगर मेंटेन नहीं किया है, नर और मादा का अनुपात अगर मेंटेन नहीं किया है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं रहा, वो भी एक समस्या है, और दूसरी समस्या जैसे ये फ्लावर आपका फ्रूट जब लगता है उसमें ये जो है फ्रूट फ्लाई उसमें डंक मार देता है और फिर उसमें जो है सड़न पैदा होने लगती है, पीला पड़ जाता है, तो ये दोनों समस्याएं हैं। इसके निदान के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है फिरामोन ट्रैप, एक फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप ले लीजिए, 5-6 ट्रैप ले लीजिए 1 एकड़ के लिए।

0: सफिशियंट है, पर्याप्त है, और उसको जो है चारों कोने पे बीच में लगा दीजिए। वो क्या करता है कि जितने भी जो है ये जो है मेल जितने भी आपका जो है फ्रूट फ्लाइज है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, और उस फिरामोन ट्रैप में ल्यूर जो होता है वो जो है पॉइजनस होता है, ये जैसे उसमें मेल जाता है उसी में वो मर जाता है। तो इससे होता क्या, उसकी प्रजनन जो है रुक जाती है और फिर बाद में वो फैल नहीं पाता है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उसमें फ्रूट फ्लाई की आती है, दूसरा कभी कभी ये स्टेम ब्लाइट की भी समस्या आती है, स्टेम ब्लाइट कर स्टेम रॉट की जो है कभी कभी उसका तना भी सड़ने लगता है। रोग के बारे में अगर कहें तो कभी कभी उसके गमोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तने निकल जब पुराने हो जाते हैं तो वहां से गम जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में किसान भाई जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% यानी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उस पर 2-3 छिड़काव कर दें, उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो पौधा आपका अच्छी तरह से चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी इसमें जो है निमेटोड की है, ये हमने बताया कि ये पेरेनियल क्रॉप है, तो पेरेनियल क्रॉप है तो चूंकि 1 साल लगाते हैं और ये ऐसी फसल है कि 1 साल लगाते हैं और इसको 3 साल तक काटते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि 1 साल लगाइए 3 साल काटिए, लेकिन 3 साल का और पहले साल की तुलना में दूसरे और तीसरे साल फलत ज्यादा अच्छी आती है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि जो है अगर पहले साल हम इसको लगाते हैं तो दूसरी साल उसका मेंटेनेंस करें, और दूसरी साल से जनरली जब 2 साल से ज्यादा होता है तो निमेटोड की समस्या शुरू हो जाती है। निमेटोड क्या होता है, उसके अंदर गांठ बना लेता है, उसके जड़ों में गांठ बना लेता है, और पौधे का जो सिस्टम होता है जो उस पे जिससे पानी ऊपर जाता है वो पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे खनिज लोड ऊपर जाता है सब उसको ब्लॉक कर देगा तो पौधे को मिलेगा नहीं, तो अंत में क्या होता है पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो ये निमेट तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो नीम वाला जो है हमने बताया कि नीम की खली उसका आप प्रयोग करते रहें, फ्यूराडान भी समय समय पे जो है पर पौधे आप 10 से 15 ग्राम या 2 से 3 ग्राम आप जो है देते रहिए समय समय पे ताकि उसमें इस तरह की समस्या ना आए, और उसके मिट्टी को हमेशा उसके थोड़ा सा कभी जाँच करते भी रहिए कि इसमें निमेटोज की समस्या ना ही आ रही है। तीसरा है उसको रोटेशन भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक वहीं छोड़े रह रहे हैं, आप 3 साल के बाद फील्ड को बदल दीजिए, क्रॉप रोटेशन कर लीजिए। इसे करने से क्या होता है कि वो निमेटोड अपना घर नहीं बना पाता है और उसमें जो निमेटोड की समस्या नहीं रहती है, तो क्रॉप रोटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी हमको देख लेना है। तो ये सब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो इसमें जो आती हैं, बाकी तो ये जो है पेरेनियल क्रॉप है, चलती रहती है।
1: सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो परवल की खेती करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए परवल की खेती के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है कि ये पेरेनियल क्रॉप है और एक बार जब लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक ये फसल देती है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जब भी आप इसको लगाइए तो इसमें सेक्स रेशियो इसके प्लांटिंग रेशियो जो है जरूर मेंटेन रखिए जो 9:1 के अनुपात में होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप जो है इसको लगाते हैं तो 3 साल के बाद एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर जरूर कर दें, और संभव है तो 100 ग्राम जो है नीम की खली उसमें जरूर दिया करें। इस तरह से अगर आप तकनीकी अपनाते हैं तो आपको जो है इससे लगभग जो है 250-300 के आसपास आपको उपज पैदावार मिल जाएगी जो आपको 8 महीने तक देती है, और इमरजेंसी क्रॉप के रूप में भी आपको ये फ्रूट देती है, फल देती है, सब्जी देती है, तो इससे आप जो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकते हैं।
1: जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों अगर आप परवल की खेती करते हैं तो जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से खेती कीजिए और कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए।

0: अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर

0: और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया। ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें, तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पे, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं, ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहां से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर, बल्कि अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
1: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगे?
0: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से, जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनसे यही मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की एक नई दिशा देने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए, और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। TB के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। TB रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी।

0: है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो, टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाएं।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आपके लिए खेती से जुड़ी अलग अलग विषय लेकर आती हूं, और आज भी बिल्कुल आपके लिए है ये विषय, धान में खरपतवार प्रबंधन। तो इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं आज डॉक्टर महेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अब सबसे पहले तो अपने टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, विषय की ओर। धान की बुआई किन किन विधियों द्वारा की जा सकती है और किन किन विधियों से खरपतवार प्रबंधन हम कर सकते हैं, बताएं।
8: प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में धान की जो बुआई है या रोपाई है, वो मुख्य रूप से हम लोग दो विधियों से करते हैं। देखा जाए तो एक हम सीधी बुआई कहते हैं, और दूसरा धान की जो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है, जिसमें हम धान की नर्सरी डालते हैं और उसके बाद रोपाई करते हैं
7: जी।
8: तो धान की हम सीधी बुआई करते हैं और दूसरा धान की रोपी विधि से करते हैं। तो अब दोनों में जो खरपतवार है, खरपतवार का अलग अलग स्पेसीज आती हैं। जैसे धान की जब हम सीधी बुआई करते हैं, तो धान की सीधी बुआई में सबसे अधिक समस्या अगर किसी बात की है तो खरपतवार की है, क्योंकि सीधी बुआई में पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। हम इवन वर्षा जो आधारित खेती है, उसमें भी हम धान की सीधी बुआई करके खरपतवार प्रबंधन करके धान की उपज ले लेते हैं। तो वर्षा का पानी कम होने से या सिंचाई का पानी उसमें कम देने से खरपतवार ज़्यादा उगते हैं। तो यूँ कहें कि धान की जो सीधी बुआई है, उसमें सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की समस्या है तो खरपतवार की है। तो उसमें खरपतवार का ससमय प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा धान की रोपित विधि है। तो धान की रोपित विधि में चूंकि हम बिचड़ा डालते हैं, बिचड़ा 21 दिन का हो जाता है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पडलिंग करके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसमें खरपतवार थोड़ा कम आते हैं। तो इसलिए दोनों विधियों में खरपतवार प्रबंधन का जो तरीका है थोड़ा सा बदल जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे धान की जो सीधी बुआई है, सीधी बुआई में खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि धान की जो हम सीधी बुआई करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, धान के खेत को तैयार कर लेते हैं, जैसे गेहूं का खेत तैयार करते हैं उसी तरह धान का खेत तैयार कर लेते हैं। 2-3 बार जुताई कर लेते हैं, पाटा लगाते हैं, खेत भुरभुरा हो जाता है। उसके बाद धान को हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर 20 सेंटीमीटर के कतारों में बुआई कर देते हैं जी। तो ये धान की सीधी बुआई हुई। दूसरी विधि है सीधी बुआई में, जहाँ हमारा वर्षा का पानी थोड़ा यदि अधिक मिल जाता है, किसी कारणवश खेत गीला हो जाता है, तो वहाँ पे हम जो हमारा धान की बुआई के लिए ड्रम सीडर आता है, उसको हम अच्छे से पडल सॉइल में, पार्शियल पडल सॉइल में ड्रम सीडर में बीज भर करके 20 सेंटीमीटर की कतार को मेंटेन करते हुए बीज को गिरा देते हैं। तो चाहे धान की सीधी बुआई चाहे ड्राई मेथड से हो चाहे वेट मेथड से हो, धान में खरपतवार बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मिल जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सांवा है, सवई है, ये सब आ जाते हैं, और मोथा कुल के कुल 6 प्रकार के खरपतवार आते हैं। तो इस प्रकार हम कहें तो धान में करीब 100 से 150 प्रकार की खरपतवार आते हैं, लेकिन इनको जब हम 3 ग्रुपों में बांटते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं और मोथा कुल के खरपतवार रहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो तीन

से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि

0: करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय, लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन

0: उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादक उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85% और दोपहर में 60-70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3-7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20-30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं

बता दे अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, डी 96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरे और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज।
1: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगेगा।
0: अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये क्या चल रहा है?
2: अरे प्रिया, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, गुड़िया। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थीं। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थीं। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थीं, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थीं, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए।
2: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
2: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानती हो प्रिया?
0: क्या सेहतिया?

0: अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
1: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूं। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
0: मतलब इंसान को पता नहीं चलता?
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
1: यही तो अच्छी खबर है प्रिया। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
1: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है।
0: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग को भी अच्छे से समझ सके।
1: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
1: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
0: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
1: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
0: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या?
1: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
0: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो?
1: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर।
0: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है। ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों का क्या भूमिका है?
1: यही तो सबसे अहम बात है प्रिया। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
0: जरा विस्तार से बताइए।
1: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उससे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
0: सही कहा आपने।
1: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
0: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती है। कोई कहता है कि यह टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
1: देखो प्रिया, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
0: मतलब इनमें से किसी बात में सच्चाई नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
0: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
1: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
0: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही यह पहले से ही सुरक्षा देता है। जरा सोचो प्रिया, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
1: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंच सके। जहां जानकारी नहीं

0: पहुंचती वहां ऐसे कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था छोटा पुरवा, यहां रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में एचपीवी टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाईं, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती। कमला देवी के पास जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाइए, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
1: तो दोस्तों आज हमने जाना कि HPV क्या है, यह कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या

0: व्यस्त हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
6: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
11: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
9: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
12: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
9: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
13: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
9: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
14: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
15: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं, और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसके पीछे क्या वजह है? और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से। मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ

0: कल्चर फ्रूट साइंस से, मैम है बीएससी सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है?
1: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है। यदि फलों को पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाने से पहले ही सड़ जाते हैं। इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुंचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का, इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85 से 90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकाल कर पकाते हैं और बाजार भेजते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बड़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
0: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है, तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
1: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है कैल्शियम कार्बाइड पे।
0: लेकिन मैम अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
1: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 ppm को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
0: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
1: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है, वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 ppm की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90 से 95% रखी जाती है जिससे फल 24 से 48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच

0: का उपयोग करते हैं। इस पॉच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है। नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम, अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं, तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें। इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है। तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है, क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है, जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से, कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, घर साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम, आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीज़ें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को ख़त्म करके तो वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है. कोई तो इसका फ़ायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी. तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा. सर आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा जी.
0: सर आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
1: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए. मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 500 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा. मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को. मान लीजिए हर सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें. तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में. और ऐसी खेती का बहुत महत्व है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था. इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को. तो पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियां या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें. इसीलिए इसका महत्व तो आज के ज़माना में तो और भी ज़्यादा है.
0: तो सर बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसे है?
1: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है. अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है. तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना. हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं परिवार के, वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं. तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं. एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं. तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छे तरह से बेच सकता है, कम लागत में जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए. तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएँ हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहाँ पर भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है. तो इसीलिए अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे.
0: सर जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती. हालांकि आपने कुछ महत्व बताए, लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
1: बिल्कुल. तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं, आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं कि अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा. अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे

0: जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना इनकम, सालाना जो आय है वो 5,00,000-8,00,000-6,00,000 पहुँच गया है। तो अगर 5,00,000 किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है। उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
1: सर, तो जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
0: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में, मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और कर सकता है। तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान, वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको FPO भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छी अच्छा आय भी आमदनी भी कर सकते हैं। और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज, इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है, उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
1: सर, आप लगातार FPO के बारे में बात कर रहे हैं, ये FPO क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
0: हाँ, तो FPO जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का। तो FPO जो है आप देखेंगे कि हर जिले में बहुत सारे आजकल FPO आ गए हैं। सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 FPO खुल जाए, और वो हो भी गया है। तो FPO का कोई भी आदमी FPO बना सकता है। FPO एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है FPO बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं FPO, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी नाबार्ड जो है वो मदद भी करती है FPO खोलने के लिए, क्योंकि FPO एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन नाबार्ड उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका FPO का जो मालिक होते हैं, जिसको CEO बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए, और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं। क्योंकि FPO के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान, क्योंकि जानते होंगे आप कि FPO के पास 300 सदस्य रहते हैं। 300 सदस्य का अगर जरूरत, अगर उसको लेना है मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में, इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का FPO बहुत सारा खुला है, क्योंकि इसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है, एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए FPO का बहुत सारा संभावनाएं हैं, और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
1: सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि FPO के लोग होते हैं, उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
0: हाँ FPO के लोगों को नहीं, जो FPO के CEO होते हैं, मतलब जो FPO के मालिक होते हैं, CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस नाबार्ड की तरफ से कवर कर लिया जाता है। और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी नाबार्ड ही बियर करती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर कोई FPO खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं FPO खोलने का।
1: तो सर, सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक

0: खेती को प्रोत्साहित करती है।
1: बिल्कुल हाँ, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो FPO तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं। अगर जिस जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार 50 से लेके 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं उसके ऊपर भी छत पर भी सरकार की योजनाएँ हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर वो शुरू करेंगे तो उनको एक दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
0: सर, पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
1: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है तो वो छोड़ देते हैं बीच में। और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार को एंगेज कर पाए। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं तो अपने परिवार को क्यों एंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में। तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पर इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत ज़रूरी है।
0: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था जो नोकिया का जो पैड वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सबके पास एक परिवार के पास एक स्मार्टफोन तो है लेकिन वो स्मार्टफोन का प्रयोग सही रूप में नहीं हो पा रहा है। जनरली लोग उसको गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन कृषि में बहुत संभावनाएं हैं। कितने सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं अभी जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सही में आपको खेती में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको जो युवा हैं आपके परिवार में वो जरूर मदद कर सकते हैं। इसलिए एक एक एक चेष्टा करनी चाहिए कि परिवार को एक साथ आके एक बार वो खेती करना शुरू करें तो इसमें जरूर मुनाफा होगा।
0: सर, पारिवारिक खेती को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
1: पारिवारिक खेती को अगर मजबूत करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे इसमें स्रोत हैं। सबसे पहले तो है कि गवर्नमेंट का जो भी सरकार की योजनाएँ होते हैं कम से कम किसी योजना के साथ जुड़िए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी FPO से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप नई उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास ये बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है आप पारिवारिक खेती अगर करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुए हैं।
0: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
1: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं और वो लोग

इवन वो लोग जिसके पास जमीन नहीं भी है वो लोग जमीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाजार पे निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जानते होंगे कितना, अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए, जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था, उस समय बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी इतनी जटिल बीमारी

0: अभी बहुत आंसर पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा और जो जिसको भी बेच रहा है वो लोग भी उससे जुड़ के अच्छा कर पाएंगे।
1: यानी कि पारिवारिक खेती के बहुत फायदे हैं और खास तौर से तो ये कि पलायन भी रुक सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो पारिवारिक खेती अपनाना चाहिए और ख़ास तौर से आप के घर पे अगर युवा हैं तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपके पारिवारिक खेती में आपका सहयोग दे। बहुत फ़ायदे उनको भी होंगे, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और समाज का भी फ़ायदा होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई।
0: धन्यवाद आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

0: कोलेरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान

घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं
उन्हें बता दें पशुओं में पीपा

0: पीआर एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही खास है और बात करते हैं गेंदा फूल की। तो मैं आप सभी को बता दूं कि साज सज्जा से लेकर हमारे अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारी चीज़ें इसके रस से बनाई जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैवाहिक कार्यक्रम हो या फिर पूजा की दृष्टि से, हर दृष्टि में गेंदा का फूल जो है हमारे काम आता है। तो आज मैं वैसे किसान भाइयों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ इससे जुड़ी, जो खेती करते हैं और इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर श्यामा कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किशनगंज बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: मैडम, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि गेंदा फूल की खेती के लिए नर्सरी में पौधा तैयार करना क्यों ज़रूरी है और साथ ही गेंदा के बीज को सीधे मुख्य खेत में क्यों नहीं लगाते हैं?
1: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली गेंदा के बीज हम सब जानते हैं कि इसका आकार काफी छोटा होता है, तो गेंदा के बीज को अगर हम सीधे मुख्य खेत में बुआई करेंगे तो उनको उचित दूरी पे पौधे को रखने में काफी असुविधा होती है। साथ ही इन फसल के जो पौधे होते हैं, नन्हे पौधे, बहुत ही कोमल होते हैं, जिनकी देखभाल बड़े पैमाने पर समुचित ढंग से करना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा नर्सरी में अगर हम पौधे तैयार करते हैं तो वो जो बिचड़े होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, जो रोपने के उपरांत उनका शाकीय जो बढ़ाव होता है और फलन की दृष्टि से वो अच्छा होता है। इसके अलावा जो उपयुक्त वातावरण हम प्रदान कर सकते हैं, प्रतिकूल मौसम में भी हम नर्सरी में अगर हम पौधा तैयार करना चाहें तो प्रतिकूल मौसम में भी हम पौध तैयार कर सकते हैं। खेत में अगर हम सीधे बुआई की अपेक्षा कम बीज की आवश्यकता पड़ती है अगर हम नर्सरी से बीज को लगाते हैं, और लगाने के बाद जो भी बिचड़ा हमारा बच जाता है तो उनको हम अतिरिक्त लाभ के लिए मार्केट में हम उसको सेल भी कर सकते हैं। तो ये सब लाभ होता है अगर हम इसको नर्सरी के थ्रू जाते हैं, नर्सरी में अगर बीज को लगाते हैं तो।
0: मतलब सीधे मुख्य खेत में नहीं लगाते हैं, नर्सरी में लगाते हैं। जी मैडम, अब बात आती है कि अब हम इसे नर्सरी में लगा रहे हैं तो उन्नत प्रभेद के बीज कहाँ से हमें प्राप्त होंगे?
1: जी, गेंदा की खेती के लिए सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाला उचित प्रभेदों का चुनाव समय के अनुसार करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी मेहनत और संसाधन का जो भी प्रतिफल है वो बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो बीजों की प्राप्ति किसी भी विश्वसनीय स्रोत जैसे राष्ट्रीय बीज निगम हो गया या बिहार राज्य बीज निगम हो गया, कोई भी कृषि विश्वविद्यालय जो भी इस पर्टिकुलर क्रॉप पे काम कर रहे हैं, अधिकृत या विश्वसनीय जो भी बीज विक्रेता है, तो उनसे भी हम इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी मैडम, ये तो बात हो गई कि कहाँ से हमें उन्नत प्रभेद के बीज प्राप्त होंगे। अब नर्सरी तैयार करना है और जगह का चुनाव बहुत जरूरी होता है इसमें, तो किस प्रकार की जगह का चुनाव करना चाहिए, कैसा जगह होना चाहिए जहाँ पर कि नर्सरी में बिचड़ा अच्छी तरह से हम तैयार कर सके?
1: जी, एक्चुअली नर्सरी ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ की जमीन आसपास के क्षेत्र से थोड़ी ऊंची हो, ताकि वर्षा का पानी नर्सरी से बाहर चला जाए। नर्सरी में सूर्य का प्रकाश दिन भर उपलब्ध हो ताकि पौधे अच्छी तरह विकसित हो पाए, और नर्सरी में सिंचाई हेतु आसपास पानी का उपलब्ध होना आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर झरने से हम उसकी सिंचाई कर सकें। और कोशिश करना चाहिए कि नर्सरी आवास से कम दूरी पर हो, ताकि जब कभी भी समय मिले तो नर्सरी की देखरेख तथा उसका

0: पूरी तरह से निरीक्षण समय पर किया जा सके,
1: मतलब कटाई और नर्सरी की जरूरत है। जी
0: जी, उसके नर्सरी के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो तो अच्छा रहता है, जैसे बलुआ दोमट या दोमट मिट्टी, और मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 के आसपास होना चाहिए। यदि मिट्टी भारी है तो उसमें हम बालू मिला सकते हैं, और साथ ही साथ उस जगह में पहले अगर लगे हुए फसल में कोई रोग का प्रकोप ना हो तो वो ज्यादा अच्छा है, वह जगह नर्सरी के लिए काफी उचित होगा।
1: जी, अब बात करते हैं कि नर्सरी की तैयारी हम कैसे करें, उसके बारे में बताएं मैडम।
0: जी, नर्सरी एक्चुअली तैयार करने के लिए भूमि, जो हमारी मिट्टी होती है उसको अच्छी तरह से लगभग 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे, उसमें सरी हुई गोबर की खाद या पत्ती या केचुए की खाद जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसको मिलाकर समतल बना लेंगे। उसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेनी चाहिए, ताकि मतलब 15 सेंटीमीटर ऊंची हो और 1 मीटर लगभग चौड़ी, 5 से 6 मीटर लंबी होगी। अगर हमको 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेंदा का पौधा खेती करना है तो उसके लिए लगभग हमको 800 से 1000 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है।
1: जी।
0: और क्यारियां तैयार होने के बाद बीजों को 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर और 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई कर देते हैं। उसके बाद बीजों को अच्छी तरह से छनी हुई गोबर की खाद से उसको ढक देंगे, और आवश्यकता अनुसार क्यारियों के ऊपर महीन जो फुवारा वाला जो झरना होता उससे हम सुबह शाम पानी का छिड़काव करते रहेंगे। जब बीज पूर्णतया अंकुरित होकर जमीन से बाहर आ जाए तब हम उसकी हल्की सिंचाई करेंगे। और एक्चुअली आपको हम बता दें कि ये जो गेंदा है ये हम इसको 3 सीजन में लगा सकते हैं, ग्रीष्म काल में भी, वर्षा काल में भी और शीत काल में भी।
1: अच्छा।
0: तो एक्चुअली मेन सीजन शीतकालीन ही है, लेकिन अब बहुत सारी वैरायटी विकसित हो गई है जिसको हम ग्रीष्म काल में भी लगा सकते हैं, वर्षा काल में भी लगा सकते हैं। तो अगर हम ग्रीष्मकालीन फसल लेंगे तो बीज की बुआई जनवरी में करेंगे, वर्षाकालीन फसल लेंगे तो मई जून में करेंगे, और अभी जैसे शीतकालीन फसल है तो अभी इस अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमको बीज किसी भी हालत में गिरा देना है।
1: अच्छा,
0: नहीं तो फिर काफी डीले हो जाएगा।
1: तो और कुछ बातें इससे जुड़ी, जैसे कि नर्सरी तैयार करने के बाद जो बीज है उसे नर्सरी में कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में बताएं मैडम।
0: जी, अब जैसे नर्सरी हमारा रेडी हो गया, तैयार हो गया है, तो नर्सरी में बीज बोने से पहले बीज को उपचारित हमें अवश्य कर लेना चाहिए। बीज उपचारित करने के लिए फफूंदी नाशक दवा आती है, कैप्टान आता है, कार्बंडाजीम आता है, तो जो भी दवा उपलब्ध है वो 2 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज में, अगर हमारे पास 1 केजी बीज है तो हम 2 ग्राम दवा लेंगे, उसको हल्का पानी छींटकर बीज को अच्छी तरह से फफूंदनाशी में मिला देंगे। उसके बाद बीज को थोड़ी देर छाया में सुखा लेंगे ताकि बीज की बुआई में सुविधा हो, और बुआई के पूर्व मिट्टी में नमी का रहना बहुत आवश्यक है। जैसे हम जो भी नर्सरी बनाना है तो उसमें थोड़ा नमी हमारे पास उसमें पहले से ही होना चाहिए मिट्टी में। अब बीज बराबर मात्रा में क्यारियों में गिरे, इसके लिए हम क्या करेंगे, बीज में बालू या सूखी गोबर का खाद या थोड़ा बहुत मिट्टी बीज में मिला देंगे, ताकि बीज एक जगह में अधिक ना पड़े जिसके कारण पौधा पतला एवं कमजोर हो जाता है। बीज बुआई करने के बाद उन्हें ढकना बहुत आवश्यक है, और ढकने के लिए हम क्या करेंगे, मिट्टी, सड़ी हुई गोबर की खाद और बालू तीनों को बराबर बराबर अनुपात में मिलाकर क्यारी में इस प्रकार डालेंगे ताकि सभी बीज ढक जाए और कोई भी बीज खुला ना दिखाई पड़े। केवल बहुत लोग क्या करते हैं, केवल मिट्टी से ढक देते हैं। मिट्टी से ढकने से क्या होता है, जब आप सिंचाई करेंगे तो मिट्टी कड़ी हो जाती है और बीज का जमाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसके बाद जब बीज हमने डाल दिया तो उसको अब ढक देंगे क्यारियों को, जो भी हमारे पास उपलब्ध मटेरियल है, चाहे वो पुआल हो या गन्ने का सूखा पत्ता, घास फूस की पतली परत से ढक देंगे ताकि नमी बनी रहे, और सिंचाई की आवश्यकता पड़ने पर ढके क्यारियों के ऊपर से झरना से हम सिंचाई कर देंगे।
1: आगे बढ़ते हैं मैम, बीजों की बुआई करने के बाद अब स्वस्थ और निरोग बिचड़ा के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, ये भी बता दें हमारे श्रोताओं को।
0: जी मैम, इसमें हम एक्चुअली नर्सरी में गेंदा के बोए जो नए बीज का अंकुरण या जमाव जो होता है वो 3 से 4 दिनों में शुरू हो जाता है आना। तो जैसे 50% बीजों से हमको दिखेगा कि उसका अंकुर

0: निर्माण हो रहा है, मतलब अंकुआ जैसा दिखता है, तो जो भी हमने पुआल और पत्तियों से उसको ढका है, क्यारियों को ढका है, उसको सबसे पहले तो हटा लेंगे, अन्यथा जो अंकुआ है वो बड़ा होने पर पौधा कमजोर होकर जड़ के पास से गल जाता है और गिरने लगता है। पुआल हटाने का जो भी कार्यक्रम है वो हम शाम को करेंगे, अगर हमको लगता है कि वर्षा आने वाली है कल या परसों, तो क्यारियों के चारों कोनों पर लगभग 1.5 मीटर का खूंटा गाड़ देंगे और उसके ऊपर एक पॉलिथीन सीट से ढालनुमा छप्पर की तरह बना लेंगे, जिससे कोमल पौधों को वर्षा एवं कड़ी धूप से बचाया जा सके। और बीज जमने के 5 से 6 दिन बाद जब पौधे पीले या हरे अवस्था में हो, तो मैनकोजीब नामक फफूंदनाशी दवा जो है वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर इस प्रकार छिड़काव करेंगे ताकि पूरा का पूरा पौधा भींग जाए और मिट्टी भी जो उसके समीप मिट्टी है वो भी पूरी तरह भींग जाए, ताकि दवा जो है वो जड़ों तक पहुंच जाए। अगर पौधों का बढ़ाव अच्छा नहीं हो रहा है तो हम दूसरे छिड़काव के समय इसी दवा के साथ यूरिया 10 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में 10 ग्राम यूरिया मिलाकर उसको उसी दवा के साथ छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कीड़ों का कुछ प्रकोप है तो इसी घोल में, मतलब साइपर मेथ्रिन नामक कीटनाशी दवा मिलता है, वो 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे। आवश्यकता अनुसार नर्सरी से हम घासों को निकालते रहेंगे और झरना से हल्की सिंचाई करते रहेंगे। इस प्रकार से हमारा बिचड़ा जो है वो 25 से 30 दिनों में रोपण के लायक तैयार हो जाएगा, जो जिसमें लगभग 4 से 5 पत्तियां आ जाएंगी जी। तो हम अब श्योर हैं कि हमारा पौधा रेडी है ट्रांसप्लांटिंग के लिए।
1: मैडम, देखा जाता है कभी कभी नर्सरी में बीज जब ज्यादा गिर जाता है तो बिचड़ा बहुत ही घना हो जाता है, तो ऐसे में क्या नुकसान हो सकता है, और अगर नुकसान होगा तो इसका निदान कैसे करेंगे?
0: ये अच्छा क्वेश्चन है मैम। यदि क्यारी में पौधे अधिक घने उग जाएं तो स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए अधिक घने पौधों को छोटी अवस्था में ही हम उसको हटा देंगे, उखाड़ देंगे। अन्यथा क्या होगा कि पौधों का जो तना होगा वो पतला हो जाएगा और पौधा कमजोर हो जाएगा। पौधा अगर ज्यादा घना हो जाता है तो उससे एक बीमारी हो जाता है जिसको पत गलन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रूट रॉट बोलते हैं नामक। ये बीमारी लगने की संभावना अधिक हो जाती है। और घने पौधे निकलने से जो प्रत्येक पौधे को उचित रूप से जो सूर्य का प्रकाश होगा या फिर जो भी पोषक तत्व हम दे रहे हैं या हवा, वो उसको भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा। तो यदि पदगलन बीमारी का प्रकोप हमें दिखाई दे रहा है तो हमें तुरंत कार्बेंडाजीम नामक फंजीसाइड जो है उस दवा का छिड़काव हमें करना होगा। उसके लिए हम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा का डाल के उसका घोल बना के उसका छिड़काव करेंगे। रोपाई के लिए बिचड़ा उखाड़ने के उपरांत ये बहुत अच्छा होगा कि हम एक स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक दवा आती है जो बैक्टेरिसाइड का भी काम करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन या प्लांटोमाइसिन नामक दवा, उसको हम पौधे को जब उखाड़ेंगे तो उस इस घोल में जड़ को, पौधे का जो जड़ है उसको डुबो कर रखेंगे 5 मिनट तक। और इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ग्राम दवा को 6 लीटर पानी में घोल के इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो बहुत माइल्ड सॉल्यूशन होता है क्योंकि हमारा पौधा भी बहुत सॉफ्ट होता है, तो बस इस घोल में डाल के तब फिर हम इसको मुख्य खेत में पौधे को लगाएंगे, ताकि हम उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हमारा जो पौधा है उसमें किसी तरह का कोई इंसेक्ट पेस्ट का कोई या डिजीज का कोई प्रकोप नहीं है और हमारा जो मुख्य खेत में उसका बढ़वार पौधे का बहुत अच्छा रहेगा
1: जी।
0: अगर इतना ये सब बताए गए तरीके से गेंदा का अगर हम बिचड़ा तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से गेंदा की फसल अच्छी होगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आशा करते हैं हमारे किसान भाई जो व्यवसायिक तौर पर गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं उन्हें आपके इस वार्ता को सुनकर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही किसान भाइयों, आपके लिए अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे, इसे फ्रिक्वेंसी याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। खुद की

0: खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
0: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद।
13: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
14: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के, मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो, और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो

0: उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान न देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु

0: का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं, वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टी विटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं, तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इन लोगों की इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है, जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है, तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा, और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
0: जी जी। तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
1: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे, तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होता

0: हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी, तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पे कम पड़ेगी, एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की वो दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
1: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
0: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसकी फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि हैं, जलवायु अनुकूल कृषि हैं या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके के पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्व की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटेशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे
1: जी।
0: तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
1: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
0: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था, तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीकी है। तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है, नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक ताको वृद्धि करेंगे, ये सब चीज़ें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियां हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव, तो ये

0: सारे एक छोटी छोटी चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद उमा आपको।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
12: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
13: कब से?
12: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
13: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
12: खांसी?
13: हाँ।
12: इसको तो एक आध महीना हो गया।
13: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
12: डॉक्टर, खांसी तो है।
13: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत।

0: दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
4: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
2: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
4: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरियां जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से

यह फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम एक बहुत ही मनोरंजक विषय के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। जी हाँ, ये जो फिल्में होती है ना, वो समाज का आईना होती है और फिल्में हो या साहित्य हो, ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से समाज को प्रभावित भी करती है और बहुत गहरे इन्फ्लुएंस डालती है, चाहे हमारी आज़ादी की बात हो या फिर किसी और सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करना हो। फिल्में, साहित्य, ये दोनों ही समाज को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित ज़रूर करती है और लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में जो हर महिला को या हर लड़की को ज़रूर एक बार अपने जीवन में तो ज़रूर देखनी चाहिए। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो 2014 में रिलीज़ हुई फिल्म क्वीन है। क्वीन एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शादी से कुछ समय पहले ही लड़का मना कर देता है शादी करने के लिए। पहले लड़के ने ही प्रपोज किया था, ठीक ठाक लव स्टोरी थी, लेकिन एन मौके पर लड़का लड़की को शादी के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो लड़की कैसे बदलती है और क्या करती है अपने जीवन

में ये किसी बदले की कहानी नहीं है, वो किसी से बदला नहीं लेती है, लेकिन अपने जीवन में वो जो बदलाव लाती है और एक कॉन्फिडेंट लड़की बनकर जो बाहर आती है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। क्वीन 2014 में रिलीज़ हुई थी, हिंदी में अवेलेबल है। और छपाक 2020 में रिलीज़ हुई बॉलीवुड की फिल्म छपाक, ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि मालती नाम की लड़की पर एसिड अटैक होता है और किस तरीके से वो स्ट्रगल करती है, साहस दिखाती है और जस्टिस के लिए लड़ती है। ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। और जब फिल्मों की बात आए और लड़कियों से जुड़ी हुई फिल्मों की बात आए और दंगल की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और जो लड़कियां किस तरीके से खेल में भी आगे बढ़कर अपना परचम लहरा रही है। कई जगहों पर आज भी कुश्ती को लड़कों का खेल माना जाता है। जी हाँ, कुश्ती आज भी लड़कों का खेल माना जाता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़कर लड़कियां कुश्ती में भी बहुत नाम कमाती है। और ये भी रियल जिंदगी से इंस्पायर्ड कहानी है 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल। और 2012 की कहानी, अब तक जितनी भी फिल्मों की हमने बात की वो बदले की कहानी नहीं थी, लेकिन 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी बदले की कहानी, और ये इतनी कमाल की कहानी है वाकई। आप फिल्म देखने के बाद अंत में यही सोचेंगे कि इस फिल्म ने हमें बहुत चालाकी से ठगा है। और आप फिल्म देखिए, ज़्यादा बताने पर फिल्म का मजा ख़राब हो जाएगा। इस फिल्म में विद्या बाक्षी नाम की एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और किस तरीके से प्रेगनेंसी की हालत में वो अपने पति को ढूंढने निकली है, ये उसकी जर्नी को दिखाता है और ये उसकी कहानी को दिखाता है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी। 2016 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी पिंक, ये तीन लड़कियों की कहानी है जो मर्जी की बात करती है, महिला के अधिकार की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। तीन लड़कियां जो एक मेट्रो शहर में रह रही है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है, एक रात कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और उसके बाद एक सवाल निकल कर आता है कि क्या हाँ या ना मायने रखता है या नहीं। 2016 में रिलीज़ हुई फिल्म पिंक आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इंग्लिश विंग्लिश तो आप देखिए, अपनी मम्मी को दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। 2012 में ये फिल्म आई थी श्रीदेवी की, बहुत ही कमाल की फिल्म। एक हाउसवाइफ जो इंग्लिश सीखने की कोशिश करती है, अपना आत्मविश्वास और अपना स्वाभिमान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने की कोशिश करती है, क्या उसकी जर्नी होती है और किस तरीके से वो इंग्लिश सीखती है या नहीं। और आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा हर दूसरे घर की शायद यही कहानी है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ज़रूर देखिए। और हम आगे बढ़े तो द ग्रेट इंडियन किचन, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके बहुत बड़े सपने तो नहीं है, बस छोटा सा सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और किस तरीके से वो किचन और घर गृहस्थी में उलझ कर रह जाती है और किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी अपने घर पर यही गलती तो नहीं कर रहे हैं अपनी माँ के साथ या किसी ऐसी महिला के साथ जो जिन्होंने अपने आप को घर के प्रति समर्पित कर दिया है। ये फिल्म यानी कि द ग्रेट इंडियन किचन आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ ये फिल्म है आरओवी, और इस फिल्म के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस इतना बताऊँगी कि आरओवी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे खुद निकाल देते हैं। आगे उसकी जो भी जर्नी होती है उस दौरान उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और फिर अंत इस फिल्म का ऐसा होता है कि आप भौचक्के रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखेगा बहुत। ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नील बटे सन्नाटा। 2015 में रिलीज़ हुई थी फिल्म नील बटे सन्नाटा। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो खुद पढ़ाई करती है ताकि उसकी बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, उसकी बेटी भी पढ़ाई कर सके। इस फिल्म का थीम यही है कि पढ़ना लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी होता है, और माँ और बेटी का बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। नील बटा सन्नाटा 2015 में रिलीज़ हुई थी, ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अर्थ ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, इस फिल्म को हर महिला को ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बताती है कि एक महिला के जीवन का क्या अर्थ है, अगर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अचानक बिखर जाती है तो फिर क्या होता है। जब भी आप स्पाई थ्रिलर जासूस की कहानी पढ़ते हैं या फिर फिल्म के बारे में सोचते हैं तो कोई लड़का ही आपकी नज़र में आता है, लेकिन राजी ये बहुत ही कमाल की फिल्म है और ये आपके उस सोच को चैलेंज करती है, उस सोच को तोड़ती है कि कोई स्पाई, कोई जासूस सिर्फ लड़का ही हो सकता है। राजी आलिया भट्ट की बहुत ही बेहतरीन फिल्म, 2018 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और एक फिल्म बहुत चर्चित हुई थी जब वो रिलीज़ हुई थी थप्पड़,
सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है, लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों।

0: दिसंबर 2020 में रिलीज हुई थी और ये बहुत सही सवाल उठाती है। कोई भी इंसान जिसको अपने बराबर का समझता है या अपने से ऊपर समझता है उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन एक महिला पर, एक पत्नी पर थप्पड़ उठाना कितना आसान होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और किस तरीके से ये फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है कि एक थप्पड़, लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों, ये फिल्म हर महिला को ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक फिल्म की बात कर ही ली है तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। जया नाम की एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी है जिसकी शादी होती है और बाद में किस तरीके से उसे डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है और किस तगड़े तरीके से वो कम बैक करती है और सारी चीज़ें अपने हक में ले आती है। ये फिल्म बहुत ही कमाल की, मतलब कॉमेडी भी है और मैसेज भी साथ साथ दे जाती है, कहीं कहीं दिल दुखता भी है। तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अभी हमने राजी के बारे में बात की कि जब भी हम किसी जासूस की बात करते हैं या पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई हीरो ही आता है, लेकिन जब हम मर्दानी फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से केस को सुलझाता है। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद इस सीरीज के और भी फिल्में आई, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 2014 में आई फिल्म मर्दानी, किस तरीके से रानी मुखर्जी का किरदार एक केस को सुलझाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुलझाता है। और 2024 में रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज, एक साथ बहुत सारे मुद्दों को ये फिल्म उठाती है, घूंघट प्रथा, लड़कियों का पढ़ना और आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, बहुत सारी बातें ये फिल्म आपको बताती है। मतलब अगर इस फिल्म के मैसेजेस मैं यहाँ देने बैठ जाऊँ तो 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी फिल्म और साथ साथ ये बहुत अच्छे मैसेजेस भी देती है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। 2024 में रिलीज़ हुई थी फिल्म लापता लेडीज़। और अब तक हमने जितनी भी फिल्मों के बारे में बात की उन फिल्मों को सिर्फ लड़की को नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कहते हैं नाम कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसी तरीके से किसी भी सफल स्त्री के पीछे एक ऐसे पुरुष का हाथ होता है जो उसे सपोर्ट करता है, हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा होता है और उसे प्रोत्साहित करता है। तो ये फिल्में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन को या फिर अपने आसपास की स्त्रियों को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि करियर में ही अच्छा करना अच्छा होता है। अगर वो हाउसवाइफ बनना ही चुनती हैं तो भी उनका आत्मसम्मान उतना ही ज़रूरी होता है। इंग्लिश फिल्म में ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को समझने को मिलेगा। इसलिए जितनी भी फिल्मों के बारे में हमने बात की वो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखनी चाहिए। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप अगर कभी फ्री हो और कुछ अच्छा देखने का दिल करे और मोटिवेशनल देखने का दिल करे, मीनिंगफुल देखने का मन करे, तो ये फिल्में आप ज़रूर देखें अभी के लिए। तो लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए से होंगे और अपना और अपने अपनों का विशेष ख्याल रख रहे होंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें और मुझे दे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दे इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.

0: you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, एक बार फिर मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ एक नए विषय के साथ, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु, और लेकर आई हूँ आपके लिए एक और उपयोगी विषय, और वो विषय है टमाटर की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी को पता है कि टमाटर कितना लोकप्रिय सब्जी है, और लोग इसके बिना अपनी सब्जियों को पकाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज बहुत सारी बातें जानेंगे हम टमाटर की खेती के बारे में, साथ ही वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रणधीर कुमार, विभागाध्यक्ष उद्यान शाक एवं पुष्प विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी टमाटर की बात कही मैंने, और टमाटर देखने में इतना खूबसूरत लगता है, और इसके गुण भी बहुत हैं। इसमें 90% पानी पाया जाता है, जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, और इसके अलावा जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें पाया जाता है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स लाइकोपिन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन सबसे पहले जब वैज्ञानिक खेती की बात आती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए। तो टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु हम आपसे जानना चाहेंगे।
6: बिल्कुल ठीक कहा आपने आरजे अनु जी। टमाटर को बिलायती बैगन भी कहते हैं, और इसका वानस्पतिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम परसिकम होता है। यह सोलेनेसी कुल से आता है, जिसको आप आलू कुल भी कह सकते हैं। और इसका उद्गम स्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका पेरू से ये आया है यहाँ पर इंडिया में। पौष्टिक गुणों से भरपूर यह सब्जी जो है बहुत ही ज़्यादा बिहार में भी काफ़ी मात्रा में हम इसका उत्पादन करते हैं। इसका लाल रंग आपने जैसे बताया लाइकोपिन की वजह से ही होता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, जलवायु और मिट्टी दोनों जानना जरूरी है हमारे किसान भाइयों को। बलुई दोमट मिट्टी टमाटर के लिए सबसे बेहतर है।
5: बलुई दोमट मिट्टी
6: यस। जब टमाटर की अच्छी फसल के लिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित होता है। 27 डिग्री सेल्सियस से के अधिक तापमान पर इसका लाल रंग फीका होने लगता है। जब रात्रि का तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस से कम और दिन का तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है, तब पराकण व फल लगने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जो हमारे यहाँ बिहार में खास करके जो ठंडी का समय है, इसके फलन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
5: इसलिए ठंडी के समय में ज्यादा आपको बाजार लगा सकते टमाटर दिख भी जाते हैं।
6: जी जी।
5: और इसके बाद डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात आती है खेती की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम टमाटर की खेती करने जाएं, हमारे किसान भाई टमाटर की खेती करने जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए खेती के लिए?
6: देखिए, भूमि को जो जमीन होता है, तो सामान्यतः 2 से 3 जुताई कर पाटा चलाते हैं। फिर जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 200 से 250 कुंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 60 किलोग्राम पोटास खेत तैयारी के समय ही प्रयोग कर लेते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा है 40 किलोग्राम रोपाई के 45 दिन एवं 40 किलोग्राम नाइट्रोजन वो 80 से 90 दिन बाद फिर से प्रयोग करना चाहिए, ऊपरी वेशन करना चाहिए। अंतिम बार जमीन को जब तैयार कर रहे होते हैं उस समय 20 से 30 किलो सुहागा, जो बोरेक्स नाम से बाजार में उपलब्ध भी है, प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से भी फल जो फटने की समस्या बाद में आती है वो नहीं होता, फूल झड़ने की समस्या रुकती है।
5: बोरेक्स डालना
6: चाहिए 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से,
5: जिससे कि आपके फल फटे नहीं,
6: गिरे नहीं। तत्पश्चात रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद 0.3 से 0.4

0: प्रतिशत बोरन के घोल का भी छिड़काव करने से फल फटना की जो समस्या है रुकती है। जस्ता और मैग्नीज के 10 ppm के प्रयोग से फलों में विटामिन सी की मात्रा बढ़ सकती है, बढ़ती है।
1: और सर हमने ये भी देखा है कि अभी वैज्ञानिकों के अनुसार अभी किसान भाइयों को टमाटर मतलब रुपाई के लिए कह दिया जाता है इस मौसम में, और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इस समय टेम्परेचर कुछ लगभग वैसा ही रहता है जैसे इसके रुपाई के लिए ज़रूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: इसके बाद हम डॉक्टर साहब आपसे इसके प्रभेदों के नाम जानना चाहेंगे क्योंकि टमाटर के बहुत सारे प्रभेद होते हैं, किस्म होते हैं, और उन किस्मों को जानने के बाद कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को आसानी होगी टमाटर के किस्मों को पहचानने में और उन्हें बाजार में बेचने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभी सबसे जो अभी नई नई बहुत सारी किस्में आ गई है, ऐसे पुरानी भी बहुत सारी किस्में बाजार में भी उपलब्ध हैं, जैसे पंत टमाटर 1, पूसा सदाबहार, पूसा शंकर 1, पूसा शंकर 2, अर्का सौरभ, अर्का विकास, और अभी अर्का रक्षक और अर्का सम्राट, ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट यानी बहु रोग निरोधी विरोधी क्षमता इसमें है, ये इस सब किस्में भी हम लगा सकते हैं। KT4 है, ND T 108 है, इस तरह की बहुत पंजाब ट्रॉपिक, काशी विशेष हमारे इस बिहार के इलाके में अभी काफ़ी प्रचलित हुआ है, काशी अनुपम है, काशी शरद, बादशाह सहनसा, कुछ हाइब्रिड्स भी हैं जैसे बादशाह सहनसा, अविनाश 2, अविनाश 3, रूपाली, वैशाली, पंजाब, बरखा बहार 1, पंजाब बरखा बहार 2, ये सब नई अभी कुछ जो संकर किस्में हैं अभी किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं।
1: तो सर सबसे ज़्यादा आसानी हमारे किसान भाइयों को किस किस्म को उपजाने और उसे बाज़ार में अच्छे मूल्य पाने में हो सकता है?
0: हम तो ये कहेंगे कि यदि आपकी खेती कर ही रहे हैं और तन मन धन पूरा लगाते हैं तो इस पर हम तो ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप संकर किस्मों का उपयोग करिए, ताकि एक पौधे से प्रति पौधा आपको या प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पादन मिले। जैसे मैंने नाम भी लिया, बादशाह सहनसा, अविनाश 2, अविनाश 3, रूपाली, वैशाली, ये सब जो किस्में हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब बरखा बहार 1, पंजाब बरखा बहार 2, ये सब बहुत ही लोकप्रिय किस्में हैं, इनको लगा करके किसान भाई बहुत ही अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा लाभ ले सकते हैं।
1: तो ये बात हो गई किसान भाइयों कि आप इन किस्मों को अपना कर अच्छा लाभ पा सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी होता है खाद और उर्वरक हमारे किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़रूरी मुझे पता है कि आपके लिए, आप जब खेती करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी आपका जो ध्यान है वो रहता है कि खाद कैसा होना चाहिए, उर्वरक कैसा होना चाहिए। तो जरूरी है सर इसमें जब हम टमाटर की खेती करने जाते हैं हमारे किसान भाई, कितनी मात्रा होनी चाहिए?
0: अभी मैंने भूमि की तैयारी के तौर पे मैंने बताया कि इसमें कुल जो हम खाद की मात्रा देते हैं, अभी हमने बताया कि जब खेत तैयार करते हैं उसी समय हम 200 से 250 किलोग्राम 2 क्विंटल जो है गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में मिलाते हैं, और इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 60 किलोग्राम पोटास, जो म्यूरेट ऑफ पोटो, ये पोटास जो है इसको हम उस समय खेत में रोपाई से पहले देते हैं, और नाइट्रोजन की शेष मात्रा 2 बार और देते हैं, जैसे 40 किलोग्राम रोपाई के 45 दिन बाद और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन रोपाई के 80 से 90 दिनों के बाद। इस तरह से हम जमीन जमीन में इस फर्टिलाइजर डालने से अच्छा से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं।
1: तो ये बात हो गई किसान भाइयों कि यहाँ पर खाद और उर्वरक की मात्रा डॉक्टर साहब ने बताया आपको, और इसके बाद बात आती है बीज बोने की सर, तो टमाटर बोने के लिए बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
0: किसान भाइयों मैं ये कहूँगा कि 1 हेक्टेयर यदि क्षेत्रफल में आप फसल उगाना चाहते हैं तो इसके लिए जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी जिसको मुक्त परागित किस्म कहते हैं, चालू किस्म जिसको हम बाजार में कहते हैं, 400 से 500 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है, और यदि संकर किस्म का चयन आपने किया है तो 150 से 200 ग्राम बीज जो होता है ये 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त माना जाता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यदि आप बिहार में बचना चाहते हैं, यदि वायरस फ्री क्रॉप लेना चाहते हैं तो अब समय आ गया, अब हमारे किसान भाई 10 सितंबर तक, 5 से 10 सितंबर के बीच में इसका बीज नर्सरी तैयार करने के लिए गिरा सकते हैं, और 20 से 25 दिन में बिचड़ा तैयार हो जाता है जिसकी रोपाई हम आगे अब अपने खेत में मुख्य खेत में करते हैं।
1: तो बिल्कुल अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी बातें हैं ये, और ऐसे ही हमारी बातें यहाँ पर चलती रहेंगी। और डॉक्टर साहब यहाँ पर बीज की बुआई के समय को भी हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई अगर ये समय जान लेंगे तो उनके लिए और अच्छा होगा।
0: और देखिए बिहार में मुख्यतः 2 बार हम टमाटर की खेती करते हैं, एक जो है जाड़े वाली फसल जो लेते हैं शरद ऋतु की, वो अभी अगस्त से ही बुआई शुरू कर देते हैं, कुछ किसान भाइयों ने बीज बुआई कर भी दिया है और कुछ अभी कर रहे हैं, और ये

0: 10-15 सितंबर तक लोग करेंगे, जिसका कि रोपाई भी 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक बिहार में हम करते हैं। रोपाई के लिए जो सम शुद्ध जो मेन स्थिति होता है 20-25 दिन में इसका बिचड़ा तैयार हो जाता है, और खासकर यदि आप संकर किस्म का बीज लगाए हैं तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। मैदानी भाग जैसे है शरद ऋतु के लिए जुलाई से सितंबर तक बीज बुआई का समय होता है, और पौधा रोपण के लिए अगस्त से अक्टूबर महीना होता है। और मैदानी भाग में यदि बसंत ग्रीष्म ऋतु वाला जो हम गर्मा टमाटर जिसकी बात करते हैं उसके लिए नवंबर दिसंबर में हम बीज बोते हैं, और दिसंबर जनवरी में एक महीने बाद ही सीधे जो है उसकी रोपाई कर देते हैं, और इससे जो है बहुत ही अच्छा हमको उत्पादन दोनों सीजन में मिल सकता है।
1: डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया आपको बीज बुआई का समय, और इसके बाद बात आती है पौध रोपाई की सर, और टमाटर पौध की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए किसान भाइयों को कि उनका अच्छा लाभ मिल सके उन्हें?
0: सबसे पहले है कि वायरस फ्री विषाणु मुक्त नर्सरी तैयार हो। इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसान भाई आप जब भी अभी बेड लगाएं, चूंकि अभी बरसात का समय है, तो ऊंचे बेड बनाएं, बेड बीज सैया की तैयारी करें, बीज सैया की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। जमीन से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बनाकर उसमें बीज को कतारबद्ध करके गिराएं, और बीज थोड़ा विरल गिराएं, बहुत घना बीज ना डालें ताकि बिचड़ा आपका स्वस्थ हो। और बिचड़े को कोशिश करें यदि मच्छरदानी यदि लो कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो मच्छरदानी वगैरह में डाल करके भी कर सकते हैं, अन्यथा यदि पॉली हाउस नेट हाउस आपके पास उपलब्ध है तो आप रोड ट्रेज में इसका बिचड़ा तैयार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका बाद में पौधा अच्छा स्वस्थ पौधा मिले। और इसको मच्छरदानी वगैरह लगा करके बचाने से क्या होता है कि शुरुआत में ही इसमें वायरस विषाणु जो है विषाणु हमारा आक्रमण करते हैं, और इन विषाणुओं के आक्रमण से बचने के लिए हमें स्वस्थ बिचड़ा तैयार करना चाहिए। कहते हैं होनहार बिरवा के हो चिकने पात, यदि बिरवा यानी बिचड़ा हमारा स्वस्थ होगा तभी हमारा उत्पादन बढ़िया होगा। तो शुरू से ही ध्यान देना चाहिए, बिचड़ा बढ़िया से लगाएं, और इस जब बिचड़ा तैयार हो जाता है 18 से 25 दिन का बिचड़ा जब तैयार हो जाता है, ये कम से कम 4 से 6 इंच का बिचड़ा हो जाए, तब खासकर यदि सीमित बढ़वार वाली किस्म है तो उसको 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखने चाहिए। और यदि आपका असीमित बढ़वार वाली है जो लगातार फलते जाता है बढ़ते जाता है, ऐसे किस्म का आप पौध लगा रहे हैं तो लाइन से लगातार से कतार की दूरी 2.5 फीट यानी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी बात कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी शुरुआत में जब हम पौधे लगाते हैं तो पहले सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। यदि शरदकालीन फसल लगाए हैं तो आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पे, और यदि गर्मा फसल आपने लगा रखा है तो 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक समय तक भूमि सूखी रहने के पश्चात अकस्मात पानी कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फल झड़ने की समस्या, फूल गिर जाने की समस्या, फल फटने की समस्या किसान भाई हमारे खेत में देख पाते हैं। थोड़ी बात ये यहाँ पर साथ साथ और भी करना चाहेंगे, इसमें तरह तरह के खरपतवार भी आते हैं, तो यदि खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं और ज़रूरी भी है खरपतवार नियंत्रण है, तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडीमेथिलीन का पौधरोपण के 1 दिन पहले ही छिड़काव करें, और एवं 45 दिन बाद खुरपी से 1 बार निराई गुड़ाई करने से खरपतवार मुक्त हो सकता है हमारा खेत। ये तो रही बात खरपतवार नियंत्रण की, लेकिन थोड़ी बात हम इसमें ये भी कहते हैं, कई बार किसान भाई खेती करते हैं कहते हैं हमारा उत्पादन बढ़िया नहीं हो रहा, तो बहुत सारे पादप वृद्धि नियामक भी बाजार में उपलब्ध हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों का। जैसे बसंत ऋतु के प्रारंभ में कम तापक्रम और शरद ऋतु से पहले अधिक तापक्रम रहने से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फल कम लगते हैं। जब रात्रि का तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस से कम और दिन का तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है, ऐसी परिस्थिति में परागण व फल लगने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छी फलत अगले अगेती फसल तथा फलों में कम बीज के लिए पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 15 से 20 ppm यानी 15 से 20 mg 1 लीटर पानी में 2,4-D का भी 1 से 5 ppm यानी 1 से 5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में, या फिर जिब्रेलिक एसिड का भी हम 50 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। इसका प्रयोग ही बहुत ही लाभकारी होता है।

0: है, इससे जो है आपका अगेती फसल में या फिर जो गर्मा फसल है इसमें जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, परागण की समस्या आती है, उसे ये निजात मिलेगा। रोपाई के 30 से 45 व 60 दिनों पर 5-5 ppm का 2,4-D के प्रयोग पर फल उत्पादन में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। फूलों को धूप से जलने और क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। ये इसी तरह से इथरेल नाम का एक हार्मोन बाजार में उपलब्ध है। इथरेल का 500 से 1000 ppm यदि आप छिड़काव करते हैं तो फलों की संख्या बढ़ाता है तथा इसका पकना समान रूप से होता है। नेप्थलिन NA जो बाजार में उपलब्ध है, नेप्थलिन एस्टिक एसिड, जो 100 ppm के छिड़काव से फलों में घुलनशील ठोस की मात्रा भी बढ़ सकती है। इसी प्रकार 100 ppm काइनेटिन के प्रयोग से फलों का घुलनशील ठोस, शर्करा एवं विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि पाई जाती है तथा उपज में भी वृद्धि होती है। और एक चीज़ बताएं कि इतना जब आप कर ही रहे हैं तो खास करके जब आप असीमित बढ़वार वाली जो इनडिटर्मिनेट टोमेटो जिसको कहते हैं, यदि ऐसा टमाटर किसान भाई लगाए हैं तो पौधे को सहारा देना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें टमाटर शाखाएं भूमि के नहीं देते हैं तो क्या होता है, भूमि के ऊपर ये पौधे गिर जाते हैं। इस कारण हवा और प्रकाश से वंचित होने लगती हैं इनकी टहनियाँ, पत्ते भी नहीं मिल पत्ते पत्तों पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होती है, फल भी सिंचाई के पानी में सड़ने लगते हैं। तो ऐसे में अतिरिक्त फलों में आकर्षक रंग भी नहीं आ पाता है। अतः पौधों को कम से कम 3-4 cm मोटी बांस की खूंटी के सहारे लताओं को सहारा देना चाहिए। ऐसा सहारा देने से अधिक प्रकाश पाकर फल का आकार में बढ़ोतरी होता है और फल भी आकर्षक होते हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। और यदि बढ़िया आपने पैदा कर ही लिया तो इसकी तुड़ाई भी आपको समय से करनी चाहिए। हम किसान भाइयों को अक्सर कहते हैं कि बाजार की व्यवस्था के अनुसार ही इसके अलग अलग स्टेज पे इसकी तुड़ाई करते हैं। किस स्थिति में टमाटर तोड़ना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। यदि टमाटर की तुड़ाई बाजार के अनुरूप नहीं करेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। अच्छा। आपका उत्पादन तो हो जाएगा लेकिन लाभ बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो सीमित बढ़वार वाली जो किस्में होती हैं इनकी रुपाई के 65-70 दिनों बाद एवं असीमित बढ़वार वाली किस्में में 75-80 दिनों बाद फल देना प्रारंभ हो जाता है, परंतु तुरंत प्रयोग करने के लिए फल पूर्ण रूप से सुर्ख हो जाने पर ही तोड़ना चाहिए। लेकिन हाट या दूर यदि भेजना है तो जो टर्निंग स्टेज होता है, जैसे गुलाबी रंग लेना शुरू करे, उस स्टेज में कितना दूर हमें मार्केटिंग करना है, बाजार व्यवस्था देखनी है, उस हिसाब से हम इसकी फल की तुड़ाई करके उसकी ग्रेडिंग करके फिर पैकेजिंग करके हम मार्केट में ले जाते हैं। यदि हम उपज की बात करें तो जो संकर किस्में हैं इनका उत्पादन साधारण औसत उत्पादन 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है बिहार में। और यदि मुक्त परागित प्रभेद हैं, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, चालू किस्म जिसको कहते हैं, इसमें भी हमारे किसान भाई 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आराम से ले सकते हैं।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने टमाटर पौध की तैयारी से लेकर तुड़ाई तक की बात कर दी और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पौध की तैयारी की बात कहें तो बेड का आपको खास ख्याल रखना है, 15 cm ज़मीन से ऊपर आपको बेड अच्छी तरीके से बनाने हैं। साथ ही इन्होंने जो है लाइन की दूरी और पौधों की दूरी के बारे में बताया। इसके बाद इन्होंने एक बात और ध्यान रखने को कहा आप सभी को कि अगर आपका ज़मीन सूखा हुआ है तो अचानक पानी ना डालें, इससे आपके फल गिर सकते हैं और फट भी सकते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने तुड़ाई के बारे में कहा। अगर डिस्टेंस यानी कि जहां बाजार दूर है, आप जहां से खेती कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं तो आप कलर देख लें टमाटर का, उस तरीके से यानी कि दूरी के हिसाब से आप तुड़ाई करें। तो बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने यहां पर बता दी। और इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम टमाटर की बुआई करने जाएं, यानी कि टमाटर की बुआई करने से पहले और टमाटर की बुआई के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले कि बीज का चुनाव समय से करें और सबसे पहले घर में प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें टमाटर की खेती करनी है, उसके लिए प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आपने सोचा है, प्लान बनाया कि हमें एक हेक्टेयर में टमाटर की खेती करनी या एक बीघा टमाटर की खेती करना है, तो उसके लिए तुरंत आप किसी वैज्ञानिक से सलाह ले करके, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा सबौर कृषि विश्वविद्यालय में, सब बहुत सारे वैज्ञानिक इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। उनसे बात करके पहले प्लानिंग करें कि कौन सी किस्म लगाएं, आपका ज़मीन कैसा है, पानी तो नहीं दिखता है, ये सारी बातों का ध्यान रख करके बीज का चुनाव और कौन सी किस्म है, उसका बीज कहाँ से मिलेगा,

0: ये जरूर देखें, बीज अच्छे सोर्स से लें, सरकारी व्यवस्था यदि हो जाता है तो वहां से लें, बिल्कुल ढंग का बीज लेना चाहिए,
1: यानी कि स्वस्थ बीज,
0: स्वस्थ बीज होना चाहिए। और बीज उपचार भी करना जरूरी है, बीज उपचार करने के लिए कार्बोक्सिन और थीरम वाली दवा मिक्स आती वीटा वैक्स पावर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो न मिले तो कार्बेंडाजिम जो बावेस्टिन नाम से बाजार में उपलब्ध है उसका भी आप, एक चुटकी दवा ही काफ़ी है आपके एक है एक बीघा के लिए, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 से 2 ग्राम दवा सफिशियंट है, उनका आप इस्तेमाल करके और उसका बीज की बुआई करें। और बीज जब आप लगाएं तो बेड पे लगाएं, बहुत सारी बीमारियां भी इसमें आती हैं। मैं आपको यहाँ पर किसान भाइयों को थोड़ा सा बीमारियों के बारे में बताना चाह रहा था कि यदि इसमें कुछ खास खास बीमारियां जो इसे भागलपुर के इलाके में जो खास करके लगती हैं, जैसे एक आर्द्र गलन आता है, डैम्पिंग ऑफ जिसे कहते हैं, ये बहुत ही मुख्य रोग है जो नर्सरी अवस्था में ही आता है। इस रोग में सतह जमीन के पास तना गलने लगता है तथा पौधा मर जाता है। इस रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले ही बीज का उपचार फफूंदनाशक दवा, जैसे मैंने बताया कि ये आप बीटा वैक्स पावर की बात बताया था, कार्बोक्सिन और थीरम वाली दवा, इसका मात्र 2 ग्राम दवाई एक बीघा के लिए जो बीज की मात्रा है 50 से 60 ग्राम बीज में काफ़ी पर्याप्त होता है आप, या फिर इसके अलावा कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बेंडाजिम की बात मैंने बताया, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसके अलावा भी यदि खेत में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, लगता है कि पौधे जो हैं बिछड़ा जमीन से की सतह से गिर रहा है, तो ऐसे स्थिति में कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके एक बार जरूर छिड़काव करें, और उसके ठीक 4 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 ब्लू कॉपर धानु कॉप आदि नाम से रेज नाम से भी उपलब्ध है, इनका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 2.5 से 3 ग्राम इसका भी एक बार ड्रेंचिंग करना चाहिए, यानी पूरे पौधे को भिगाना चाहिए नर्सरी बेड को। टमाटर में जो गर्मा फसल है उसमें मुख्यतः कुकड़ी रोग भी देखा जाता है, कुकड़ी यानी ये वायरल विषाणु रोग, विषाणु जनित रोग है, और रोगग्रस्त इसमें क्या है, इसको बचाने के लिए जो पहले जैसे ही शुरुआत में दिखाई पौधे पौधा कोई रोगग्रस्त उसे उखाड़ कर जला देना चाहिए या मिट्टी में गाड़ दें। और ये जानते हैं कि ये पौधा, ये जो बीमारी है ये सफ़ेद मक्खी के वजह से ज़्यादातर ये फैलती हैं, तो जो इनके वाहक कीट हैं सफ़ेद मक्खी, इनकी रोकथाम करने के लिए हम 1 मिलीलीटर दवा खासकर इमिडाक्लोपीड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में, या फिर एसीफेट दवा 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके बारी बारी से अल्टरनेट 10 दिन के अंतराल पे इसका छिड़काव करने से ये बीमारी से अपने फसल को बचाया जा सकता है। इसी तरह से एंथ्रेक्नोज बीमारी भी इसमें काफ़ी देखा जाता है इस इलाके में, इसमें आप देखते होंगे कि पत्तियों के ऊपर, टमाटर के पत्तियों के ऊपर पीले गोल जलयुक्त धब्बे दिखाई देते हैं, ये धब्बे आपस में मिलकर फिर बड़े भूरे हो जाते हैं, रोगी पत्तियां सूख जाती हैं, फलों पर धब्बे गोलाकार जलयुक्त व हल्के रंग के होते हैं। रोग के निदान हेतु बीज के को थीरम अवेस्टिन से उपचार जरूर करें, और जब ऐसी बीमारी दिखाई देता है तो मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने से ये बीमारी रुक जाती है। इसी तरह से अगेती झुलसा बीमारी इसमें आता है, पर्ण झुलसा जिसको कहते हैं, पत्ती झुलसा रोग, ये सर्वप्रथम पत्ती पर हरे हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में गहरे रंग के और बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। तो ये इनका रोकथाम के लिए जीनेब करके एक दवा आती है जिसका कि 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल कर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने से आपका फसल बच सकता है। कई बार बिल्ट इसमें जो सुखड़ा उखड़ा बीमारी आता है, और ये बीमारी भी काफ़ी हानि पहुंचा जाता है, कई बार तो पूरा खेत का खेत बिल्कुल मर जाता है, इसमें पौधा मुरझाकर सूख जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, और कॉलर वाला जो पोर्शन है, कमर का जो पोर्शन यानी जमीन से सटा हुआ जो तना होता है वहाँ पर सिकुड़ने लगता है वो वाला भाग, और पौधों की जड़ व भीतरी भाग भूरा हो जाता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। लक्षण सबसे स्पष्ट फूल आने व फल बनने की अवस्था पर ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे फलने लगता है एक एक पौधे सूखने लगते हैं फल लगने के समय ही, तो ऐसे में इनके रोकथाम के लिए रोग रोधी प्रजातियां हैं उनका इस्तेमाल करें, भूमि सौरीकरण करना बहुत जरूरी है, भूमि का शोधन करना चाहिए, और जमीन में मिट्टी में चूना डालना चाहिए 80 से 90

0: किलोग्राम चूना प्रति एकड़ की दर से आप हर तीसरे साल खेत में डालें, ताकि जो ज़मीन जहां पर एसिडिटी बढ़ गई है, ज़मीन का पीएच मान 6 से नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है। बोने से पहले बीज को कार्बेंडाजिम से उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम इसमें यदि इस तरह का बिल्टिंग आता है तो हम दूसरे जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एक कीड़ा इसमें बहुत ज़्यादा जो तंग करता है वो फल छेदक, और ख़ास करके जो फरवरी मार्च का महीना आता है उसमें फल छेदक का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है। इसकी रोकथाम के लिए लार्वा को चून को चुन कर मारना चाहिए, और पौध को लगाने से पहले जड़ को क्लोरपाइरीफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल कर 5 मिनट तक डुबो कर उपचारित कर लेना जरूरी है। तत्पश्चात एक दवाती स्पाइनोसाइड, बहुत ही सुरक्षित दवा है, इसका 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से, यदि इसको 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव आप करते हैं तो ये खास करके जो फल छेदक कीट है इससे आपका फसल निजात पाएगा। और बाकी जो छोटी छोटी कीड़े जैसे थ्रिप्स है, एफिड यानी माहू होता है, जैसिड्स है, ये भी इनके रस चूसते हैं, इनकी पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियाँ में कर्लिंग हो जाता है, मुड़ने लगता है। तो इसके लिए इमिडाक्लोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, और जो मैंने पहले बताया एसीफेट दवा 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में, इन दोनों का अल्टरनेट छिड़काव करने से ये जो भी इस तरह की कीड़े हैं इनसे आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। और किसान भाइयों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई भी समस्या है तो उसको आप नियमित रूप से, जब आप ये भी पौध सुरक्षा रसायन का या कोई भी जैविक रसायन का, जैविक उत्पाद का आप इस्तेमाल करते हैं, नियमित रूप से करेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, आपके उत्पाद स्वस्थ होंगे। जब टमाटर के रंग लाल होंगे तो उसी हिसाब से आपके पास पैसे आमदनी भी अच्छा होगा और आपके भी चेहरे लाल होंगे। धन्यवाद।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, और आपको बता दूं किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने बुआई से पहले आप सभी को बताया कि आप पहले से प्लानिंग कर लें कि आपको कौन से किस्म का यहाँ पर टमाटर बोना है, और इसके साथ ही इन्होंने जो रोग हैं उनके बारे में कहा कि अगर आपके टमाटर के पौधों में रोग लगते हैं तो आपके पास कुछ दवाइयों के नाम भी डॉक्टर साहब ने कहा, जैसे कि कार्बेंडाजिम, इसके बाद इमिडाक्लोप्रीड, थीरम, जिनेव, चूना भी होना चाहिए, और इसके बाद उन्होंने स्पाइनोसेट के बारे में भी कहा। तो इन सारी दवाइयों को आप रख सकते हैं अपने पास, और आपको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, तो अपने जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्हें बताएं कि इस तरीके से हमारे पौधे में रोग हैं, और उसे बताने के बाद अगर वो जिस भी दवा को प्रेफर करते हैं आप अपने पौधे पर दें, छिड़काव करें और स्वस्थ टमाटर उपजाएं, हमें भी दें और पूरे देश का नाम रोशन करें, क्योंकि हमारे देश से बहुत से अन्य जो देश है, विदेश है, वहाँ पर टमाटर आयात किया जाता है, और इसीलिए मैं चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत आयात में इसका निर्यात करें, और एक अच्छी जो लाभ है आर्थिक स्तर पर भी, और हमारे देश को भी अच्छी आर्थिक स्तर पर पहुँचाएँ। इसके साथ ही यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सभी से किसान भाइयों फिर से मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत

0: जरूरी है ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।

0: की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
0: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव

0: एचपीवी संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। एचपीवी टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
0: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक,

0: लकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत, नई उम्मीद, नई ऊर्जा और

0: नई शुरुआत के साथ कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
1: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार बिमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
0: चरखी दादरी हरियाणा से
1: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
0: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
1: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
0: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
0: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
1: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
0: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
1: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
0: श्रोताओं, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
1: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
0: जी,
1: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
0: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
1: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
0: जी,
1: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
0: जी,
1: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
0: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
1: बिल्कुल, साथियों उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
0: जी,
1: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
0: जी,
1: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
0: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
1: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
0: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
1: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
0: जी,
1: तो विमलेश जी फिर आगे क्या हुआ?
0: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
1: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
0: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
1: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका मिला।
0: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
1: बिल्कुल, श्रोताओं अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
0: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझकर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
0: जी,
1: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
0: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
1: वो क्या?
0: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें

0: सही बात पता होती है, लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
1: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही
0: जी।
1: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
0: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
1: बिल्कुल विमरेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
0: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए ये जरूर जाने।
1: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
0: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
1: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
0: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
1: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
0: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम,

0: जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मल जीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
3: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
3: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
3: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते, तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते, तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
4: सच्चियाकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
4: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
4: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा।

0: चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
1: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
0: बंदूक भी चलाते हो?
1: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
0: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
1: हाँ।
0: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
1: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
0: जी चाचा।
2: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
3: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
2: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
3: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
2: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
3: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?
4: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं।
6: अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
5: सर ये तो हमारा काम है।
4: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
5: सर आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
4: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ पॉलिश दे। और देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
2: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
4: एक मिनट मान सिंह, तो मैनू फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना?
3: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। फिर आया 1971 का साल।

0: पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
1: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
0: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
1: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
0: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
1: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
3: सर, अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने, निशाना लगाता हूं। अब बिल्कुल निशाने पर आ गया, ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
0: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और अलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के 4 विमान बचे थे। 2 विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने बचे हुए 4 विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
3: ओए कायरो, ओए भागते कहाँ हो? इन्होंने तो सामने आओ, मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।

0: क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
1: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
2: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों देश के लिए शहीद हो गए।
0: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
2: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेख हूँ, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मत।

0: स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
0: See you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
7: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
12: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद।
12: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
13: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय

0: लेकर उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या

0: फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल

0: पर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर,
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को समर्पित यह गीत। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और महेश को संहारकर्ता कहा गया है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में आइए तो हमारे किसान बंधु को पालनकर्ता क्यों नहीं कहा जाए? विश्व के समस्त प्राणी, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, धरती पर चलने वाला मानव हो या जल में विचरण करने वाला जीव जंतु, यदि किसान नहीं होते तो इनका अस्तित्व मिट जाता। तो आइए, इन किसान बंधु के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने काफी हद तक प्रयास किया है, जिसको गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम में मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में विशेष चर्चा करते हैं और हम आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर बात करेंगे सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से। और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
1: जी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है। उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस

निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे, क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कम्प्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है, जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्मजीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं, वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है, उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज है जो सूक्ष्मजीव करते हैं, जो सूक्ष्मजीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु पॉलीसेक्रेड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है, और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे, उसमें हवा का आवागमन जो है वो गैस का जो एक्सचेंज है उस मिट्टी में ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रीद और रंध्र और बृहत रंध्र जो है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है, और उससे पौधा को सांस लेने में या गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं, तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व यानी सूक्ष्मजीव जीवाणु का महत्व न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्मजीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम, इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको

उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है। अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्मजीव जीवाणु का रोल क्या है, तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है और उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है, तो उसको क्या करता है ये जीवाणु, जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है। अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु, जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये स्यूडोमोनास स्पीसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्मजीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम आयन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम क्या करता है, तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रिडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है, उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज है कि वो जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्मजीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे, तो ये फॉस्फोरस जब
किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या

0: किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है, मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है, वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ, आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फास्फोरस या तो H2PO4- और HPO42- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, मिट्टी में जाते ही इमीडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्मजीव जीवाणु का हम अपन माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फास्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में, एनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी, निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज है कि जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है वो क्या करते हैं, तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्जीन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं, और ये रिलीज करने से क्या होता है, पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है, और उसके साथ साथ एक ACCDMNase इंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु, और वो क्या करता है, तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्मजीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्मजीव जीवाणु है, ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए, उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्मजीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसुलस थ्रेंजेनेसिस, ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में, पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट, जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज़ में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी जी धन्यवाद। हाँ साहब, मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए,

फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है वायुमंडल का जो प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है। जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है यानी अंकुरण अच्छा होता है। जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है रेजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट PSBG के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है जो PSB बायो फर्टिलाइजर है, और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं PSB को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जैसे सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15-40 केजी तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की

उसकी क्षमता है, और जब उससे वो नाइट्रोजन उतना स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी। रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे, उस मात्रा में उसका क्वांटिटी घटाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जैसे राय चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में ये जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20 से 25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है, और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का। तो वो क्या करते हैं, उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेड़ को अच्छा से मजबूत कर लीजिए, और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए, और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन एल्गी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके, ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा, और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे, और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी वायुमंडल नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन एल्गी का कल्चर, नील हरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में, और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गए कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं, और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं, और उसको अच्छा से मिला देंगे, इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे, और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में, या सब्जी के केस में, या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचड़ा जो 20-21 दिन का बिचड़ा हो जाता है उसको लगाते हैं, तो उसके

0: अंश में हम क्या करेंगे, बिचरा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचरा के उपचार के लिए भी आप हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सॉल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचरा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सूटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो, ये मेथड, ये विधि है जिसको हम बिचरा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचरा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा, और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट होकर करके जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना या फैटो हार्मोन उपलब्ध कराना या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है, और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है, ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है, जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है, उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ, इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में, वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है, 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है, और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें, ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उसको मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से, तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें, और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
1: सर, आपने सूक्ष्म जीव जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर

0: जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
2: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
2: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 एफएम ग्रीन पर। हर रोज़ की तरह हम कुछ खास लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। उन्नत कृषि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इसमें आप जानते हैं खेती से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो आज भी बहुत ही खास बात है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी और ये हैं प्रधान अन्वेषणकर्ता मखाना अनुसंधान परियोजना और ये है भोला पासवान शास्त्रीय कृषि महाविद्यालय पूर्णिया से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: और धन्यवाद मैडम।
1: और जैसा कि अभी हमने बात किया है डॉक्टर साहब से और बातें भी की, तो मुझे तो बहुत सारे जो अनुभव हैं वो मिले हैं मखाना के बारे में। और मखाना की खेती बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि और साथ ही प्रेरित करें कि मखाना की खेती से क्या

0: फ़ायदा मिल सकता है उन्हें, ये कैसे लाभदायक है और साथ ही इसकी खेती से क्या क्या मुनाफा मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
1: देखिए, जो जल जमाव क्षेत्र है बिहार में 9.12 लाख हेक्टेयर जल जमाव क्षेत्र है, और भागलपुर में जब आप 0 माइल से आगे बढ़ेंगे, पुल क्रॉस करेंगे तो नौगछिया पहुंचने से पहले देखेंगे बाएं साइड में बहुत बड़ा एरिया है जो जल जमाव से ग्रसित रहता है, उसमें जलीय खरपतवार भरा हुआ है। तो उन क्षेत्रों में जहां हम पानी ज़्यादा अधिक आ जाने से कोई खेती नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मखाना एक बेहतर विकल्प है।
0: अच्छा।
1: अब हम बात करते हैं कि इसकी खेती किन किन परिस्थितियों में की जाती है और इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जमीन की 3 स्थिति है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें जुलाई महीने में 1 से 2 फीट पानी आता है और वो अक्टूबर महीने में सूख जाता है, वहाँ पे हम मखाना को खेत पद्धति में करते हैं। जो दूसरी पद्धति है कि जुलाई महीने में 3 से 4 फीट पानी आता है और वो दिसंबर जनवरी में जाके सूखता है, और तीसरी परिस्थिति है कि जुलाई महीने में 7, 8, 10 फीट तक पानी आता है और वो सालों भर जलमग्न भरा रहता है, जलीय खरपतवार से आच्छादित रहता है। तो इन क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता वृद्धि के लिए मखाना एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। तो अब बात करते हैं जो दूसरी परिस्थिति, जो पहली परिस्थिति थी उसमें हम लोग खेत पद्धति में मखाना की खेती करते हैं, जो आपको पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, अररिया, किशनगंज इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है और किसान काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। इसकी जो उत्पादन क्षमता है बहुत ही अच्छी प्रजाति की बीज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा विकसित की गई है, जिसका नाम सबौर मखाना 1 है। इसकी उत्पादन क्षमता 32 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
0: अच्छा।
1: अब हम विशेष रूप से यहाँ पे ये कहना चाहेंगे किसान भाइयों को कि सबौर मखाना के बीज की उपलब्धता भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में उपलब्ध है। ये आपको बीज की उपलब्धता अगस्त महीने से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने तक उपलब्ध रहता है और बीज की उपलब्धता 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बीज को बेचा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कब और कैसे किया जाए। तो खेत पद्धति में मखाना की खेती के लिए हम सबसे पहले जितना हमारा क्षेत्रफल में मखाना लगाना है उसके 1/10 भाग में पौधशाला की तैयारी करनी होगी।
0: अच्छा।
1: पौधशाला की तैयारी, जैसे आप धान की खेती के लिए खेत तैयार करते हैं उसी तरह खेत को तैयार करेंगे कीचड़ लगा करके, जो पानी की गहराई होगी। तो यहाँ पे एक यही ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य खेत में जितने गहराई पानी में आपको पौधे को लगाना है
0: जी,
1: उतने गहराई, उतना पानी का डेप्थ आपको पौधशाला में भी मेंटेन करना होगा।
0: अच्छा।
1: तो खेत पद्धति में अक्सरहा किसान को मात्र 1 फीट पानी में मखाना की खेती की जाती है। तो उसमें नर्सरी, जो पौधशाला का क्षेत्र है उसमें हम लोग नर्सरी में 1 फीट पानी का लगाते हैं और ये काम बीज बुआई का काम दिसंबर महीने में पूर्ण करते हैं।
0: अच्छा।
1: 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी, जो कि सबौर मखाना 1 बीज है, उसको हमने पहले ही कहा है आप लोगों को। इसमें आप क्या करेंगे, नीम आधारित कोई भी दवा जो बाजार में उपलब्ध है उससे इसके बीज का शोधन करने के बाद आप उसमें कीचड़ तैयार करके उसको छिड़काव कर देंगे।
0: अच्छा।
1: ये पौधा आपको 35 से 40 दिन में आपके पानी के सतह पे दिखाई देगा, छोटे छोटे पत्ते, तांबे रंग का पत्ता दिखाई देगा। 65 दिन के बाद ये पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो पौधे की रोपाई होती है वो फरवरी मार्च महीने में होती है।
0: अच्छा।
1: खेत की तैयारी अब हम कैसे की करते हैं उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो जिस तरह से किसान भाई धान के फसल के लिए खेत की तैयारी करते हैं, बस सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। धान के खेत की तरह खेत को तैयार कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपका मेड़ का जो ऊंचाई है वो कम से कम 1 फीट होना चाहिए और अधिकतम हम लोग मखाना की खेती 6 फीट तक के पानी में, 7 फीट पानी तक मखाना की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम खेत की तैयारी करने के समय कितना कितना रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो इसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटास 75, 45, 30 यानी

0: 76 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम पोटास और 75 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से होती है।
1: अच्छा।
0: बुआई के इसमें खेत तैयारी के आखिरी समय में आप इसमें प्रति हेक्टेयर 40 से 50 किलोग्राम चूना अगर मिला देते हैं तो लावा बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अब बात आती है खेत की तैयारी तो हो गई, अब पौधे को किस तरह से और कितनी कितनी दूरी पर लगाया जाए। तो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 1 मीटर से 1.25 मीटर के बीच में रखी जाती है जिससे बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। अब पौधा लगाने के 35 से 40 दिन के बाद आप में थोड़ा कहीं कहीं इसमें एक अल्टरनेरिया पत्ता गलन की बीमारी आती है, उसमें हम किसान भाइयों कहेंगे कि आप एक नीम सीड कर्नल वाले यानी नीम तेल एक दवा आता है चाहे नीम आधारित कोई भी दवा जो बाजार में उपलब्ध है
1: उसको like आप निम्बिसिडीन,
0: हाँ निम्बिसिडीन, नीम का नीम सीड कर्नल वायल, नीम का तेल जो भी बाजार में उपलब्ध है उसको आप क्या करेंगे कि 5 से 7 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उस पे आवश्यकता अनुसार 10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करेंगे तो आपका मखाना में किसी तरह का कोई बीमारी और कीट नहीं लगेगा। मैं नीम आधारित तेल का इस्तेमाल दवा का इसलिए कह रहा हूँ कि पानी में बहुत ही लाभदायक जीव जंतु भी होते हैं, उनको रासायनिक अगर कीटनाशक दवा इस्तेमाल करेंगे तो उनके इकोसिस्टम पे उनके खराब पड़ेगा
1: जी।
0: इसमें मछलियां भी रहती हैं, मछलियां भी मरने का डर रहता है, लेकिन नीम आधारित दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें किसी तरह का कोई किसी तरह का हानि होने का संभावना नहीं रहता है। अब बात आती है कि मखाना के खेती में हमने किया, अब बात आती है कि हमको कितना उपज प्राप्त होगा। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं और जो मखाना की बोराई होती है वो आदमी द्वारा किया जाता है और 1 हेक्टेयर खेत से आपको 30 से 32 कुंटल उपज गुर्री जिसको मखाना के बीज को गुर्री कहा जाता है स्थानीय भाषा में, तो 30 से 32 कुंटल गुर्री प्राप्त होता है। 1 हेक्टेयर की खेती करेंगे आप तो आपको 80 से 85 हजार रुपये खर्च आता है और शुद्ध मुनाफा जो आता है आपको 1,25,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। ये तो खेत पद्धति की बात है। आप खेत आपका जो खाली हो जाएगा वो जुलाई महीने में खेत खाली हो जाता है, उसके बाद आप उसमें धान लगा सकते हैं या धान के खरीफ फसल में आप तीसी, मसूर, खेसारी, केराव, बांकला इन सब चीज़ों को छीट करके काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि खेत पद्धति में तो जहाँ पे जुलाई महीने में 1 से 2 फीट पानी आया है और अक्टूबर महीने में सूख जाता है वहाँ के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल प्रणाली है जिससे सबसे अधिक उपज प्राप्त होता है वो है मखाना और सरसों। मखाना के खेत में नमी बगैर जुताई के आप सरसों के छिड़काव कर दें तो एक बेहतर उत्पादन और प्राप्त होता है। और मखाना के खेती में सबसे खास बात क्या है कि हम लोग केवल इस फसल से केवल बीज निकालते हैं, बाकी पौधा का जितना भी प्लांट पौधे का जो भाग है वो खेत में ही सड़ जाता है जो आने वाले फसल के लिए ऑर्गेनिक खाद के रूप में ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब तालाब पद्धति की बात हम करते हैं कि मखाना की खेती तालाब पद्धति में जब हम करते हैं तो उसमें मखाना के साथ हम लोग मछली का भी उत्पादन कर सकते हैं। मछली का उत्पादन जितना तालाब का क्षेत्रफल है उसका 1/10 भाग बीच में खाली जगह बांस के खूंटे के सहारे से छोड़ा जाता है जिसको रिफ्यूज एरिया कहा जाता है। रिफ्यूज एरिया मछलियाँ पूरे तालाब में मूवमेंट करती है और रिफ्यूज एरिया में हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए उसमें मछलियाँ आरामगाह के रूप में इस्तेमाल करती हैं। मछली इसमें सबसे खास बात क्या है कि लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि मखाना के साथ मछली नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कांटे होते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन नहीं, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि रेहू, कतला, मृगल ये तीनों जो इंडियन मेजर कार्प जो वेजिटेबल मखाना है मछली है इनको हम लोग पालन करते हैं कर सकते हैं और एक साथ हम दुगुना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जो हमने पहले भी बताया है कि आपका कितना भी स्थिति खराब हो जाए तो 1,15,000 रुपये मखाना की खेती से मखाना से होना है और 1,25,000 रुपये आपको मछली से होना है। मछली में इसमें खाना देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जब मखाना का जब फल

फटता है तो उसे एक तरल पदार्थ निकलता है जिससे फाइटोप्लैंक्टन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और मछलियां उसको अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करती है, मछलियों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अब बात आती है कि एक हेक्टेयर तालाब में मखाना के खेत में हम कितने मछली के बच्चे को उसमें डालें, तो मैं आपको बताऊं 3 इंच का फिंगरलिंग अप्रैल महीने में आप अगर डालते हैं तो 4000

0: प्रभावित क्षेत्र है, जिन जल जमाव क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आता है, उसमें आप अप्रैल महीने में मछली नहीं डालेंगे। जुलाई महीने में आप मखाना को निकाल लीजिए और खेत को खाली यूं ही रहने दीजिए। अक्टूबर महीने के बाद बाढ़ की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है, कि अक्टूबर दुर्गा पूजा के बाद बाढ़ की संभावना नहीं होती है। तो एक हेक्टेयर खेत में आप ग्रास कार्प, जिसमें जो 100 ग्राम का लगभग हो जाता है, ग्रास कार्प मछलियां आप डालते हैं। मखाना के खेती के बाद जो जलीय खरपतवार का तेजी से बढ़वार होता है जल जमाव क्षेत्रों में, ग्रास कार्प उसको बहुत तेजी से खाता है और क्लीन कर देता है। अगर आप जो मखाना के खेत किए हैं जुलाई महीने में और आप उसको यूं ही छोड़ देंगे, तो पुनः दिसंबर महीने में अगर मखाना के खेती करने के लिए आप जाएंगे, तो वहाँ आपको मजदूरों साफ सफाई कराने के लिए कम से कम प्रति हेक्टेयर 32,000 से 35,000 रुपये आपको लेबर खर्च, मजदूरी का खर्च लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें ग्रास कार्प डाल दिए हुए हैं अक्टूबर महीने में, तो अगर आप 3 क्विंटल डाले हैं तो जनवरी फरवरी में वो 6 क्विंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। बगैर किसी अतिरिक्त लागत का आपका एक तो साफ सफाई की मजदूरी का बचत हुआ और दूसरी डबल मुनाफे भी हुए। तो एक हुआ कि मखाना के बाद मछली उत्पादन, और जहाँ पे जिन क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या नहीं होती है, तालाब हमारा पूर्णतः बांध से सुरक्षित है, उसमें हम लोग मखाना के साथ मछली करते हैं। एक है मखाना के बाद मछली और एक क्षेत्र है मखाना के साथ मखाना सह मत्स्य पालन। उन क्षेत्रों में भी हमने पहले ही कहा कि 1/10 भाग तालाब क्षेत्रफल का छोड़ना होता है, और उसमें हम रेहू कतला मृगल डाल के अप्रैल महीना में डालते हैं 3 इंच का, और उसको हम दिसंबर महीने में निकाल लेते हैं। तो आपके विपरीत परिस्थितियों में भी आपको मखाना सह मत्स्य पालन से अगर जो शुद्ध लाभ है वो आपको 2.5 लाख रुपए आने ही आने हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि मखाना की खेती आप कैसे कर सकते हैं। कठिन हो सकता है ये खेती, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, मुनाफा आपको बहुत ही ज्यादा होगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया। तो बस यहाँ पर दिए गए सुझावों को और निर्देशों को आप समझें, और जैसे आप खेती करना चाहते हैं उस तरीके से करें। और सुझाव तो आप सभी को यूं ही दिए जाएंगे। 90.8 FM ग्रीन पर आपकी खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें हम लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, और सुनते रहिए आपकी आरजे अनु को। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन।

0: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
0: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT.
1: नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो।
2: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
4: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
5: क्या क्या क्या?
3: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
5: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
3: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
11: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
12: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के, मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि

0: काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है, उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का

0: सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है
1: जी सर। सर जो

0: जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90% और दोपहर में 60-80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट

के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले, और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे, और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दे टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। आइए मित्रों, अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनि शाला में।
1: मेरे बहुत बहुत बहुत प्यारे बच्चों, आपको उषा दीदी का नमस्कार। आज आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी को हुआ क्या है। पहले तो वे सिर्फ बोलती थी मेरे प्यारे बच्चों, और आज उन्होंने बहुत बहुत बहुत, वो भी 3 बार बहुत शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, बात ही कुछ ऐसी है। आज मैं जो आपके साथ बतियाने वाली हूँ, वह दरअसल त्योहारों की बात है। अब जब बात त्योहार की हो तो मन झूम ही उठता है, और जब मन झूमने लगता है तो फिर हमें बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से आज बहुत शब्द मैंने 3 बार इस्तेमाल किया। किसी भी तीज त्योहार का नाम सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आती है? अच्छा, आपसे पहले मैं बताती हूँ। किसी भी त्योहार का नाम सुनकर या त्योहार की बातचीत सुनकर जो सबसे पहले चीज मेरे दिमाग में आती है, वे हैं तरह तरह के पकवान। मुंह में पानी आ रहा है, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। अगर हम होली की बात करें तो क्या चीज जहन में आ रही है? गुजिया। और अगर हम दिवाली की बात करें तो खीर, मालपुए। ये तो मुंह में और पानी आ रहा है। और पूरे भारत देश में अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। पता है बच्चों, कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, यानी मौसम में परिवर्तन आया, फसल कटने का समय है तो बस त्योहार मन गया। त्योहार कुछ और नहीं, मन की खुशी है। बस हम अपने मन की खुशी को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगह पर त्योहार को मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन मूल भावना एक ही है। और वह मूल भावना क्या है बच्चों? वही हम सभी से प्रेम कर सके, एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांट सके। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं फसलों के त्योहारों पर। ये जो हम बातचीत करने जा रहे हैं आज, ये दरअसल एक घर में होने वाली बातचीत है। तो हम देखते हैं कि किसके घर में क्या हुआ। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहां तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना, आज ई लोग के उठे के नईके का, बोल जल्दी तैयार होकस। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठांड हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा,

शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, छक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुलके बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। पता है, उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। अरे आप क्या सोच रहे थे कि हम खिचड़ी खाने की बात कर रहे हैं? नहीं जी, हम तो खिचड़ी मनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जब खिचड़ी मनाते हैं तो खिचड़ी खानी पड़ती है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। पता है, झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है आदिवासी किसकी पूजा करते हैं? आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बचे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। एक और मजेदार बात होती है, मालूम है, घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरे का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। पता है बच्चों, धान की भी पूजा होती

होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। और तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। क्या मालूम है आपको, इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। प्यारे बच्चों, हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। पता है, यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पता है क्या कहते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया, इसके स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं, तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है।

बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। और पता है क्या गाते हैं? वे गाते हैं, कौआ आओ घुगुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने की घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी, ऐसे गाते हैं गाना। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। पता है बच्चों, लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? बच्चों, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अरे आप कहाँ चल दिए? अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा है। अच्छा, तो आपका मन कर रहा है कि हम जल्दी से रसोई घर में जाएं और खीर पुए और जो पकवान बने हैं उन्हें खाने बैठ जाएं। और पता है कुछ बच्चे तो जल्दी से जाना चाहते हैं छत पर ताकि ढेर सारी पतंग उड़ाएं। पतंग को भी सुस्ताने का मौका दीजिएगा और आप पकवान मजे से खाइएगा। तो ये तो थे फसलों से जुड़े हुए हमारे त्योहार। आपको अब एक अंदाजा हो गया होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में फसलों से जुड़े हुए कौन कौन से त्योहार हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों, त्योहार अलग अलग तरीके से भले ही हम मनाते हैं लेकिन हमारी भावना एक ही है। और इस एक अच्छी भावना के साथ एक और चीज है जो सब त्योहारों में एक जैसी है। वो क्या भला? वो है पकवान। अब चाहे कोई खिचड़ी बनाए या कोई खीर बनाए, कोई मालपुए बनाए या कोई कुछ भी बनाए, लेकिन पकवान तो जरूर बनते हैं। और उन्हें खाने में जो स्वाद आता है बस पूछिए मत। और यह लगता है कि ये त्योहार हम साल भर यूं ही मनाते रहें। किस लिए? इसलिए ताकि हमें रोज नए नए पकवान खाने को मिले। तो प्यारे बच्चों, आपने ये भी जाना कि खिचड़ी मनाने में और खिचड़ी खाने में फर्क है। खिचड़ी मनाने का मतलब है कि हम मकर संक्रांत मना रहे हैं, यानी कि हम खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है। और इस खिचड़ी मनाने में हम खिचड़ी खाते भी हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे क्या ज्यादा पसंद करते होंगे? बच्चे खिचड़ी खाना ज्यादा पसंद करते हैं या खीर खाना पसंद करते हैं? भाई मैं तो खीर खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, खिचड़ी खाने में तो मुझे कोई मजा नहीं आता। वो क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि खिचड़ी में होता है नमक और हमें तो मीठा पसंद है, तो कुछ मीठा हो जाए के नाम पर हमें खीर बहुत पसंद है। और अलग अलग बच्चे अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग पकवान खाते हैं। और अगर पड़ोसियों के यहाँ से त्योहार के दिन निमंत्रण आ जाए तो क्या कहने, हम पड़ोसियों के यहाँ जाकर भी पकवान खूब खाते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, हमने अलग अलग प्रांतों में रहने वाले अलग अलग त्योहार, उनके तरीकों के बारे में जाना, लेकिन इस पूरी बातचीत में एक और अच्छी बात है। वो ये बात है कि जब हम अपनी बात कहते हैं तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज ये लोग के उठे के नहीं के का, यानी कि एक खास तरह की भाषा है कि आज ये लोग उठे या नहीं। तो ये बात किसके लिए कही गई है? बच्चों के लिए। उठ के नहीं देते हैं बच्चे, कोई त्योहार हो, कोई काम हो, इतना ही नहीं परीक्षा भी हो, उठने में अक्सर वे आनाकानी करते हैं। बस पांच मिनट करके करवट बदलते रहेंगे लेकिन उठेंगे नहीं। तो ये बात बच्चों के लिए कही गई है कि आज ये लोग उठे।

है या नहीं। आपने दूसरा वाक्य भी सुना होगा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, यानी कि जाओ भाग के देख कराओ केरा के पत्ते आ गए या नहीं आए। तो ये जो दो बातें आपने सुनी है, इसे आप खुद अपनी भाषा में बोलकर देखिए। एक और बात है बच्चों, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। हमारे पास विविधता के और कई बड़े पैमाने भी हैं, जैसे हमारी भाषा अलग है, हमारे कपड़े अलग हैं, हमारे पहनने का सलीका अलग है, हम नया वर्ष भी अलग अलग समय पर मनाते हैं, हमारा भोजन भी तो एक जैसा नहीं है, हमारी लोक कला भी एक जैसी नहीं है और लोक संगीत भी अलग है। लोक संगीत से याद आया कि क्यों ना हम असम का बिहू सुन ले और गुजरात का भी लोक संगीत सुन लेते हैं, और लगे हाथ हम झारखंड और बिहार में गाए जाने वाले गीतों को भी सुन लेते हैं। तो तैयार हैं सारे बच्चे इस लोक संगीत का आनंद उठाने के लिए? मजा लीजिए लोक संगीत का।

0: तो मजा आया आपको लोक संगीत सुनने में? आप सबको अलग अलग भाषाओं के कुछ लोक गीत तो याद हो गए होंगे, है ना? अच्छी बात है। और मैं आपसे आज विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा।

0: क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
3: See you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
8: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
10: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
8: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
10: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन अब हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी

0: रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है। इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
1: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
0: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
1: जी सर। सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
0: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक भूटा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या?
0: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़

0: से उखड़ जाते हैं, तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिम, तो हवा बीच से दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में। हाँ,
0: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है, तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वेराइटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें, तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले, और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं, कब बोरा रहता है, बाद में भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं।

0: उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए। लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है, तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें, बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है, आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध

0: कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान सराइज किया हो उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है पौधा है उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफला टॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं, 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके

0: बदलाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000,
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को समर्पित यह गीत। ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और महेश को संहार करता कहा गया है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में आइए तो हमारे किसान बंधु को पालन करता क्यों नहीं कहा जाए। विश्व के समस्त प्राणी, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, धरती पर चलने वाला मानव हो, या जल में विचरण करने वाला जीव जंतु, यदि किसान नहीं होते तो इनका अस्तित्व मिट जाता। तो आइए, इन किसान बंधु के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने काफ़ी हद तक प्रयास किया है, जिसको गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की

अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा गेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाध बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फॉस्फोरस, पोटास या सल्फर की मात्रा में कम डालते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमज़ोर होता है और आपका पौधा भी कमज़ोर होता है। आप जो उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है, और ये सुविधा हमारा कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व कम है और कौन सा पोषक तत्व उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है आप लोग ज़्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको जितना ज़रूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालें तो कितना डालें, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वैरायटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे, अगर धान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो पोषक तत्व, उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान के रोपाई कर रहे हैं,

तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए। और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टीलरिंग होता है, टीलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय, उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय, और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय, उसके पहले बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, माने पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें, तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसको देना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, ये सब का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फास्फोरस पोटास दे देना चाहिए। और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है, और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत ज़रूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर भर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन भर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं, इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में, जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे, उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60

0: 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को एक हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है जो कि हरी खाद में। और एक हुआ, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटास भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है फास्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज़ करेंगे तो हमारा फास्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट भर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि 3 बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम 3 बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका 3 हफ्ता या 4 हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिक इनिशिएशन उसका पहले एक बार। तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फास्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए, लेकिन पोटास को अगर हम 2 बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा जहाँ पर धान के बाद व्हीट, धान के बाद गेहूँ, धान के बाद गेहूँ करते हैं वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है। तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज़ करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key.

0: their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी साथी आरजे अनु। और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। साथियों, आज मैं अब बता दूं आपको कि हमारे साथ हैं संजय कुमार जी और ये हैं सहायक प्राध्यापक कनीय वैज्ञानिक पौधा प्रजनन व अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और ये आपके लिए कुछ खास बातें भी लेकर आए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है
11: मसूर के उन्नत प्रभेद वैज्ञानिक खेती।
9: जैसा कि आज का हमारा विषय है मसूर के उन्नत प्रभेद व वैज्ञानिक खेती, तो इससे जुड़े कुछ सवाल मैं पूछूंगी डॉक्टर साहब से और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके हमें उपाय मिल सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि मसूर की बुआई की उपयुक्त समय क्या होती है?
11: सबसे पहले मैं किसान भाइयों को, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को मसूर के उन्नत प्रभेद वैज्ञानिक खेती कैसे करें और किन किन बातों का ख्याल रखें उसके बारे में मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। तो मेरा पहला, मसूर की बुआई कब करें? सर, किसान भाइयों, आप लोग जैसा जानते हैं कि मसूर एक दलहनी फसल है जो कि रबी में उगाई जाती है। इसकी बुआई का सबसे उपयुक्त समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। अगर आप देरी तक पूरा नवंबर ले सकते हैं, लेकिन सबसे उचित समय जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है, जिससे आप बुआई करके आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं।
9: तो ये तो बात हो गई कि मसूर की बुआई, और इसके बाद बिहार के लिए हम खास तौर पर जानना चाहेंगे कि बिहार के लिए मसूर की अनुशंसित प्रभेद कौन कौन सी है।

हाँ किसान भाइयों, आप लोग जैसा जानते हैं कि जो है हमारा बीज जो है, तो बीज जो है किसी भी फसल के लिए मुख्य है, तो बीज वैसे जगह से खरीदें और जहाँ का आपको विश्वसनीय स्रोत हो, एवं प्रभेद जो है किसी भी फसल के लिए मुख्य रूप से है कि जो हमारे क्षेत्र में अनुशंसित प्रभेद हैं उसी को प्रभेद की बुआई करें। तो आइए हम जानते हैं बिहार के लिए हमें मसूर की कौन कौन सी अनुशंसित प्रभेद हैं। पहले आप किसान भाइयों जान लें, समझ लें कि मसूर की जो है दो तरह की प्रजाति होते हैं। एक छोटे बीज छोटे दाने वाले होते हैं, एक बड़े दाने वाले। छोटे दाने जैसे कि उसमें 100 दानों का जो वजन है 2 से 3 ग्राम होता है, और बड़े दाने के जो बीज होते हैं 3 से 5 ग्राम के लगभग होते हैं। तो पहले हम छोटे दाने की प्रजातियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला प्रभेद है PL4 पंत लेंटिल 4, जो कि जिसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जा सकती है, और इसकी उपज क्षमता है 15 से 16 क्विंटल पर हेक्टेयर। और इसमें सबसे बड़ी खास विशेषता है कि रतुआ जो रोग होता है, उकटा रोग होता है, और मूल रूप से जो मसूर में लगने वाली बीमारी है जड़ गलन बीमारी, उसके रोग रोधी है एक किस्म। दूसरी किस्म है PL 406 पंत लेंटिल 406, इसकी बुआई 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक कर सकते हैं, जिसकी उपज क्षमता है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये जो है रतुआ रोग रोधी एवं उकटा के प्रति सहनशील है। तीसरी प्रजातियां हैं PL 639 पंत मसूर 639, जिसकी बुआई 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक कर सकते हैं, इसकी उपज क्षमता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये प्रभेद जो है रतुआ रोग उकटा रोग के प्रति सहनशील है। जो छोटे दाने में सबसे प्रमुख जो प्रभेद हमारे यहाँ बिहार में जो उगाई जाती है हल संतावन, जिसकी उपज क्षमता है 14 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, और रतुआ रोग का ये सहनशील है। अगला प्रभेद है KLS 218, जिसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं, इसकी उपज क्षमता 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका विशेष गुण रतुआ रोग रोधी है। इसी तरह छोटे दाने में आशा है, रंजन है, जिसकी उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल है। इसका विशेषता है कि इसकी जो फूल होते हैं उजले रंग के होते हैं। अब हम बड़े दाने की प्रजातियां के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बड़े दाने में हमारे मुख्य रूप से IPL 406, जिसको अंगूरी नाम से जाने जाते हैं, ये जो है प्रभेद 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता 17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और रतुआ रोग रोधी के प्रति सहनशील है। दूसरी वैरायटी प्रभेद है बड़े दानों में IPL 316, जो कि 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता है 17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये भी जो है उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। इसी तरह PL 5 पंत मसूर 5, जो कि 130 से 135 दिनों में परिपक्व होती है, और इसकी उपज क्षमता है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और रतुआ रोग रोधी है। हमारे यहाँ की सबसे प्रमुख प्रभेद है अरुण PL 77-12, जो कि 125 से 130 दिनों में पककर तैयार होती है, इसकी उपज क्षमता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। नेक्स्ट प्रभेद है मल्लिका K75, जो कि 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। और बड़े दाने वाले प्रभेद में L 40-76, जो कि 130 से 135 से दिन

0: में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज क्षमता है 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। इसी तरह प्रिया, जिसको DPL 15 कहते हैं, ये भी 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसके उपज क्षमता है और ये भी प्रभेद जो है उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है
1: जी।
0: सबसे प्रमुख प्रभेद और हैं जो बड़े दाने में आते हैं, नरेंद्र मसूर 1, शेरी DPL 62, जवाहर मसूर 3 और नूरी IPL 81, जो कि उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है।
1: तो यहाँ पर हमने जाना कि प्रजातियाँ क्या हैं, प्रभेद कौन कौन से हैं मसूर की बिहार में खास तौर पर। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है कि हम बीज दर की मात्रा भी जानें। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि मसूर की बीज दर की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
0: किसान भाइयों, बीज का जो दर है ये जो है हमारे, जब पहले आपको बताएं कि हमारे जो है दो तरह के प्रजाति होती हैं, छोटे दाने वाले और बड़े दाने वाले। छोटे दाने वाले के लिए जो है बीज की दर की मात्रा जो है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगाएंगे और बड़े दाने के लिए 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर।
1: चलिए, तो ये बात हो गई कि बीज दर कितनी होनी चाहिए और इसके बाद उर्वरक का भी इसमें खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा उर्वरक दे देते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
0: हाँ, किसान भाइयों, जैसा आप लोग जानते हैं कि मसूर एक दलहनी फसल है, इसमें जो है ज़्यादा मात्रा की उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए शुरू में जब फसल की बुआई हो तो एक बार में 20 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से नाइट्रोजन, 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस और 20 केजी पोटास और 20 केजी सल्फर की दर प्रति हेक्टेयर की दर से इसको बुआई के समय खेत में ही प्रिपरेशन के समय डाल दें
1: जी। तो यहाँ तो ये बात हो गई कि उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखें, जितना यहाँ पर बताया गया है सिर्फ उतना ही उर्वरक डालें। इसके साथ ही पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं।
0: हाँ किसान भाइयों, ये बहुत ही आवश्यक बात है कि जो है पौधे की पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अधिक उपज के लिए और अच्छी फसल के लिए बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए इसके हमेशा जो है दूरी पौधे से पौधे और कतार से कतार एक मेंटेन रखना चाहिए, जिसमें कि इसकी उपज क्षमता अधिक हो। इसीलिए इसकी जो कतार टू कतार जो है दूरी जो है 25 सेंटीमीटर पर हो और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर पर हो तो अधिक पैदावार होगी। और इससे क्या होगा कि आपका फसल का क्षति जो रोग व्याधि से जो बचाव होगा, पौधे के प्रॉपर उचित रोशनी मिलेगी, जिससे कि रोग कीट का प्रकोप कम होगा
1: जी। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और इसके बाद रोग की बात हम करें, डॉक्टर साहब ने बताया कि रोग कम होगा, तो क्यों ना हम जान लेते हैं कि मसूर के कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, ताकि उन रोग को हम पहचान लें और उनका निवारण करें।
0: हैं किसान भाइयों, ये जो है मसूर के लिए सबसे प्रमुख चीज़ है रोग। रोग जो है इसको कैसे बचाव करें और कौन कौन से रोग आते हैं, तो सबसे पहले मसूर के जो है प्रमुख रोग जो है उकटा है, जिसको कहते हैं किसान भाइयों सूखना, ये सबसे प्रमुख बीमारी है। और दूसरा है रतुआ रोग, जो कि टेम्परेचर या बारिश होने पर उसका फंगस जो है ग्रोथ करता है। तो उकटा रोग और रतुआ रोग, इसके बचाव के लिए अगर आप शुरू में इसकी जो है उपचार कर देंगे तो आपको जो है करीब करीब 80-90% तक आप रोग व्याधि से बचाव हो सकता है। इसके लिए आप किसान भाइयों पहले से प्रिपेयर रहें कि जैसे ही आप सोइंग करते हैं उसके पहले बीजोपचार कर लें। बीजोपचार के लिए सबसे पहले फंजीसाइड से करें, फफूंदी नाशक से करें, उसके बाद कीटनाशक से करें, उसके बाद राइजोबियम से, तब उसके बाद PSB से करें, जिसमें फंजीसाइड फंगस जो फफूंदी नाशक होते हैं।

0: वो उकटा और रतुआ रोग के लिए अच्छी उपयोग करते हैं, बीज उपचार करते हैं, और जो है कीट व्याधि कीटों के लिए जो है फसल को बचाने के लिए जो है क्लोरोपाइरीफॉस 8 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचार करते हैं। उसके बाद जो है राइजोबियम से उपचार करने के बाद तब है जो हम किसान खेत पर बीज को बुआई करते हैं।
1: तो इसके बाद एक सवाल और हमारे दिमाग में आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पौधे से पौधे और पंती से पंती की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये तो आप सभी ने जान लिया, लेकिन मसूर की औसत उपज क्या है ये भी जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो इसे भी बताएं।
0: हाँ किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अच्छी है, अगर अच्छी तरीके से बीज ने आपने बुआई की है, प्रॉपर डिस्टेंस पर दूरी पर लगाए हैं, अगर पौधे के कतार से कतार और पौधे की पौधी दूरी मेंटेन करने के लिए आपने सीड ड्रिल या जीरो टिलेज का उपयोग किया है, तो इसकी औसत उपज जो है 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर तक आप ले सकते हैं।
1: जी, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर मसूर की। अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि मसूर की आप बुआई कैसे कर सकते हैं, समय क्या होना चाहिए, इसके बाद प्रभेदों के बारे में बताया गया आप सभी को, बीज दर के बारे में बात हुई, उर्वरक की मात्रा, पंती से पंती की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। तो मुझे लगता है कि इतना जानने के बाद यह काफ़ी उपयुक्त होगा इसकी वैज्ञानिक खेती को जानने के लिए आपको, और मसूर के उन्नत प्रभेद की बात यहाँ पर हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि आज के इस वार्ता से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और अगर आप मसूर की खेती करना चाहते हैं तो इन सारी बातों को आप ध्यान रख लें, अपने दिमाग में रख लें और ज़रूर इसे अपनाएं, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों के लिए इतना ही, आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। अगले दिन उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक और अलग विषय, खास विषय आप सभी के लिए हम लेकर हाजिर रहेंगे। इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।

0: अबुआ, ये पंखा के खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
5: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पर गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन

0: चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे

0: जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार

में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता,

पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वॉच कार्यक्रम में। आज हम बातें करने वाले हैं किसी एग्जाम के बारे में नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि फलाना एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी कैसे करनी है या कुछ भी। आज हम पूरी तरीके से स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, छात्र जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, ख़ास तौर से छात्र का जो जीवन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस दौरान जो आदतें हम अपनाते हैं वही आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता तय करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की, यानी कि गोल सेटिंग की। दोस्तों, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है ना कि आपने तय ही नहीं किया है कि आपको क्या करना है, तो कल आप किसी और चीज के लिए तैयारी करेंगे, कल आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है तो हम उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं ना। इसलिए सबसे पहले तो ये तय करना जरूरी होता है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर कुछ और भी। जब आपका लक्ष्य साफ हो जाता है तब आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाती है। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही ये तय कर लें कि आपको बनना क्या है, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की। समय जो होता है ना, बहुत कीमती होता है। पैसा खो देंगे, कुछ भी खो देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, पर समय अगर एक बार चला गया ना तो वो नहीं मिलता। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो

दिन की एक योजना बना लें, पढ़ाई के लिए समय तय करें, खेलने के लिए समय तय करें और आराम के लिए भी समय निकालें, क्योंकि आराम भी जरूरी है ना, सेहत भी तो जरूरी होती है ना। और अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंसिस्टेंसी की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज पढ़ाई की, 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन पांचवें दिन पढ़ाई की, उसके बाद फिर 3 दिन गायब, तो ऐसा उनके साथ होता है। लेकिन और ये क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं बहुत जोश से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और पढ़ाई खत्म। लेकिन आपको पता है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी, खरगोश बहुत तेज था दौड़ने में और कछुआ बहुत स्लो, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश ने क्या किया, वो रुक गया, चलता रुक जाता। और ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि कंसिस्टेंसी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। रोज पढ़िए, पर लगातार पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा 2 दिन बंद हो गया, फिर 2 दिन पढ़ा फिर 4 दिन बंद हो गया। ध्यान रखना है कि नियमित अभ्यास ये आपको मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं एकाग्रता की, ध्यान और एकाग्रता की। आज के समय में जब हमारे पास मोबाइल फोन है, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया एप्स हैं, गेम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटकाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय इन सारी चीज़ों से आप दूरी बना कर रखें, एक शांत जगह पर बैठ कर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको फ़ोन की आदत है या फिर सोशल मीडिया की आदत है, तो आपको लगेगा अगर उसने मैसेज कर दिया तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, फिर आगे क्या होगा, अरे किसी का फोन तो नहीं बज रहा होगा, गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगा या फिर गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगी, अरे ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई नया गेम आएगा या फिर सोशल मीडिया पे कोई नया पोस्ट, नई कॉन्ट्रोवर्सी या फिर फोन पर किसी दोस्त से गपशप, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों से दूरी बनानी है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। पहले दिन आप 5 मिनट फोकस कर पाएंगे, अगर आपका फोकस बहुत ख़राब हो चुका है तो आप पहले दिन 5 मिनट फोकस करेंगे, अगले दिन 10 मिनट, इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी आदत और आपका फोकस बेहतर होता जाएगा और एक दिन आप देखेंगे कि लगातार आपने 40-45 मिनट पढ़ाई कर ली है। लगातार 40-45 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई करनी होती भी नहीं है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 45 मिनट या 40 मिनट पढ़ाई की, ये होता है एक हेल्दी तरीका पढ़ाई करने का। लेकिन आज के टाइम पे फोकस बहुत मुश्किल से होता है, तो ध्यान रखें मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स, इन सारी चीज़ों से एक टाइम बना ले कि 2 से 3, या फिर आपका अपने हिसाब से कोई भी टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि 2 से 3 मुझे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कुछ भी करना है लेकिन इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इस दौरान मुझे पढ़ाई ही करनी है। और जब आप कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करते हैं, फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खुद ही आने लगता है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद की मदद करनी होगी, आपको कहना होगा खुद से, खुद को समझाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। और ये छोटा सा जो सेंटेंस होता है ना, ये आपके अंदर बहुत ताकत पैदा कर सकता है, ये आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। हर रोज जगने के साथ ही आईने में देख कर कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये होगा और मैं ये करके दिखाऊंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। ऐसी कुछ बातें बस 5 मिनट हर रोज सुबह, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है असफलता। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की, फोकस्ड रहें आप, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से की और उसके बावजूद आप सफल ही होंगे, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप असफल हो और फिर क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है, जीवन में हर किसी को कभी ना कभी असफलता का सामना करना ही पड़ता है, करना। लेकिन असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेनी चाहिए कि कहीं कुछ तो छूट गया होगा ना, या फिर कहीं हमसे कोई कमी नहीं रही है, तो फिर शायद
हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमारे लिए कोई और रास्ता चुना गया है जिस पर हमें चलना होगा। तो थोड़ा ठहरिए और अपने नए रास्ते की तलाश कीजिए, या फिर अगर आप एक बार और कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, पर घबराइए मत, हारिए मत। असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और हर असफलता कहते हैं कि आपको सफलता के और करीब और बेहतर तरीके से करीब लेके जाती है। और अभी थोड़ी देर

0: पहले हम स्वास्थ्य के बारे में भी बातें कर रहे थे, तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो फिर पढ़ाई पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज और सही खान पान और पूरी नींद। जी हाँ, सोशल मीडिया और मोबाइल्स ने और गेम ने भी हमारे नींद को भी बहुत बुरे ढंग से प्रभावित किया है। हम रात रात भर जाग कर इन सारी चीजों के पीछे अपना वक्त जाया करते हैं और फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, फिर हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। अभी फिलहाल उन सारी परेशानियों के बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कि अपनी नींद पूरी जरूर करें। 7 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है, इसलिए एक्सरसाइज करें, सही खान पान लें और पूरी नींद लें ताकि आप स्वस्थ रह सके और आपके स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सके। और इसके साथ ही बहुत जरूरी होता है कि आप गुड कंपनी में रहें, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। इसलिए आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं ये भी बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन के ऊपर, आपके सोच के ऊपर। अगर आप फोकस्ड लोगों के साथ रह रहे हैं, पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, तो अगर आप रास्ता भटकेंगे भी ना तो वो आपको रास्ते पर ले आएंगे। वो बातें करेंगे पढ़ाई की तो आपको भी लगेगा कहीं कुछ तो छूट रहा है ना, मेरी पढ़ाई में तो छूट रही है ना। वो अच्छी बातें करेंगे तो आपके ऊपर भी असर अच्छा होगा। इसलिए हमेशा ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि वो अपने साथ आपको पीछे खींच कर लेकर जाए। और अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। जी हाँ, हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को मोटिवेट कर पाने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं तो डायरी लिखना शुरू कीजिए और उसमें एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपको खुद के अंदर विश्वास आने लगेगा। एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, पर हफ्ते भर में तो पक्का आएगा। और आप जब डायरी में लिखेंगे कि ये चीज़ें हुई और मैं अभी बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, इस वजह से मैं लो फील कर रही हूँ, तो लिखते लिखते आपको आधे जवाब मिल जाएंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा आपको कोई कहने के लिए नहीं होगा कि टाइम हो चुका है, पढ़ाई करने बैठो टाइम हो चुका है, खाना खाने जाओ टाइम हो चुका है, फ़ोन नीचे रख दो सो जाओ, नहीं होगा। ये आपको खुद के अंदर खुद ही ये चीज़ लानी होगी, यानी कि आत्म अनुशासन लाना होगा। अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है। और अगर आप खुद को नियंत्रित करना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लें, आत्म अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़ें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके जीवन का वो फेज़ चल रहा है जब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा ये, मैं हार चुकी हूँ, थोड़ा रुकिए, डायरी लिखिए, आईने में देख कर खुद से बातें कीजिए और थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन किसी ना किसी सही दिशा में पहुंच ही जाएगा। और अब मैं अंत की ओर आगे बढ़ती हूं और आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूं कि अपने सपनों को कभी भी छोटा मत समझिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और कभी हार मत मानिए। याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination.

0: and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: राजू, पिन्नी
0: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
8: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन, और सुनते रहे उन्नत कृषि।
13: FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु, और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम रबी सब्जियों के बारे में बात करेंगे और इसकी नर्सरी हमें कैसे तैयार करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो इस विषय के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता मैडम। मैं आप सभी को बता दूँ, मैडम वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
14: धन्यवाद अनु।
8: सबसे पहले तो मैडम, रबी सब्जियों में कौन कौन सी जो सब्जियों की फसल हैं वो आते हैं?
14: ये जो रबी सब्जियां हैं, मुख्यतः पूरे साल को रबी, खरीफ और गर्मा में तीन भागों में बांटा गया है, और आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर से हमारा रबी का सीज़न प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके लिए रबी में बहुत सारी सब्जियां आती हैं। आपका गोभी आता है, पत्ता गोभी आता है, टमाटर आता है, पालक है, मेथी के पत्ते हैं, शलजम है, बीट रूट है, सारे सब्जी इस तरह

0: गाजर है, मटर है, ये सारी सब्जियां आपको रबी फसल में ही आती हैं।
1: विषय है वो है नर्सरी कैसे तैयार करना रबी सब्जियों का। तो सबसे पहले तो नर्सरी क्या होता है इसके बारे में बता दें।
0: नर्सरी पौधशाला को कहते हैं। नर्सरी एक बहुत ही बड़ा बृहद शब्द है। नर्सरी सिर्फ पौध का नहीं होता है, जो भी छोटे चीज होते हैं, जैसे एक माँ है जो अपने बच्चों को, शिशु को पालती है, पालने में रख करके उसको धीरे धीरे एक एक दिन करके बड़ा करती है, उसी तरह से पौधा में जब पौधा तैयार करते हैं तो पौधशाला भी उसी तरह से तैयार किया जाता है, उसी तरह से नर्चर किया जाता है। तो नर्सरी में पौधों को धीरे धीरे और स्वस्थ तरीके से उसे बढ़ाया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, पौधा स्वस्थ हो, ताकि आने वाले दिन में उत्पादन को में अच्छा प्राप्त कर सकें। इसीलिए नर्सरी में हमेशा पौधे को स्वस्थ रखना चाहिए
1: जी। और जब हम नर्सरी में सब्जियों के बीज डालते हैं तो किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: सर्वप्रथम अभी गर्मी सितंबर का माह है और सितंबर में साधारणतः अगर क्लाइमेट चेंज की बात ना करें तो बहुत बहुत कड़ा धूप निकलता है, गर्मी का धूप रहता है, इस धूप में बहुत गर्मी रहती है। तो इसमें हमारे किसान जो भी हैं नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, जहाँ पे भी पौधशाला तैयार करना चाहते हैं, उसकी मिट्टी को वो खोल दें। मिट्टी को खोल करके उस मिट्टी में 1% फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन डाल करके उसे उजली पन्नी से मिट्टी को ढक दें, ढक करके उसे एक सप्ताह लगभग छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो उन्होंने घोल डाला है 1% फॉर्मल्डिहाइड का, उसमें ईचिंग का टेंडेंसी होता है, वो लगता है उसमें। इससे क्या होगा कि वो जैसे जैसे आपका घोल नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से आपका जितना भी कीड़ा मकोड़ा होगा वो बाहर की तरफ भागेंगे, और बाहर में आपने उसे ज़मीन को पन्नी से ढक करके रखा है, पन्नी से ढक के ढकने की वजह से एक तो कीड़ा आपका बाहर भाग नहीं सकेगा, दूसरा क्या होगा कि धूप की गर्मी उस पन्नी को में प्रवेश करके अंदर की तरफ जाएगा और उस गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखेगा, जिसमें सतह पर जितने भी कीड़े मकोड़े या फफूंद रहेंगे वो लगभग 50% तक के समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से एक सप्ताह आप अपनी ज़मीन की तैयारी कर लें या इस तरह से मिट्टी की तैयारी कर लें, और तैयारी करने के बाद पुनः ज़मीन को खोल करके आप ज़मीन की अच्छे से जुताई करें, उसे महीन करें ताकि नर्सरी उसमें डाला जा सके। और अभी नर्सरी डालने के लिए बहुत सारे प्लास्टिक का प्रो ट्रे आ गया है, अलग अलग साइज में, आकार में, तो उस मिट्टी का प्रयोग वो वर्मी कंपोस्ट और 1 ग्राम DAP प्रति स्क्वायर मीटर के दर से मिला करके वो मिट्टी को तैयार में डालें और तैयारी करें। साथ में नर्सरी जहाँ भी तैयार करनी है वहाँ पर नर्सरी वाले मिट्टी में बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की मात्रा को नहीं डालना है। अगर कंपोस्ट की मात्रा को वो ज़्यादा डालते हैं तो पौधा लंबा हो जाता है, पौधा मोटा होने की बजाय पौधा लंबा हो जाता है। अब हम लोगों ने मिट्टी की तैयारी की, मिट्टी हमारा तैयार हो गया है, आप प्रोट्रे ले लें, प्रोट्रे में उन मिट्टी को भर दें। प्रोट्रे में मिट्टी भरने से पहले प्रोट्रे के जो बेस होता है, जो कटोरी नुमा संरचना होता है, उसके बेस पर हल्का बालू डाल दें। बालू डालने से क्या होगा कि आपका वो मिट्टी है जो आपके कप में सटेगा नहीं, और उस प्रत्येक में मिट्टी डाल दें और बीज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब तक हम लोग नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तब तक हमें गुणवत्ता युक्त बीज का व्यवस्था करना चाहिए, टमाटर में भी, बैंगन में, इसका गोभी का, पत्ता गोभी का, शिमला मिर्च का, इन सब का बीज का हम लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए। और बीज को तैयारी करके बीज को उपचारित कर दें, रात में बीज को फूलने दे दें और बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल करके और क्लोरोपायरीफॉस 6 ml 1 लीटर पानी में डाल करके आप उस बीज को अच्छे से उपचारित कर लें। और अगर बीज को उपचारित करना, अगर पानी में नहीं फुलाना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो क्या करें कि कार्बन डाइऑक्साइड में किसी अलग रंग को मिला दें, कार्बन डाइऑक्साइड में अलग रंग का मतलब गुलाबी मिला दें या पीला मिला दें, और बीज को किसी प्लास्टिक वाले सतह पर फैला लें, और फैलाने के बाद उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद दवा

0: का भुरकाव करके उसे अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि बीज एक एक बीज पर कुछ न कुछ दवा लग जाए। रंग मिलाने से क्या होता है कि बीज पर जब रंग दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ इस पे दवा मिल गया है। उसी प्रकार से अगले दिन क्लोरोपाइरीफॉस से कर लें। दूसरा चीज़ है कि किसान भाई बीज को उपचारित करते समय उसमें गुड़ की मात्रा थोड़ा मिला देते हैं, तो गुड़ का एक कोट बन जाता है बीज पर, जो बीज को स्वस्थ रखता है और न्यूट्रिशन पोषण देने का काम करता है। तो बीज इस न्यूट्रिशन जब पोषण उसको मिलता है तो बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार से किसान हमारे बीज एक एक बीज करके प्रोट्रे में डालें, और अगर नर्सरी में बीज वो डाल रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं, तो छिट्टा विधि को से नहीं डालना चाहिए हमारे किसानों को। छिट्टा विधि से क्या होता है कि कभी कभी बीज है का फैलाव एक तरीके से नहीं होता है, कुछ बीज एक जगह ज़्यादा पड़ जाते हैं, कुछ जगह एक बीज कम पड़ते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जहाँ पे कम बीज पड़ता है वहाँ पे पौधा बौना और मोटा होता है, और जहाँ पर घना बीज पड़ता है वहाँ पर नर्सरी है जो आपका पौधा है जो लंबा और उसका जो तना होता है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसे हम मुख्य भूमि में देते हैं तो उस समय हमें गुणवत्तापूर्ण पौध नहीं तैयार होता है। तो किसान भाई इसको नर्सरी में अगर जमीन में भी डाल रहे हैं तो बीज को हमेशा 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर दें, ताकि उनको पौधा अच्छा प्राप्त हो। दूसरा, किसान हमारे सावधानी बरतें कि लगाते समय वो कोशिश करें कि लगाने के एक दिन पहले उसमें सिंचाई करेंगे तो उसमें किसी कीटनाशक को अवश्य पानी में डाल करके उसका पटवन कर दे, ताकि प्रत्येक पौधा में कुछ न कुछ कीटनाशक का अंश आ जाए। दूसरा चीज़ है कि अगर वो लगाने जा रहे हैं पौधे को तो ऊपर की पत्तियों को काट दें, जो बहुत सारी पत्तियां निकली रहती हैं लगाने में, सिर्फ उसके एपिकल कली का भाग को छोड़ दें और बाकी पत्तियों को हटा दें वो नर्सरी में ही। इससे क्या होगा कि जब आप उसे मुख्य भूमि में लगाएंगे तो लगाते समय आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि पत्तियां ही खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, और जब पत्तियों को सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो पत्तियां हैं जो जड़ से आपको खाना मांगना, पानी मांगना प्रारंभ कर देगा, और आपका जड़ जो है अभी ज़मीन में स्थापित नहीं हुआ है। तो अपनी लगाए गए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए किसान भाइयों को अग्रभाग को छोड़कर बाकी की पत्तियों को हटा दें, और इससे क्या होगा, पत्तियों को हटाने से आपका मुख्य तना ही निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तना निकलना प्रारंभ हो जाएगा जहाँ जहाँ से आपने पत्तियाँ छोड़ी हैं, तो कलिका है जो तना में परिवर्तित हो जाएंगी। इससे पौधों में शाखाएँ की संख्या बढ़ जाएंगी, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि फल लगने वाले कल्ले भी बढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर किसान अपने पौधों का प्रबंधन करते हैं नर्सरी अवस्था में ही, तो वो उत्पादन में एक नया आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मैडम। और श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।

0: तेरे कितने दोस्त हैं?
1: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं श्री अन्न के खरपतवार नियंत्रण के बारे में। दोस्तों, श्री अन्न काफी डिमांड में है और अब हमारे किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती बड़े स्तर पर करने लगे हैं, और उनकी एक परेशानी होती है कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। आइए जानते हैं विस्तार से डॉक्टर एस के चौधरी सर से। सर, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद मैडम।
11: सर, श्री अन्न के खरपतवार के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से मुख्य खरपतवार होते हैं जो श्री अन्न की फसलों में उगाते हैं?
12: धन्यवाद मैडम। पहले तो मोटे अनाज जो किसान भाई लगाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे।
11: जी बिल्कुल।
12: मोटे अनाज को दो भाग में बांटते हैं। एक मोटे अनाज, जो मोटे अनाज में भी जो एक मोटा जिसका दाना रहता है, एक छोटे मोटे अनाज जिसका जो मोटे अनाज में जिसका छोटा दाना रहता है, उस भाग में बांटते हैं। तो पहले तो एक मोटे मोटे अनाज जिसे है उसमें से, जैसे मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, रागी हुआ, जिसको मरुआ भी कहते हैं, और छोटे मोटे अनाज जैसे कि सावा, कोदो, कुटकी, चीना, कंगनी में जो खरपतवार नियंत्रण

0: रन बहुत ही जरूरी है, जो कि उसका जो उपज है वो बहुत कम से कम 30-40% तक की कमी कर देता है। मोटे अनाज में जो मुख्यतः खरीफ मौसम की फसल है, और इस मौसम में रबी मौसम की तुलना में ज़्यादा खरपतवार निकलते हैं। मोटे अनाज के पौधे शुरुआती 4-6 हफ्ते में बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, जिसके कारण खरपतवार से मुकाबला नहीं कर पाते और उपज में लगभग जो पहले बताए थे 30-40% तक की भारी कमी कर देते हैं। मोटे अनाज के फसल में अक्सर ऐसी जिद्दी खरपतवार का सामना करना पड़ता है जो फसलों से पोषक तत्व, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्वास्थ्य फसल और अधिकतम उत्पादन के लिए प्रभावी खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। प्रभावी खरपतवार नाशकों का उपयोग करके खेत को खरपतवार मुक्त रखा जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो मोटे अनाज में खेत में सामान्यतः जो खरपतवार है वो सबसे ज़्यादा सकरी पत्ती खास कुल के लिए, चौड़ी पत्ती के साथ साथ मोथा कुल के खरपतवार आमतौर पर देखने को मिलता है, जिसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार में इक्लिप्टाल्बा, सिजुलिया एक्जेलिस जिसको थुकचर भी कहते हैं, कोमिलेला बेंगलसिस, कोमिलेला डिफ्यूजा जिसको केन भी कहते हैं, एजिडिटम कोनोजॉइट्स महकौवा नाम से प्रसिद्ध है। ये सब जो है वो खरीफ सीजन में मोटे अनाज के तौर पे जो मोटे अनाज के फसल में उगते हैं। उसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है जिसमें इकाइनाकुलोनम है, छोटा सावक है, क्रिसगेली है जो कि सावक भी कहते हैं, इल्यूसिनिया इंडिका कहते हैं जिसको वन मरुआ भी कहते हैं, मकड़ा घास, और इसके अलावा इरोगोटिस जैपोनिका, ये सब जो है सकरी पत्ती घास कुल के खरपतवार में आते हैं और ये मोटे अनाज के फसल में निकलते हैं। उसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार में साइप्रस इरिया, साइप्रस रोटेंडस जो कि मोथा के नाम से जानते हैं, साइप्रस मेरिमस बूचर के नाम से भी जानते हैं, साइप्रस डिफॉर्मिस नगर मोथा भी कहते हैं, असाइनोटिक एक्सेलिडिस गोरंडा के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये मोथा कुल के खरपतवार है और यह मोटे अनाज में प्रायः देखने को मिलता है।
1: जी सर। सर अब बात करते हैं कि इन खरपतवार से अपने खेत को मुक्त करने के लिए खरपतवार नाशी का छिड़काव हमारे किसान भाई बहन कब करें?
0: खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से पहले हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, खरपतवार के रोकथाम कब करना चाहिए। वैसे तो मोटे अनाज में खरपतवार से होने वाले नुकसान खरपतवार की संख्या, किस्म एवं फसल की प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास कुल के खरपतवार प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बाद की अवस्था में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बीज के द्वारा बोए गए मोटे अनाज में कम से कम 15 से 35 दिन तक तथा रोपाई वाले मोटे अनाज में 30 से 40 दिन के बाद का लाभ खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक नाजुक स्थिति होता है। इस अवधि में फसल को खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल का उत्पादन को भी अधिक प्रभावित नहीं करता है। खरपतवार के रोकथाम कैसे करना चाहिए, इसके जो खरपतवार नाशी एकदम जो अंतिम विकल्प के रूप में हम लोग अपनाते हैं, लेकिन उसको इससे पहले खरपतवार नाशी के प्रयोग करने से पहले भी बहुत से मेथड है जिसके से हम लोग खरपतवार का नियंत्रण फसल में या मोटे अनाज में करते हैं। जैसे कि खरपतवार की रोकथाम में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवारों को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। समेकित एकीकृत खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत किसी एक विधि पर निर्भर न रहकर यांत्रिक, सांस्कृतिक, निवारक और रासायनिक विधियों का एक साथ तालमेल बिठाकर उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो निवारक जो उपाय है जिसको प्रिवेंटिव मेथड मेजरमेंट कहते हैं, जिससे कि खरपतवार कि जो बीज है वो अपने खेत में जो अपने फसल में नहीं आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो साफ बीजों को का उपयोग करना चाहिए, हमेशा प्रमाणित और खरपतवार बीजों से मुक्त साफ बीजों का ही बुआई करना चाहिए। पूरी तरह सड़ी हुई खाद का उपयोग करके खेत में केवल अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर के खाद कंपोस्ट डालें। कच्ची खाद में खरपतवार को जीवित बीज होते हैं जो कि खेत में फैल जाते हैं। इसके अलावा जो है मेड़ और नालियों की साफ सफाई रखना चाहिए। खेत के आसपास के रास्ते, पानी, नालियों और मोटे मेड़ों पर उगे खरपतवार के फूल आने से पहले ही नष्ट कर दे ताकि उनके बीज मुख्य खेत में पानी के सहायता से ना पहुंचे। ऐसा करने से हमारे फसल में जो खरपतवार का बीज है वो आने से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो है यांत्रिक भौतिक विधि है।

जिसको मैकेनिकल मेथड भी करते हैं। इसमें सबसे पहले है निकाई गुड़ाई। मोटे अनाज के लिए बुआई के बाद 20 से 35 दिन नाजुक होते हैं। लाइन में बोई गई फसलों में 20 से 25 दिन पर पहली और 35 से 40 दिन पर दूसरी निराई गुड़ाई हैंड हो डच या साइकिल वीडर्स की मदद से अवश्य करें। हाथ से उखाड़ना, बिखेर कर ब्रॉडकास्ट विधि से बोई गई फसलों मोटे अनाज में कम से कम 2 बार हाथ से खरपतवार निकालना सबसे प्रभावी रहता है। खरपतवार को हमेशा फूल आने से पहले ही उखाड़ लेना चाहिए। इसके अलावा जो है और भी विधि है खरपतवार नियंत्रण के, उसमें से जो एक है शस्य क्रिया विधि, जिसको हम कल्चरल मेथड में भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले है गर्मी की गहराई जुताई। जैसे आप खरीफ मौसम में जो जून जुलाई में आप मोटे अनाज लगाते हैं, उसके पूर्व अप्रैल और मई महीने में खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि तेज धूप के संपर्क में आने से खरपतवार की जड़ें जैसे कंद, जैसे मोथा की गांठें और बीज नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है स्टील सीड बेड टेक्निक, एक किसान लोग को ये जानना जरूरी है। जैसे कि हम बुआई से 10 से 15 दिन पहले खेत में हल्की सिंचाई या नमी होने के लिए होने देने के बाद इसको शाकनाशी ग्लाइफोसेट या पाराक्वाइट द्वारा यांत्रिक विधि से जुताई करके से भी नष्ट करते हैं और फिर मुख फसल को बोते हैं। ऐसा करने से मुख फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफी कमी आती है। इसके अलावा जो है घनी बुआई और कम कतार की दूरी, जैसे स्पेसिंग जो है दो कतारों की दूरी कम करके या नहीं तो बीज दर को बढ़ा करके भी खरपतवार का जो संख्या है उसका प्रकोप है उससे बचा जा सकता है। जैसे कतारों के बीच की दूरी उपयुक्त रखकर, जैसे रागी में 15 सेंटीमीटर फसल बोने से जमीन जल्दी ढक जाती है और खरपतवार को बढ़ने के लिए धूप व जगह नहीं मिलती है। इसके अलावा जो है बीज दर का जो मात्रा है उससे थोड़ा ज़्यादा 10% बढ़ा देने से भी खरपतवार को दबाया जा सकता है। इसके अलावा जो है उचित फसल चक्र अपनाकर एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाने से खरपतवार की समस्या और जटिल हो जाती है। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष भर एक खेत में एक फसल लेने की बजाय मोटे अनाज की एक फसल लेने के बाद उसमें दूसरी फसल जैसे चना, मटर, गेहूं इत्यादि लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन करके भी खरपतवार के प्रकोप को भी बचाया जा सकता है। जैसे कि मोटे अनाज में बुआई के बाद पौधे से जब 3 से 4 पत्ती के हो जाए तो उसमें 1 सप्ताह तक पानी 1 से 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। इसके बाद पानी का स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवारों की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा जो है उर्वरकों का प्रयोग करके भी खरपतवार को रोक सकते हैं। ऐसा करने से भूमि में पोषक तत्व की मात्रा देने की विधियां एवं समय का भी फसल एवं खरपतवार के वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय और उचित तरीके से देने पर मोटे अनाज की फसल इसमें इसका समुचित उपयोग कर पाती है। असिंचित उपजाऊ भूमि में जहां खरपतवार की समस्या अधिक होती है वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा को बुआई के समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को फसल की लाइन के पास डालना चाहिए जिससे कि ज्यादा भाग फसल को मिल सके। और अंत में जैसा मैडम आप बताए थे जो खरपतवार नाशी उस का प्रयोग करके भी हम खरपतवार को अपने खेत से अपने मोटे अनाज के फसल से मुक्त रखते हैं। जब मजदूर उपलब्ध न हो या खरपतवार बहुत ज्यादा हो तब सीमित मात्रा में कृषि वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित शाकनाशियों का उपयोग समेकित प्रबंधन के तहत करना चाहिए। खरपतवारों का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय पर की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी जो खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करते समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि मोटे अनाज में कुछ जो फसल है उसमें बिंदुवार हम जो शाकनाशी है, जो खरपतवार नाशी है उसका हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। उसमें से पहले जो ज्वार है उसमें जो एट्राजीन एक खरपतवार नाशी है जो कि 0.75 से लेके 1 kg प्रति हेक्टेयर का उपयोग एज ए प्री इमर्जेंस पौधा अंकुरण होने से पहले इसमें आप अप्लाई या उपयोग कर सकते हैं। इससे सभी तरह के खरपतवार को दबाया जा सकता है।
इसके अलावा जो है टोपड़ा मिजान जो

0: इंजन के नाम से है, वो भी बहुत कारगर है मोटे अनाज ज्वार में, जो कि मात्रा है 0.0126 केजी प्रति हेक्टेयर, जो पोस्ट इमरजेंस के रूप में 25 से 30 दिन के बोने के बाद देना ज़्यादा उपयुक्त है, और ये लगभग में घास कुल और चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए बहुत कारगर होता है। इसके अलावा टेम्बोट्रीन जो कि लोडिस नाम से बाजार में उपलब्ध है, जो कि भी ये पोस्ट इमरजेंस के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और ये लगभग 0.0242 केजी प्रति हेक्टेयर ए आई की मात्रा देना ज़्यादा लाभदायक पाया गया। इसके अलावा दो दवाओं का मिश्रण करके, जैसे एट्राजिन टोपड़ामिजोन करके, एट्राजिन टेम्बोट्रीन, दोनों अगर आप एक साथ देते हैं तो प्री एज वेल एज पोस्ट इमरजेंस जो हर्बिसाइड प्लांट में जो निकलते हैं घास, उसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा जब मेट्राक्लोर जो 1 से 1.5 केजी ए आई प्रति हेक्टेयर के रूप में प्री इमरजेंस, मतलब जीरो बुआई के दूसरे ही दिन इसको देना लाभदायक होता है। इसके अलावा एट्राजीन और मेटक्लोर जो कि 0.75 से 0.50 केजी ए आई प्रति हेक्टेयर की दर से हर्बिसाइड या चाहे खरपतवार नाशी देना लाभदायक है। ये सब ज्वार का जो खरपतवार नाशी है। इसके अलावा ये देने के अलावा अगर दूसरा भी मोटे अनाज है जैसे बाजरा, उसमें ये भी दे सकते हैं एट्राजिन टेम्बोट्रीन टोपड़ामिजन। इसके अलावा एक फिनोक्सो प्रो पी इथाइल है जो 750 ग्राम ए आई प्रति हेक्टेयर, जो कि पोस्ट इमरजेंस है, लगभग 25 से 30 दिन के बुआई के उपरांत देना ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा रागी में पैरोजो सल्फिरोन इथाइल जो 15 ग्राम ए आई प्रति हेक्टेयर के रूप में देना चाहिए, ये बुआई के दूसरे दिन रागी में देना लाभदायक है। ये प्री इमरजेंस के रूप में काम करता है। इसमें भी सभी तरह के खरपतवार को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा है मेट सल्फिरोन मिथाइल और क्लोरोमिरोन इथाइल, ये सभी तरह के मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। ये मार्केट में ऑल मिक्स करके है, और ये मूल साग मतलब सकरी पत्ती के लिए और चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, और ये 4 ग्राम ए आई प्रति हेक्टेयर का पोस्ट इमरजेंस के रूप में उपयोग में किसान भाई के द्वारा करना चाहिए। इसके अलावा जो कोदो मिलेट है, कोदो कुटकी चीना इत्यादि जो है, उसके लिए ऑक्सी ड्राइजील 80 वेटेबल पाउडर 50 से 75 ग्राम ए आई प्रति हेक्टेयर के रूप में, जो कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जो खरपतवार नाशी है, उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बेंसल्फिरोन मिथाइल जो 0.6 ग्रेन्यूल में आता है, और पेट्राक्लोर 6.0 ग्रेन्यूल में, ये दोनों दवा का मिश्रण है, देने से सभी तरह खरपतवार को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा ब्यूटाक्लोर का भी 50% इसी लाभदायक होता है, जो कि मोटे अनाज के लिए कारगर होता है। इसके अलावा पेंडीमिथिलीन या नहीं तो आइसोप्रोटोन 0.5 से 1 केजी ए आई प्रति हेक्टेयर देना लाभदायक है। जितना भी दवा है वो एक बार आप अपने निकटतम जो जानकारी है उससे सलाह लेके, नहीं तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के उपरांत ही किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि जो अपने खेत में उसका उपयोग समय के पर्यंत करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार को जो बढ़ावा है, जो उसका नुकसान है, उससे बचा जा सकता है और तथा ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से बताया कि कौन कौन से खरपतवार है और किस प्रकार से उनका नियंत्रण करना चाहिए। तो आज के लिए किसान भाई बहनों इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about

0: immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को समर्पित यह गीत। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और महेश को संहारकर्ता कहा गया है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में आइए तो हमारे किसान बंधु को पालनकर्ता क्यों नहीं कहा जाए? विश्व के समस्त प्राणी, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, धरती पर चलने वाला मानव हो या जल में विचरण करने वाला जीव जंतु, यदि किसान नहीं होते तो इनका अस्तित्व मिट जाता। तो आइए, इन किसान बंधु के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने काफी हद तक प्रयास किया है, जिसको गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं।

0: 90.8 FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90 गुना

सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुवाई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित है। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुवाई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुवाई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुवाई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक एक, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुवाई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों, कई बार किसान भाई बहनों को मौसम की वजह से या कोई अन्य वजहों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उनके पास लागत की भी कमी होती है. और हमारे ऐसे कई सारे किसान भाई बहन हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाते. हमारी आज की चर्चा का विषय यही है, कृषि विकास के लिए सरकार

0: योजना। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश कुमार। सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसे मैम ने कहा, कृषि में जो सबसे आजकल हमारा फसल, जब फसल बहुत ख़राब हो रहा है बाढ़ के कारण से, सूखा के कारण से, और भी बहुत सारे इस तरह के सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए बहुत सरकारी योजनाएं हैं जिससे भाई किसान भाई बंधु लाभ उठा सकते हैं। और इसकी जानकारी थोड़ा बहुत तो है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण से बहुत सारे किसान भाई बंधु उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनको कहाँ से वित्तीय सहायता मिलेगा? बहुत सारे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, तो जानकारी के अभाव में वो लोन नहीं ले पाते हैं, और बहुत सारे स्कीम के बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती। तो आज उसी पे थोड़ा बात करेंगे।
0: सर तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे किसान भाई बहन उठा सकते हैं।
1: देखिए बहुत तरह के हैं, जिसमें पहला जो है आय एवं ऋण सहायता। जो कोई भी आप छोटे और जो छोटे सीमांत किसान है उनको आय बढ़ाने के लिए, उनको लोन देने के लिए बहुत सारे स्कीम है। दूसरा जो सबसे मेन है, जो जैसे आजकल बहुत रिस्क है, फसल तैयार है, देखिए इसी बार आम लीची के फसल बहुत खराब हुआ, गेहूं का फसल बहुत खराब हो गया, ऐसे मतलब बेमौसमी जो बरसातें हुई, फिर कभी सूखा पड़ जाने के कारण से कभी बाढ़ पर, तो उसके लिए जो है जोखिम सुरक्षा योजना, जिसको आप लोग जानते होंगे, फसल बीमा योजना है। फिर उसके बाद सिंचाई के लिए है, फिर और भी बहुत सारा आप में उसमें जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पॉली हाउस बनाना है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है, इस सब के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे योजनाएं हैं।
0: यस सर, तो सर हम शुरुआत करते हैं लोन के लिए कौन कौन से योजनाएं हैं इसके साथ। तो लोन के लिए कौन कौन से,
1: देखिए सबसे पहला जो है प्रधानमंत्री किसान योजना, उसमें जो है छोटे और सीमांत किसानों को सब आजकल सभी भाई बंधु इससे पूर्ण रूप से मतलब इसका जानकारी होगा उनको। आजकल सरकार जो है 6,000 रुपये सालाना उनको 3 किस्तों में 2,000 रुपया उनको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये दिया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे अहम है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। आप लोग अपने अपने नज़दीकी बैंक में जाके, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके, नहीं तो हमारे अपने कृषि विश्वविद्यालय आके जानकारी इसका प्रदान मतलब ले सकते हैं, कहाँ से ऐसे इसको कहाँ किन से मिलेंगे, कैसे इसका हम कहाँ अप्लाई करेंगे जिससे हमें किसान क्रेडिट कार्ड मिल पाए। किसान क्रेडिट कार्ड का एक फैसिलिटी क्या है, जैसे आपको तुरंत यूज है, तुरंत आपको नीड है, आपकी आवश्यकता पड़ गई, जो कल ही 5,000 रुपया निकालना है, तो आप बैंक तो 5,000 तुरंत आपको लोन देगी नहीं, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं जैसे दूसरे कार्ड से निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है जिसमें जो ऋण दर बहुत कम है, अगर आप समय से चुकाते हैं तो 4% ही देना पड़ता है, तो एक तो वो है। दूसरा जो है AIF बोलते हैं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी जो भंडारण के लिए, प्रसंस्करण के लिए, लगभग उसमें मतलब आप करोड़ों रुपया तक का उसमें फंड ले सकते हैं।
0: यस सर, तो अभी हमने लोन के बारे में बात की, और अभी आपने बताया कि फसल बीमा योजना भी है
1: जी।
0: किसानों को मौसम की वजह से
1: नुकसान। बिल्कुल
0: वो कौन कौन से,
1: उसमें जो है सबसे प्रमुख तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें प्राकृतिक विपदा, कीट, बीमारियों से फसल अगर खराब हो रहा है तो उसके लिए दिया जाता है। उसमें भी जैसे दो, उसमें भी अलग अलग स्कीम है, जो रबी फसल है तो अलग है उसमें, और खरीफ है तो अलग है। खरीफ में थोड़ा सा प्रीमियम 2% देना पड़ता है, जैसे 1 बीघा में मान लीजिए आपका 20,000 का फसल लगा हुआ है तो उसका लगभग 400 रुपया का आपका प्रीमियम देना पड़ेगा, और जो रबी फसल उसमें थोड़ा कम देना पड़ता है, 1.5% ही देना पड़ता है। और ऐसे ही है जो आपके जिसे बागवानी फसल है, जिसमें साग सब्जी फल फूल ये सब है, उसमें 5% तक देना पड़ता है, लेकिन उससे सारा आपका फसल सुरक्षित हो जाता है, जिसमें प्राकृतिक विपदा के कारण से, बाढ़ सूखा किसी भी कारण से फसल खराब होता तो उसमें पूरी आपकी आपको पूरा उसका जो है मूल्य आपको मिल जाएगा। तो दूसरा है पीएम किसान मानधन योजना, जनधन योजना, और उसमें किसानों के लिए पेंशन दिया जाता है, एक तो ये है। फिर जैसे

0: मैंने बोला मतलब सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसका एक हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया, प्रति ड्रॉप अधिक उपज, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मतलब आप कैसे पानी को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, जिससे आपका पानी की बर्बादी भी कम हो और आपकी उपज भी बढ़े। जी
1: तो सर, आजकल हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें, और ये अच्छी बात भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे में बहुत सी लागत की परेशानी आती है, तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी कोई खास स्कीम है जिसका फायदा किसान भाई बहनों को मिल सकता है?
0: जी मैम, उसमें जैसे है परंपरागत कृषि विकास योजना, आप भाई बंधु आप लोग अगर सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो इसके बारे में जानकारी आप उपलब्ध कीजिए, और आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या बैंक में भी आप जाके पता कर सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करना चाहते हैं उनको कम मतलब सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी मिलता है, और उस पे उनको लोन मिलता है जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सभी भाई बंधु इसमें जागरूक मतलब इसके बारे में उनको जानकारी होगी। जो भी आप फसल लगाते हैं उससे पहले आपको अपने मिट्टी में कौन कौन उर्वरक उसमें उपलब्ध है, कमी है, ज्यादा है, उसकी पहले जानकारी हो जानी। तो ऐसा होता है कभी कभी देखा गया है जो कुछ उर्वरक तत्व पहले से मौजूद है फिर भी ऊपर से लोग डाले जा रहे हैं, तो उल्टा वो लाभ की जगह पर हानि पहुंचाता। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का आप लाभ उठाइए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए। उसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उसके तहत जो है लगभग सरकार ने 2,817 करोड़ का बजट इस बार पास किया है। उसके अंतर्गत कोई किसान अगर इसमें डिजिटलाइजेशन ऐप बनाना चाहते, सामान बेचने के लिए जानकारी लेना चाहते, तो उसके लिए ये स्कीम है।
1: तो ये कुछ स्कीम्स हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं जिनका हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं। सर, अगर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहे तो क्या कहेंगे आप?
0: देखिए मेरा आप सभी भाई बहनों से एक निवेदन है, जो इसके बारे में जानकारी सही जानकारी नहीं मिलने के कारण से, सही जानकारी नहीं होने के कारण सब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो भी ठीक ठीक आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो उससे अच्छा है आप या तो किसी विश्वविद्यालय आइए, आप जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ उस पर आप कॉन्टेक्ट करिए हमें, और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके ग्रामीण विकास बैंक है, बैंक जाइए, वहां से जानकारी उपलब्ध कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाया, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जिन भी स्कीम्स के बारे में बताया। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन उन स्कीम्स का सुविधा अनुसार लाभ जरूर लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: किसान भाई बहनों, आज की चर्चा से उम्मीद है कि आपको काफ़ी लाभ होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिला होगा सरकारी योजनाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना?
4: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें

0: सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
5: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
11: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
12: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के

0: बात, हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है, उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की

0: व्यवस्था सुनिश्चित सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: कृषि विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन यानी विविध कार्यक्रमों का गुलदस्ता, कृषि, स्वास्थ्य, करियर और लोक मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रमों को सुनिए भागलपुर में FM बैंड के 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। इसके साथ ही एंड्रॉइड और iOS पर सुनिए FM ग्रीन के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। रेडियो गार्डन एप्लीकेशन पर खोजिए FM ग्रीन और सुने कहीं से भी और कभी भी। FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर

0: हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं, तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इन लोगों की इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20

0: प्रतिशत होती है एवं पोटेशियम का 60 से 70 प्रतिशत होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है। तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी जो भी हमारे खाद होते हैं तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
1: जी जी। तो मैम अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
0: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पे कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है। तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
1: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
0: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसकी फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि है, जलवायु अनुकूल कृषि है या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके की पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1 से 5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटेशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे जी। तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भाग

0: भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
1: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
0: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था। तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीकी है, तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है। नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीजें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे, लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा। जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियां हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद उमा आपको।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज वे

0: व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
2: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
3: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
4: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
5: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
6: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
7: कब से?
6: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
7: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
6: खांसी?
7: हाँ।
6: इसको तो एक आध महीना हो गया,
7: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
6: डॉक्टर, खांसी तो है।
7: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
6: टीबी?
7: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
6: ठीक है।
7: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान

विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति

दूध भरने की अवस्था हो। इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 cm की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 cm की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम एक बहुत ही मनोरंजक विषय के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। जी हाँ, ये जो फिल्में होती है ना, वो समाज का आईना होती है और फिल्में हो या साहित्य हो, ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से समाज को प्रभावित भी करती है और बहुत गहरे इन्फ्लुएंस डालती है, चाहे हमारी आज़ादी की बात हो या फिर किसी और सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करना हो। फिल्में, साहित्य, ये दोनों ही समाज को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित ज़रूर करती है और लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में जो हर महिला को या हर लड़की को ज़रूर एक बार अपने जीवन में तो ज़रूर देखनी चाहिए। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो 2014 में रिलीज़ हुई फिल्म क्वीन है। क्वीन एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शादी से कुछ समय पहले ही लड़का मना कर देता है शादी करने के लिए। पहले लड़के ने ही प्रपोज किया था, ठीक ठाक लव स्टोरी

लेकिन ऐन मौके पर लड़का लड़की को शादी के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो लड़की कैसे बदलती है और क्या करती है अपने जीवन में, ये किसी बदले की कहानी नहीं है। वो किसी से बदला नहीं लेती है, लेकिन अपने जीवन में वो जो बदलाव लाती है और एक कॉन्फिडेंट लड़की बनकर जो बाहर आती है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। क्वीन 2014 में रिलीज़ हुई थी, हिंदी में अवेलेबल है। और छपाक 2020 में रिलीज़ हुई बॉलीवुड की फिल्म छपाक, ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि मालती नाम की लड़की पर एसिड अटैक होता है और किस तरीके से वो स्ट्रगल करती है, साहस दिखाती है और जस्टिस के लिए लड़ती है। ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। और जब फिल्मों की बात आए और लड़कियों से जुड़ी हुई फिल्मों की बात आए और दंगल की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। 2016 में रिलीज़ हुई फिल्म दंगल, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और जो लड़कियाँ किस तरीके से खेल में भी आगे बढ़कर अपने परचम लहरा रही है। कई जगहों पर आज भी कुश्ती को लड़कों का खेल माना जाता है। जी हाँ, कुश्ती आज भी लड़कों का खेल माना जाता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़कर लड़कियां कुश्ती में भी बहुत नाम कमाती है। और ये भी रियल जिंदगी से इंस्पायर्ड कहानी है, 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल। और 2012 की कहानी, अब तक जितनी भी फिल्मों की हमने बात की वो बदले की कहानी नहीं थी, लेकिन 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी बदले की कहानी है। और ये इतनी कमाल की कहानी है, वाकई आप फिल्म देखने के बाद अंत में यही सोचेंगे कि इस फिल्म ने हमें बहुत चालाकी से ठगा है। और आप फिल्म देखिए, ज़्यादा बताने पर फिल्म का मजा ख़राब हो जाएगा। इस फिल्म में विद्या बाक्षी नाम की एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और किस तरीके से प्रेगनेंसी की हालत में वो अपने पति को ढूंढने निकली है, ये उसकी जर्नी को दिखाता है और ये उसकी कहानी को दिखाता है। 2012 में रिलीज़ हुई फिल्म कहानी। 2016 में एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी पिंक, ये तीन लड़कियों की कहानी है जो मर्जी की बात करती है, महिला के अधिकार की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। तीन लड़कियां जो एक मेट्रो शहर में रह रही है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है, एक रात कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और उसके बाद एक सवाल निकल कर आता है कि क्या हाँ या ना मायने रखता है या नहीं। 2016 में रिलीज़ हुई फिल्म पिंक आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इंग्लिश विंग्लिश तो आप देखिए, अपनी मम्मी को दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। 2012 में ये फिल्म आई थी श्रीदेवी की, बहुत ही कमाल की फिल्म। एक हाउसवाइफ जो इंग्लिश सीखने की कोशिश करती है, अपना आत्मविश्वास और अपना स्वाभिमान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने की कोशिश करती है, क्या उसकी जर्नी होती है और किस तरीके से वो इंग्लिश सीखती है या नहीं। और आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा हर दूसरे घर की शायद यही कहानी है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ज़रूर देखिए। और हम आगे बढ़ें तो द ग्रेट इंडियन किचन, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके बहुत बड़े सपने तो नहीं है, बस छोटा सा सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और किस तरीके से वो किचन और घर गृहस्थी में उलझ कर रह जाती है और किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी अपने घर पर यही गलती तो नहीं कर रहे हैं अपनी माँ के साथ या किसी ऐसी महिला के साथ जिन्होंने अपने आप को घर के प्रति समर्पित कर दिया है। ये फिल्म यानी कि द ग्रेट इंडियन किचन आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ ये फिल्म है आरओवी, और इस फिल्म के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस इतना बताऊँगी कि आरओवी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे खुद निकाल देते हैं। आगे उसकी जो भी जर्नी होती है उस दौरान उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और फिर अंत इस फिल्म का ऐसा होता है कि आप भौचक्के रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखेगा बहुत। ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नील बटे सन्नाटा। 2015 में रिलीज़ हुई थी फिल्म नील बटे सन्नाटा। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो खुद पढ़ाई करती है ताकि उसकी बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, उसकी बेटी भी पढ़ाई कर सके। इस फिल्म का थीम यही है कि पढ़ना लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी होता है और माँ और बेटी का बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। नील बटा सन्नाटा 2015 में रिलीज़ हुई थी, ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अर्थ ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, इस फिल्म को हर महिला को ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बताती है कि एक महिला के जीवन का क्या अर्थ है, अगर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अचानक बिखर जाती है तो फिर क्या होता है। जब भी आप स्पाई थ्रिलर जासूस की कहानी पढ़ते हैं या फिर फिल्म के बारे में सोचते हैं तो कोई लड़का ही आपकी नज़र में आता है, लेकिन राजी ये बहुत ही कमाल की फिल्म है और ये आपकी उस सोच को चैलेंज करती है, उस सोच को तोड़ती है कि कोई स्पाई, कोई जासूस सिर्फ लड़का ही हो सकता है।
राजी आलिया भट्ट की बहुत ही बेहतरीन फिल्म। 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और आपको ये फिल्म जरूर

0: जरूर देखनी चाहिए। और एक फिल्म बहुत चर्चित हुई थी जब वो रिलीज हुई थी, थप्पड़। सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है, लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। थप्पड़ 2020 में रिलीज हुई थी और ये बहुत सही सवाल उठाती है। कोई भी इंसान जिसको अपने बराबर का समझता है या अपने से ऊपर समझता है, उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन एक महिला पर, एक पत्नी पर थप्पड़ उठाना कितना आसान होता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और किस तरीके से ये फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है कि एक थप्पड़, लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। ये फिल्म हर महिला को ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक फिल्म की बात कर ही ली है, तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। जया नाम की एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी है जिसकी शादी होती है और बाद में किस तरीके से उसे डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है और किस तगड़े तरीके से वो कम बैक करती है और सारी चीज़ें अपने हक में ले आती है। ये फिल्म बहुत ही कमाल की, मतलब कॉमेडी भी है और मैसेज भी साथ साथ दे जाती है, कहीं कहीं दिल दुखता भी है। तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अभी हमने राजी के बारे में बात की कि जब भी हम किसी जासूस की बात करते हैं या पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई हीरो ही आता है, लेकिन जब हम मर्दानी फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से केस को सुलझाता है। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद इस सीरीज के और भी फिल्में आई, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 2014 में आई फिल्म मर्दानी, किस तरीके से रानी मुखर्जी का किरदार एक केस को सुलझाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुलझाता है। और 2024 में रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज, एक साथ बहुत सारे मुद्दों को ये फिल्म उठाती है, घूंघट प्रथा, लड़कियों का पढ़ना और आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, बहुत सारी बातें ये फिल्म आपको बताती है। मतलब अगर इस फिल्म के मैसेजेस मैं यहाँ देने बैठ जाऊँ तो 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी फिल्म और साथ साथ ये बहुत अच्छे मैसेजेस भी देती है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। 2024 में रिलीज़ हुई थी फिल्म लापता लेडीज़। और अब तक हमने जितनी भी फिल्मों के बारे में बात की, उन फिल्मों को सिर्फ लड़की को नहीं, लड़कों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कहते हैं नाम कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसी तरीके से किसी भी सफल स्त्री के पीछे एक ऐसे पुरुष का हाथ होता है जो उसे सपोर्ट करता है, हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा होता है और उसे प्रोत्साहित करता है। तो ये फिल्में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी देखना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन को या फिर अपने आसपास की स्त्रियों को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि करियर में ही अच्छा करना अच्छा होता है, अगर वो हाउसवाइफ बनना ही चुनती हैं तो भी उनका आत्मसम्मान उतना ही ज़रूरी होता है। इंग्लिश फिल्म में ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को, समझने को मिलेगा। इसलिए जितनी भी फिल्मों के बारे में हमने बात की, वो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी देखनी चाहिए। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप अगर कभी फ्री हो और कुछ अच्छा देखने का दिल करे और मोटिवेशनल देखने का दिल करे, मीनिंगफुल देखने का मन करे, तो ये फिल्में आप ज़रूर देखें अभी के लिए। तो लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए से होंगे और अपना और अपने अपनों का विशेष ख्याल रख रहे होंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें और मुझे दे, यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दे इजाज़त। नमस्कार। लेडीज़ फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. protecting them from

0: List to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, एक बार फिर मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ एक नए विषय के साथ, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु, और लेकर आई हूँ आपके लिए एक और उपयोगी विषय, और वो विषय है टमाटर की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी को पता है कि टमाटर कितना लोकप्रिय सब्जी है और लोग इसके बिना अपनी सब्जियों को पकाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज बहुत सारी बातें जानेंगे हम टमाटर की खेती के बारे में, साथ ही वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रणधीर कुमार, विभागाध्यक्ष उद्यान शाक एवं पुष्प विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी टमाटर की बात कही मैंने, और टमाटर देखने में इतना खूबसूरत लगता है और इसके गुण भी बहुत हैं। इसमें 90% पानी पाया जाता है जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, और इसके अलावा जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें पाया जाता है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स लाइकोपीन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन सबसे पहले जब वैज्ञानिक खेती की बात आती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए। तो टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु हम आपसे जानना चाहेंगे।
5: बिल्कुल ठीक कहा आपने आरजे अनु जी। टमाटर को बिलायती बैगन भी कहते हैं, और इसका वानस्पतिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिनम पर्सिकम होता है। यह सोलेनेसी कुल से आता है, जिसको आप आलू कुल भी कह सकते हैं। और इसका उद्गम स्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका पेरू से ये आया है यहाँ पर इंडिया में। पौष्टिक गुणों से भरपूर यह सब्जी जो है बहुत ही ज़्यादा बिहार में भी काफ़ी मात्रा में हम इसका उत्पादन करते हैं। इसका लाल रंग आपने जैसे बताया लाइकोपिन की वजह से ही होता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, जलवायु और मिट्टी दोनों जानना जरूरी है हमारे किसान भाइयों को। बलुई दोमट मिट्टी टमाटर के लिए सबसे बेहतर है।
0: बलुई दोमट मिट्टी
5: यस। जब टमाटर की अच्छी फसल के लिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित होता है। 27 डिग्री सेल्सियस से के अधिक तापमान पर इसका लाल रंग फीका होने लगता है। जब रात्रि का तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस से कम और दिन का तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है, तब पराकण व फल लगने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जो हमारे यहाँ बिहार में खास करके जो ठंडी का समय है, इसके फलन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
0: इसलिए ठंडी के समय में ज्यादा आपको बाजार टमाटर दिख भी जाते हैं।
5: जी जी।
0: और इसके बाद डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात आती है खेती की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम टमाटर की खेती करने जाएं, हमारे किसान भाई टमाटर की खेती करने जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए खेती के लिए?
5: देखिए, भूमि को जो जमीन होता है, तो सामान्यतः 2 से 3 जुताई कर पाटा चलाते हैं। फिर जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 200 से 250 कुंटल गोबर, खिचड़ी खाद या कंपोस्ट मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 60 किलोग्राम पोटास खेत तैयारी के समय ही प्रयोग कर लेते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा है 40 किलोग्राम रोपाई के 45 दिन एवं 40 किलोग्राम नाइट्रोजन वो 80 से 90 दिन बाद फिर से प्रयोग करना चाहिए, उपरिवेशन करना चाहिए। अंतिम बार जमीन को जब तैयार कर रहे होते हैं उस समय 20 से 30 किलो सुहागा जो बोरेक्स नाम से बाजार में उपलब्ध भी है, प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से भी फल जो फटने की समस्या बाद में आती है वो नहीं होता, फूल झड़ने की समस्या रुकती है।
0: बोरेक्स डाल देना
5: डालना चाहिए 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर।

0: किधर से,
1: जिससे कि आपके फल फटेंगे
0: फटे नहीं, गिरे नहीं। तत्पश्चात रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद 0.3 से 0.4% बोरन के घोल का भी छिड़काव करने से फल फटना की जो समस्या है रुकती है। जस्ता और मैग्नीज के 10 ppm के प्रयोग से फलों में विटामिन सी की मात्रा बढ़ सकती है, बढ़ती है।
1: और सर हमने ये भी देखा है कि अभी वैज्ञानिकों के अनुसार अभी किसान भाइयों को टमाटर मतलब रोपाई के लिए कह दिया जाता है इस मौसम में, और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इस समय टेम्परेचर कुछ लगभग वैसा ही रहता है जैसे इसके रोपाई के लिए ज़रूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: इसके बाद हम डॉक्टर साहब आपसे इसके प्रभेदों के नाम जानना चाहेंगे क्योंकि टमाटर के बहुत सारे प्रभेद होते हैं, किस्म होते हैं, और उन किस्मों को जानने के बाद कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को आसानी होगी टमाटर के किस्मों को पहचानने में और उन्हें बाजार में बेचने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभी सबसे जो अभी नई नई बहुत सारी किस्में आ गई है, ऐसे पुरानी भी बहुत सारी किस्में बाजार में भी उपलब्ध हैं, जैसे पंत टमाटर 1, पूसा सदाबहार, पूसा शंकर 1, पूसा शंकर 2, अर्का सौरभ, अर्का विकास, और अभी अर्का रक्षक और अर्का सम्राट, ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट यानी बहु रोग निरोधी विरोधी क्षमता इसमें है। ये सब किस्में भी हम लगा सकते हैं। KT4 है, ND108 है, इस तरह के बहुत पंजाब ट्रॉपिक, काशी विशेष हमारे इस बिहार के इलाके में अभी काफ़ी प्रचलित हुआ है। काशी अनुपम है, काशी शरद, बादशाह, सहनसा, कुछ हाइब्रिड्स भी हैं जैसे बादशाह, सहनसा, अविनाश 2, अविनाश 3, रूपाली, वैशाली, पंजाब, बरखा बहार 1, पंजाब बरखा बहार 2, ये सब नई अभी कुछ जो संकर किस्में हैं अभी किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं।
1: तो सर सबसे ज़्यादा आसानी हमारे किसान भाइयों को किस किस्म को उपजाने और उसे बाजार में अच्छे मूल्य पाने में हो सकता है?
0: हम तो ये कहेंगे कि यदि आपकी खेती कर ही रहे हैं और तन मन धन पूरा लगाते हैं तो इस पे हम तो ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप संकर किस्मों का उपयोग करिए, ताकि एक पौधे से प्रति पौधा आपको या प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पादन मिले। जैसे मैंने नाम भी लिया, बादशाह, सहनसा, अविनाश 2, अविनाश 3, रूपाली, वैशाली, ये सब जो किस्में हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब बरखा बहार 1, पंजाब बरखा बहार 2, ये सब बहुत ही लोकप्रिय किस्में हैं। इनको लगा करके किसान भाई बहुत ही अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा लाभ ले सकते हैं।
1: तो ये बात हो गई किसान भाइयों कि आप इन किस्मों को अपना कर अच्छा लाभ पा सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी होता है खाद और उर्वरक हमारे किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़रूरी, मुझे पता है कि आपके लिए, आप जब खेती करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी आपका जो ध्यान है वो रहता है कि खाद कैसा होना चाहिए, उर्वरक कैसा होना चाहिए। तो जरूरी है सर इसमें जब हम टमाटर की खेती करने जाते हैं हमारे किसान भाई, कितनी मात्रा होनी चाहिए?
0: अभी मैंने भूमि की तैयारी के तौर पे मैंने बताया कि इसमें कुल जो हम खाद की मात्रा देते हैं, अभी हमने बताया कि जब खेत तैयार करते हैं उसी समय हम 200 से 250 किलोग्राम 2 क्विंटल जो है गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में मिलाते हैं, और इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 60 किलोग्राम पोटास, जो मेरोटा पोटो, ये पोटास जो है इसको हम उस समय खेत में रोपाई से पहले देते हैं, और नाइट्रोजन की शेष मात्रा 2 बार और देते हैं, जैसे 40 किलोग्राम रोपाई के 45 दिन बाद और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन रोपाई के 80 से 90 दिनों के बाद। इस तरह से हम जमीन जमीन में इस फर्टिलाइजर डालने से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं।
1: तो ये बात हो गई किसान भाइयों कि यहाँ पर खाद और उर्वरक की मात्रा डॉक्टर साहब ने बताया आपको, और इसके बाद बात आती है बीज बोने की सर, तो टमाटर बोने के लिए बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
0: किसान भाइयों मैं ये कहूँगा कि 1 हेक्टेयर यदि क्षेत्रफल में आप फसल उगाना चाहते हैं तो इसके लिए जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी जिसको मुक्त परागित किस्म कहते हैं, चालू किस्म जिसको हम बाजार में कहते हैं, 400 से 500 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है, और यदि संकर किस्म का चयन आपने किया है तो 150 से 200 ग्राम बीज जो होता है ये 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त माना जाता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यदि आप बिहार में बचना चाहते हैं, यदि वायरस फ्री क्रॉप लेना चाहते हैं तो अब समय आ गया। अब हमारे किसान भाई 10 सितंबर तक, 5 से 10 सितंबर के बीच में इसका बीज नर्सरी तैयार करने के लिए गिरा सकते हैं, और 20 से 25 दिन में बिचड़ा तैयार हो जाता है जिसकी रोपाई हम आगे अपने खेत में मुख्य खेत में करते हैं।
1: तो बिल्कुल अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी बातें हैं ये, और ऐसी ही हमारी बातें यहाँ पर चलती रहेंगी। और डॉक्टर साहब यहाँ पर बीज की बुआई के समय को भी हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई अगर ये समय जान लेंगे तो उनके लिए और अच्छा होगा।
0: अब देखिए बिहार में मुख्यतः दो बार हम टमाटर की खेती करते हैं, एक जो है जाड़े वाली फसल जो लेते हैं शरद ऋतु की, वो

0: अभी अगस्त से ही बुआई शुरू कर देते हैं, कुछ किसान भाइयों ने बीज बुआई कर भी दिया है और कुछ अभी कर रहे हैं, और ये 10-15 सितंबर तक लोग करेंगे, जिसका कि रोपाई भी 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक बिहार में हम करते हैं। रोपाई के लिए जो शुद्ध जो मेन स्थिति होता है 20-25 दिन में इसका बिचड़ा तैयार हो जाता है, और खासकर यदि आप संकर किस्म का बीज लगाए हैं तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। मैदानी भाग जैसे है शरद ऋतु के लिए जुलाई से सितंबर तक बीज बुआई का समय होता है, और पौधा रोपण के लिए अगस्त से अक्टूबर महीना होता है। और मैदानी भाग में यदि बसंत ग्रीष्म ऋतु वाला जो हम गर्मा टमाटर जिसकी बात करते हैं उसके लिए नवंबर दिसंबर में हम बीज बोते हैं, और दिसंबर जनवरी में एक महीने बाद ही सीधे जो है उसकी रोपाई कर देते हैं, और इससे जो है बहुत ही अच्छा हमको उत्पादन दोनों सीजन में मिल सकता है।
1: डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया आपको बीज बुआई का समय, और इसके बाद बात आती है पौध रोपाई की सर, और टमाटर पौध की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए किसान भाइयों को कि उनका अच्छा लाभ मिल सके उन्हें?
0: सबसे पहले है कि वायरस फ्री विषाणु मुक्त नर्सरी तैयार हो, इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसान भाई आप जब भी अभी बेड लगाएं, चूंकि अभी बरसात का समय है तो ऊंचे बेड बनाएं, बेड बीज सैया की तैयारी करें, बीज सैया की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, जमीन से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बनाकर उसमें बीज को कतारबद्ध करके गिराएं, और बीज थोड़ा विरल गिराएं, बहुत घना बीज ना डालें ताकि बिचड़ा आपका स्वस्थ हो, और बिचड़े को कोशिश करें यदि मच्छरदानी यदि लो कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो मच्छरदानी वगैरह में डाल करके भी कर सकते हैं, अन्यथा यदि पॉली हाउस नेट हाउस आपके पास उपलब्ध है तो आप रूट ट्रेज में इसका बिचड़ा तैयार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका बाद में पौधा अच्छा स्वस्थ पौधा मिले। और इसको मच्छरदानी वगैरह लगा करके बचाने से क्या होता है कि शुरुआत में ही इसमें वायरस विषाणु जो है विषाणु हमारा आक्रमण करते हैं, और इन विषाणुओं के आक्रमण से बचने के लिए हमें स्वस्थ बिचड़ा तैयार करना चाहिए। कहते हैं होनहार बिरवा के हो चिकने पात, यदि बिरवा यानी बिचड़ा हमारा स्वस्थ होगा तभी हमारा उत्पादन बढ़िया होगा। तो शुरू से ही ध्यान देना चाहिए, बिचड़ा बढ़िया से लगाएं, और इस जब बिचड़ा तैयार हो जाता है 18 से 25 दिन का बिचड़ा जब तैयार हो जाता है, ये कम से कम 4 से 6 इंच का बिचड़ा हो जाए, तब खासकर यदि सीमित बढ़वार वाली किस्म है तो उसको 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए। और यदि आपका असीमित बढ़वार वाली है जो लगातार फलते जाता है बढ़ते जाता है, ऐसे किस्म का आप पौधा पौध लगा रहे हैं तो लाइन से लगातार से कतार की दूरी 2.5 फीट यानी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी बात कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी शुरुआत में जब हम पौधे लगाते हैं तो पहले सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। यदि शरदकालीन फसल लगाए हैं तो आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पे, और यदि गर्मा फसल आपने लगा रखा है तो 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक समय तक भूमि सूखी रहने के पश्चात अकस्मात पानी कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फल झड़ने की समस्या, फूल गिर जाने की समस्या, फल फटने की समस्या किसान भाई हमारे खेत में देख पाते हैं। थोड़ी बात ये यहाँ पर साथ साथ और भी करना चाहेंगे, इसमें तरह तरह के खरपतवार भी आते हैं, तो यदि खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं और ज़रूरी भी है खरपतवार नियंत्रण है, तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडीमेथिलीन का पौधरोपण के एक दिन पहले ही छिड़काव करें, और एवं 45 दिन बाद खुरपी से एक बार निराई गुड़ाई करने से खरपतवार मुक्त हो सकता है हमारा खेत। ये तो रही बात खरपतवार नियंत्रण की, लेकिन थोड़ी बात हम इसमें ये भी कहते हैं, कई बार किसान भाई खेती करते हैं कहते हैं हमारा उत्पादन बढ़िया नहीं हो रहा, तो बहुत सारे पादप वृद्धि नियामक भी बाजार में उपलब्ध हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों का। जैसे बसंत ऋतु के प्रारंभ में कम तापक्रम और शरद ऋतु से पहले अधिक तापक्रम रहने से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फल कम लगते हैं। जब रात्रि का तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस से कम और दिन का तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है, ऐसी परिस्थिति में परागण व फल लगने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छी फलत अगले अगेती फसल तथा फलों में कम बीज के लिए पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 15 से 20 ppm यानी 15 से 20 mg 1 लीटर पानी में 2,4-D का भी 1 से 5 ppm यानी 1 से 5 मिलीग्राम प्रति लीटर।

0: पाने में, या फिर जिब्रेलिक एसिड का भी हम 50 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। इसका प्रयोग ही बहुत ही लाभकारी होता है। इससे जो है आपका अगेती फसल में या फिर जो गर्मा फसल है इसमें जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, अपरागन की समस्या आती है, उससे ये निजात मिलेगा। रोपाई के 30 से 45 व 60 दिनों पर 5-5 ppm का 2,4-D के प्रयोग पर फल उत्पादन में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। फूलों को धूप से जलने और क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। ये इसी तरह से इथरेल नाम का एक हार्मोन बाजार में उपलब्ध है। इथरेल का 500 से 1000 ppm यदि आप छिड़काव करते हैं तो फलों की संख्या बढ़ाता है तथा इसका पकना समान रूप से होता है। नेप्थलिन NA जो बाजार में उपलब्ध है, नेप्थलिन एस्टिक एसिड, जो 100 ppm के छिड़काव से फलों में घुलनशील ठोस की मात्रा भी बढ़ सकती है। इसी प्रकार 100 ppm काइनेटिन के प्रयोग से फलों का घुलनशील ठोस, शर्करा एवं विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि पाई जाती है तथा उपज में भी वृद्धि होती है। और एक चीज़ बताएं कि इतना जब आप कर ही रहे हैं तो खास करके जब आप असीमित बढ़वार वाली जो इनडिटर्मिनेट टोमेटो जिसको कहते हैं, यदि ऐसा टमाटर किसान भाई लगाए हैं तो पौधे को सहारा देना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें टमाटर शाखाएं भूमि के नहीं देते हैं तो क्या होता है, भूमि के ऊपर ये पौधे गिर जाते हैं। इस कारण हवा और प्रकाश से वंचित होने लगती हैं इनकी टहनियाँ, पत्ते भी नहीं मिल पत्ते पत्तों पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होती है, फल भी सिंचाई के पानी में सड़ने लगते हैं। तो ऐसे में अतिरिक्त फलों में आकर्षक रंग भी नहीं आ पाता है। अतः पौधों को कम से कम 3-4 cm मोटी बांस की खूंटी के सहारे लताओं को सहारा देना चाहिए। ऐसा सहारा देने से अधिक प्रकाश पाकर फल का आकार में बढ़ोतरी होता है और फल भी आकर्षक होते हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। और यदि बढ़िया आपने पैदा कर ही लिया तो इसकी तुड़ाई भी आपको समय से करनी चाहिए। हम किसान भाइयों को अक्सर कहते हैं कि बाजार की व्यवस्था के अनुसार ही इसके अलग अलग स्टेज पे इसकी तुड़ाई करते हैं। किस स्थिति में टमाटर तोड़ना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। यदि टमाटर तुड़ाई बाजार के अनुरूप नहीं करेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। अच्छा। आपका उत्पादन तो हो जाएगा लेकिन लाभ बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो सीमित बढ़वार वाली जो किस्में होती हैं इनकी रोपाई के 65-70 दिनों बाद एवं असीमित बढ़वार वाली किस्में में 75-80 दिनों बाद फल देना प्रारंभ हो जाता है, परंतु तुरंत प्रयोग करने के लिए फल पूर्ण रूप से सुर्ख हो जाने पर ही तोड़ना चाहिए। लेकिन हाट या दूर यदि भेजना है तो जो टर्निंग स्टेज होता है, जैसे गुलाबी रंग लेना शुरू करे, उस स्टेज में कितना दूर हमें मार्केटिंग करना है, बाजार व्यवस्था देखनी है, उस हिसाब से हम इसकी फल की तोड़ाई करके उसकी ग्रेडिंग करके फिर पैकेजिंग करके हम मार्केट में ले जाते हैं। यदि हम उपज की बात करें तो जो संकर किस्में हैं इनका उत्पादन साधारण औसत उत्पादन 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है बिहार में। और यदि मुक्त परागित प्रभेद हैं, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, चालू किस्म जिसको कहते हैं, इसमें भी हमारे किसान भाई 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आराम से ले सकते हैं।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने टमाटर पौध की तैयारी से लेकर तुड़ाई तक की बात कर दी और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पौध की तैयारी की बात कहें तो बेड का आपको खास ख्याल रखना है, 15 cm ज़मीन से ऊपर आपको बेड अच्छी तरीके से बनाने हैं। साथ ही इन्होंने जो है लाइन की दूरी और पौधों की दूरी के बारे में बताया। इसके बाद इन्होंने एक बात और ध्यान रखने को कहा आप सभी को कि अगर आपका ज़मीन सूखा हुआ है तो अचानक पानी ना डालें, इससे आपके फल गिर सकते हैं और फट भी सकते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने तुड़ाई के बारे में कहा। अगर डिस्टेंस यानी कि जहां बाजार दूर है, आप जहां से खेती कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं तो आप कलर देख लें टमाटर का, उस तरीके से यानी कि दूरी के हिसाब से आप तुड़ाई करें। तो बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने यहां पर बता दी। और इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम टमाटर की बुआई करने जाएं, यानी कि टमाटर की बुआई करने से पहले और टमाटर की बुआई के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले कि बीज का चुनाव समय से करें और सबसे पहले घर में प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें टमाटर की खेती करनी है, उसके लिए प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। यदि आपने सोचा है, प्लान बनाया कि हमें 1 हेक्टेयर में टमाटर की खेती करनी या 1 बीघा टमाटर की खेती करना है, तो उसके लिए तुरंत आप किसी वैज्ञानिक से सलाह ले करके, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारा सबौर कृषि विश्वविद्यालय में सब बहुत सारे वैज्ञानिक इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, उनसे बात करके पहले प्लानिंग करें कि कौन सी किस्म लगाएं, आपका जमीन

0: ऐसा है, पानी तो नहीं दिखता है। ये सारी बातों का ध्यान रख करके बीज का चुनाव और कौन सी किस्म है, उसका बीज कहाँ से मिलेगा, ये जरूर देखें। बीज अच्छे सोर्स से लें, सरकारी व्यवस्था यदि हो जाता है तो वहाँ से लें। बिल्कुल ढंग का बीज लेना चाहिए,
1: स्वस्थ बीज,
0: स्वस्थ बीज होना चाहिए। और बीज उपचार भी करना जरूरी है। बीज उपचार करने के लिए कार्बोक्सिन और थीरम वाली दवा मिक्स आती है, वीटा वैक्स पावर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो न मिले तो कार्बेंडाजिम जो बाविस्टिन नाम से बाजार में उपलब्ध है, उसका भी आप एक चुटकी दवा ही काफ़ी है आपके एक है एक बीघा के लिए, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 से 2 ग्राम दवा सफिशियंट है, उनका आप इस्तेमाल करके और उसका बीज की बुआई करें। और बीज जब आप लगाएं तो बेड पे लगाएं, बहुत सारी बीमारियां भी इसमें आती हैं। मैं आपको यहाँ पर किसान भाइयों को थोड़ा सा बीमारियों के बारे में बताना चाह रहा था कि यदि इसमें कुछ खास खास बीमारियां जो इसे भागलपुर के इलाके में जो खास करके लगती हैं, जैसे एक आर्द्र गलन आता है, डैम्पिंग ऑफ जिसे कहते हैं, ये बहुत ही मुख्य रोग है जो नर्सरी अवस्था में ही आता है। इस रोग में सतह जमीन के पास तना गलने लगता है तथा पौधा मर जाता है। इस रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले ही बीज का उपचार फफूंद नाशक दवा, जैसे मैंने बताया कि ये आप बीटा वैक्स पावर की बात बताया था, कार्बोक्सिन और थीरम वाली दवा, इसका मात्र 2 ग्राम दवाई एक बीघा के लिए जो बीज की मात्रा है 50 से 60 ग्राम बीज में काफ़ी पर्याप्त होता है आप, या फिर इसके अलावा कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बेंडाजिम की बात मैंने बताया, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसके अलावा भी यदि खेत में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, लगता है कि पौधे जो हैं बिछड़ा जमीन से की सतह से गिर रहा है, तो ऐसे स्थिति में कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके एक बार जरूर छिड़काव करें। और उसके ठीक 4 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 ब्लू कॉपर धानु कॉप आदि नाम से रेज नाम से भी उपलब्ध है, इनका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 2.5 से 3 ग्राम इसका भी एक बार ड्रेंचिंग करना चाहिए, यानी पूरे पौधे को भिगाना चाहिए नर्सरी बेड को। टमाटर में जो गर्मा फसल है उसमें मुख्यतः कुकड़ी रोग भी देखा जाता है। कुकड़ी यानी ये वायरल विषाणु रोग, विषाणु जनित रोग है। और रोगग्रस्त इसमें क्या है, इसको बचाने के लिए जो पहले जैसे ही शुरुआत में दिखाई पौधे पौधा कोई रोगग्रस्त, उसे उखाड़ कर जला देना चाहिए या मिट्टी में गाड़ दें। और ये जानते हैं कि ये पौधा, ये जो बीमारी है, ये सफ़ेद मक्खी के वजह से ज़्यादातर ये फैलती हैं, तो जो इनके वाहक कीट हैं सफ़ेद मक्खी, इनकी रोकथाम करने के लिए हम 1 मिलीलीटर दवा खासकर इमिडाक्लोपीड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में, या फिर एसी फेट दवा 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके बारी बारी से अल्टरनेट 10 दिन के अंतराल पे इसका छिड़काव करने से ये बीमारी से अपने फसल को बचाया जा सकता है। इसी तरह से एंथ्रेक्नोज बीमारी भी इसमें काफ़ी देखा जाता है इस इलाके में। इसमें आप देखते होंगे कि पत्तियों के ऊपर, टमाटर के पत्तियों के ऊपर पीले गोल जलयुक्त धब्बे दिखाई देते हैं, ये धब्बे आपस में मिलकर फिर बड़े भूरे हो जाते हैं, रोगी पत्तियाँ सूख जाती हैं, फलों पर धब्बे गोलाकार जलयुक्त व हल्के रंग के होते हैं। रोग के निदान हेतु बीज के को थीरम अवविस्टिन से उपचार जरूर करें। और जब ऐसी बीमारी दिखाई देता है तो मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने से ये बीमारी रुक जाती है। इसी तरह से अगेती झुलसा बीमारी इसमें आता है, पर्ण झुलसा जिसको कहते हैं, पत्ती झुलसा रोग, ये सर्वप्रथम पत्ती पर हरे हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में गहरे रंग के और बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। तो ये इनका रोकथाम के लिए जीनेब करके एक दवा आती है, जिसका कि 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने से आपका फसल बच सकता है। कई बार बिल्ट इसमें जो सुखड़ा उखड़ा बीमारी आता है, और ये बीमारी भी काफ़ी हानि पहुंचा जाता है, कई बार तो पूरा खेत का खेत बिल्कुल मर जाता है। इसमें पौधा मुरझाकर सूख जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, और कॉलर वाला जो पोर्शन है, कमर का जो पोर्शन यानी जमीन से सटा हुआ जो तना होता है, वहाँ पर सिकुड़ने लगता है वो वाला भाग, और पौधों की जड़ व भीतरी भाग भूरा हो जाता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। लक्षण सबसे स्पष्ट फूल आने व फल बनने की अवस्था पर ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे फलने लगता है एक एक पौधे सूखने लगते हैं फल लगने के समय ही। तो ऐसे में इनके रोकथाम के लिए रोग रोधी प्रजातियां हैं उनका इस्तेमाल करें। भूमि स्वरीकरण करना बहुत

0: जरूरी है, भूमि का शोधन करना चाहिए और जमीन में मिट्टी मिट्टी में चूना डालना चाहिए। 80 से 90 किलोग्राम चूना प्रति एकड़ की दर से आप हर तीसरे साल खेत में डालें, ताकि जो जमीन जहां पर एसिडिटी बढ़ गई है, जमीन का पीएच मान 6 से नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है। बोने से पहले बीज को कार्बेंडाजिम से उपचारित करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम इसमें यदि इस तरह का विल्टिंग आता है तो हम दूसरे जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एक कीड़ा इसमें बहुत ज़्यादा जो तंग करता है वो फल छेदक, और ख़ास करके जो फरवरी मार्च का महीना आता है उस समय फल छेदक का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है। इसकी रोकथाम के लिए लार्वा को चुन को चुन कर मारना चाहिए और पौध को लगाने से पहले जड़ को क्लोरपाइरीफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल कर 5 मिनट तक डुबो कर उपचारित कर लेना जरूरी है। तत्पश्चात एक दबाती स्पाइनोसाइड बहुत ही सुरक्षित दवा है, इसका 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से यदि इसको 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव आप करते हैं तो ये खास करके जो फल छेदक कीट है इससे आपका फसल निजात पाएगा। और बाकी जो छोटे छोटे कीड़े जैसे थ्रिप्स है, एफिड यानी माहू होता है, जैसिड्स है, ये भी इनके रस चूसते हैं, इनकी पत्तियों के रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियाँ में कर्लिंग हो जाता है, मुड़ने लगता है। तो इसके लिए इमिडाक्लोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, और जो मैंने पहले बताया एसीफेट दवा 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में, इन दोनों का अल्टरनेट छिड़काव करने से ये जो भी इस तरह की कीड़े हैं इनसे आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। और किसान भाइयों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई भी समस्या है तो उसको आप नियमित रूप से, जब आप ये भी पौध सुरक्षा रसायन का या कोई भी जैविक रसायन का, जैविक उत्पाद का आप इस्तेमाल करते हैं, नियमित रूप से करेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, आपके उत्पाद स्वस्थ होंगे। जब टमाटर के रंग लाल होंगे तो उसी हिसाब से आपके पास पैसे आमदनी भी अच्छा होगा और आपके भी चेहरे लाल होंगे। धन्यवाद।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, और आपको बता दूं किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने बुआई से पहले आप सभी को बताया कि आप पहले से प्लानिंग कर लें कि आपको कौन से किस्म का यहाँ पर टमाटर बोना है, और इसके साथ ही इन्होंने जो रोग हैं उनके बारे में कहा कि अगर आपके टमाटर के पौधों में रोग लगते हैं तो आपके पास कुछ दवाइयों के नाम भी डॉक्टर साहब ने कहा, जैसे कि कार्बेंडाजिम, इसके बाद इमिडाक्लोप्रीड, थीरम, जिनेव, चूना भी होना चाहिए, और इसके बाद उन्होंने स्पाइनोसाइड के बारे में भी कहा। तो इन सारी दवाइयों को आप रख सकते हैं अपने पास, और आपको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, तो अपने जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्हें बताएं कि इस तरीके से हमारे पौधे में रोग हैं, और उसे बताने के बाद अगर वो जिस भी दवा को प्रेफर करते हैं आप अपने पौधे पर दें, छिड़काव करें और स्वस्थ टमाटर उपजाएं, हमें भी दें और पूरे देश का नाम रोशन करें, क्योंकि हमारे देश से बहुत से अन्य जो देश हैं, विदेश हैं, वहाँ पर टमाटर आयात किया जाता है, और इसीलिए मैं चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत आयात में इसका निर्यात करें, और एक अच्छी जो लाभ है आर्थिक स्तर पर भी, और हमारे देश को भी अच्छी आर्थिक स्तर पर पहुँचाएँ। इसके साथ ही यहाँ पर डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सभी से किसान भाइयों फिर से मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू,

0: मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, उनके जवाब भी हम दे सकें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि

0: उस दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
4: So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 cm लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से

60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या

0: प्रत्येक 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर। वो लिखते हैं,
0: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए

0: इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
1: चरखी दादरी हरियाणा से
0: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें। धन्यवाद
1: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
0: अगला संदेश हमें मिला है गेंदाटोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
1: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
1: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
0: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
1: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
1: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
0: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
1: जी,
0: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
1: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
0: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
1: जी,
0: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
1: जी,
0: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
1: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
0: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
1: जी,
0: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
1: जी,
0: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
1: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
0: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
1: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया
1: जी,
0: बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
1: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
0: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
1: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
0: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका मिला।
1: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
0: बिल्कुल श्रोताओ, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
1: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझकर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
0: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
1: जी,
0: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
1: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
0: वो क्या?
1: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
0: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही।
1: जी,
0: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
0: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
1: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें,

0: भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये जरूर जाने।
1: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
0: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
1: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
0: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
1: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
0: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी बहादुर बाली का टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: बच्चों अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता

के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते, तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते, तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
3: सच्चियाकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
3: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
3: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
3: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
2: जी चाचा।

0: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
1: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
0: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
1: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
0: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
1: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
2: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
3: निर्मल सर, आप यहाँ?
2: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं।
4: अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
3: सर, ये तो हमारा काम है।
2: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
3: सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
2: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ, पॉलिश दे। और देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
0: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखू। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
2: एक मिनट मान सिंह, तो मैनू फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ लेता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
1: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान ने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
0: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत

0: था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
1: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
0: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
1: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
0: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
3: सर, अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं। जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है। निशाना लगाता हूं। अब बिल्कुल निशाने पर आ गया। ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
1: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
0: अब दुश्मन के 4 विमान बचे थे। 2 विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने बचे हुए 4 विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
3: ओए कायरो, ओए भागते कहां हो? ये तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
1: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
0: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
3: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
1: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों

0: के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखो ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेख हों, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेख हूँ। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. Remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.

0: see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के

0: आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो

0: सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1800 345 6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा,

0: 1800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर,
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को समर्पित यह गीत। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और महेश को संहारकर्ता कहा गया है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में आइए तो हमारे किसान बंधु को पालनकर्ता क्यों नहीं कहा जाए? विश्व के समस्त प्राणी, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, धरती पर चलने वाला मानव हो या जल में विचरण करने वाला जीव जंतु, यदि किसान नहीं होते तो इनका अस्तित्व मिट जाता। तो आइए, इन किसान बंधु के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने काफी हद तक प्रयास किया है, जिसको गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं।

से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली

एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम में मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में विशेष चर्चा करते हैं और हम आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर बात करेंगे सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से। और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
1: जी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है। उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ

है जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्मजीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं। और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज़ है जो सूक्ष्मजीव करते हैं, जो सूक्ष्मजीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु पॉलीसेक्रेड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है। और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें हवा का आवागमन जो है वो गैस का जो एक्सचेंज है उस मिट्टी में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रीड और रंध्र और बृहत रंध्र जो है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं, तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व यानी सूक्ष्मजीव जीवाणु का महत्व न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्मजीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम, इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और
नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है। अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्म जीव जीवाणु का रोल क्या है, तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है और उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है, तो उसको क्या करता है ये जीवाणु,

जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमीनो एसिड रिलीज होता है, अमीनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमीनो ग्रुप रिलीज होगा, और उस अमीनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनीफाइंग जीवाणु या अमोनीकारक जीवाणु, जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रोडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पीसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमीनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है, कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में, और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रोडियम हो गया, तो ये क्या करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम एन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम क्या करता है, तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रोडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज़ है कि वो जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे, तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ, आयरन के साथ, एल्युमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा
अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फास्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने

0: फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, मिट्टी में जाते ही इमीडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्युमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का पीएच क्या है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्मजीव जीवाणु का हम अपन माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन। चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में, एनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज है कि जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है वो क्या करते हैं, तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं। और ये रिलीज करने से क्या होता है, पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है। और उसके साथ साथ एक ACCDMNase एंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु, और वो क्या करता है, तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्मजीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्मजीव जीवाणु है, ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए, उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्मजीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसुलस थुरिंजेनेसिस, ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में, पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्मजीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्मजीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्मजीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया, और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है, और किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है, क्योंकि जैव उर्वरक का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट।

है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है, यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा, तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए, उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्मजीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है, जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल, लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती, यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है, और इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है रैजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है, जो क्या करता है दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है, और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है, जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट पीएसबी के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है, जो पीएसबी बायो फर्टिलाइजर है, और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं पीएसबी को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15-40 kg तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है, और जब उससे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी, रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे, उस मात्रा में उसका क्वांटिटी घटाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जैसे चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में।

गन्ना में, इस सब में जो एस्परिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20 से 25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है, और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का। तो वो क्या करते हैं, उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेड़ को अच्छा से मजबूत कर लीजिए, और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए, और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं, या ब्लू ग्रीन अल्गी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके, ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा, और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे, और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी वायुमंडल नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में, और व्हीट मेज, राइस, वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गया कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं, और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं, और उसको अच्छा से मिला देंगे, इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे, और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार, जैसे हो गया धान के केस में, या सब्जी के केस में, या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचरा जो 20-21 दिन का बिचरा हो जाता है उसको लगाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचरा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचरा के उपचार के लिए भी हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचरा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सुटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे, और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे।

0: ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो, ये मेथड, ये विधि है जिसको हम बिचरा कर्म लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचरा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, दो 70 से 80 kg गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 kg जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा, और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट होकर के जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना, या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना, या फैटो हार्मोन उपलब्ध कराना, या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं, और उपचार करके उसको लगावेंगे तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो, या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में, और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में, और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है, और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है, ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है, यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है, उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ, इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में, वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है, 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है, और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें ज़्यादा अच्छा, उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उस मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से, तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें, और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
1: सर, आपने सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।

0: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि हेलो नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। हर रोज़ की तरह हम कुछ खास लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। उन्नत कृषि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इसमें आप जानते हैं खेती से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो आज भी बहुत ही खास बात है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी और ये हैं प्रधान अन्वेषणकर्ता मखाना अनुसंधान परियोजना और ये है भोला पासवान शास्त्रीय कृषि महाविद्यालय पूर्णिया से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और
2: धन्यवाद मैडम।
1: और जैसा कि अभी हमने बात किया है डॉक्टर साहब से और बातें भी की, तो मुझे तो बहुत सारे जो अनुभव हैं वो मिले हैं मखाना के बारे में। और मखाना की खेती बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि और साथ ही प्रेरित करें कि मखाना की खेती से क्या फ़ायदा मिल सकता है उन्हें, ये कैसे लाभदायक है और साथ ही इसकी खेती से क्या क्या मुनाफा मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को।
2: देखिए, जो जल जमाव क्षेत्र है बिहार में 9.12 लाख हेक्टेयर जल जमाव क्षेत्र है, और भागलपुर में जब आप 0 माइल से आगे बढ़ेंगे, पुल क्रॉस करेंगे तो नौगछिया पहुंचने से पहले देखेंगे बाएं साइड में बहुत बड़ा एरिया है जो जल जमाव से ग्रसित रहता है, उसमें जलीय खरपतवार भरा हुआ है। तो उन क्षेत्रों में जहां हम पानी ज़्यादा अधिक आ जाने से कोई खेती नहीं कर पाते

0: सकते हैं, उसके लिए मखाना एक बेहतर विकल्प है।
1: अच्छा।
0: अब हम बात करते हैं कि इसकी खेती किन किन परिस्थितियों में की जाती है और इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जमीन की तीन स्थिति है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें जुलाई महीने में 1 से 2 फीट पानी आता है और वो अक्टूबर महीने में सूख जाता है, वहाँ पे हम मखाना को खेत पद्धति में करते हैं। जो दूसरी पद्धति है कि जुलाई महीने में 3 से 4 फीट पानी आता है और वो दिसंबर जनवरी में जाके सूखता है, और तीसरी परिस्थिति है कि जुलाई महीने में 7, 8, 10 फीट तक पानी आता है और वो सालों भर जलमग्न भरा रहता है, जलीय खरपतवार से आच्छादित रहता है। तो इन क्षेत्रों की उत्पादन उत्पादक क्षमता वृद्धि के लिए मखाना एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। तो अब बात करते हैं जो दूसरी परिस्थिति, जो पहली परिस्थिति थी उसमें हम लोग खेत पद्धति में मखाना की खेती करते हैं, जो आपको पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, अररिया, किशनगंज इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है और किसान काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। इसकी जो उत्पादन क्षमता है बहुत ही अच्छी प्रजाति की बीज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा विकसित की गई है, जिसका नाम सबौर मखाना 1 है। इसकी उत्पादन क्षमता 32 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
1: अच्छा।
0: अब हम विशेष रूप से यहाँ पे ये कहना चाहेंगे किसान भाइयों को कि सबौर मखाना के बीज की उपलब्धता भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में उपलब्ध है। ये आपको बीज की उपलब्धता अगस्त महीने से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने तक उपलब्ध रहता है और बीज की उपलब्धता 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बीज को बेचा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कब और कैसे किया जाए। तो खेत पद्धति में मखाना की खेती के लिए हम सबसे पहले जितना हमारा क्षेत्रफल में मखाना लगाना है उसके 1/10 भाग में पौधशाला की तैयारी करनी होगी।
1: अच्छा।
0: पौधशाला की तैयारी, जैसे आप धान की खेती के लिए खेत तैयार करते हैं उसी तरह खेत को तैयार करेंगे कीचड़ लगा करके, जो पानी की गहराई होगी। तो यहाँ पे एक यही ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य खेत में जितने गहराई पानी में आपको पौधे को लगाना है
1: जी,
0: उतने गहराई, उतना पानी का डेप्थ आपको पौधशाला में भी मेंटेन करना होगा।
1: अच्छा।
0: तो खेत पद्धति में अक्सर हाँ किसान को मात्र एक फीट पानी में मखाना की खेती की जाती है, तो उसमें नर्सरी, जो पौधशाला का क्षेत्र है उसमें हम लोग नर्सरी में 1 फीट पानी का लगाते हैं और ये काम बीज बुआई का काम दिसंबर महीने में पूर्ण करते हैं।
1: अच्छा।
0: 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी, जो कि सबौर मखाना 1 बीज है, उसको हमने पहले ही कहा है आप लोगों को। इसमें आप क्या करेंगे, नीम आधारित कोई भी दवा जो बाजार में उपलब्ध है उससे इसके बीज का शोधन करने के बाद आप उसमें कीचड़ तैयार करके उसको छिड़काव कर देंगे।
1: अच्छा।
0: ये पौधा आपको 35 से 40 दिन में आपके पानी के सतह पे दिखाई देगा, छोटे छोटे पत्ते, तांबे रंग का पत्ता दिखाई देगा। 65 दिन के बाद ये पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो पौधे की रोपाई होती है वो फरवरी मार्च महीने में होती है।
1: अच्छा।
0: खेत की तैयारी अब हम कैसे की करते हैं उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो जिस तरह से किसान भाई धान के फसल के लिए खेत की तैयारी करते हैं, बस सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। धान के खेत की तरह खेत को तैयार कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपका मेड़ का जो ऊंचाई है वो कम से कम 1 फीट होना चाहिए और अधिकतम हम लोग मखाना की खेती 6 फीट तक के पानी में, 7 फीट पानी तक मखाना की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम खेत की तैयारी करने के समय कितना कितना रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो इसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटास 75-45-30, यानी 75 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम पोटास और 75 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से होती है।
1: अच्छा।
0: बुआई के इसमें खेत तैयारी के आखिरी समय में आप इसमें प्रति हेक्टेयर 40 से 50 किलोग्राम चूना अगर मिला देते हैं तो लावा बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
0: अब बात आती है खेत की तैयारी तो हो गई, अब पौधे को किस तरह से और कितनी कितनी दूरी पर लगाया जाए।

0: तो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 1 मीटर से 1.25 मीटर के बीच में रखी जाती है, जिससे बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। अब पौधा लगाने के 35 से 40 दिन के बाद आप में थोड़ा कहीं कहीं इसमें एक अल्टरनेडिया पत्ता गलन की बीमारी आती है, उसमें हम किसान भाइयों कहेंगे कि आप एक नीम सीड कर्नल वाले यानी नीम तेल एक दवा आता है, चाहे नीम आधारित कोई भी दवा जो बाजार में उपलब्ध है
1: उसको आप निम्बिसिडीन,
0: हाँ निम्बिसिडीन, नीम का नीम सीड कर्नल वायल, नीम का तेल जो भी बाजार में उपलब्ध है उसको आप क्या करेंगे कि 5 से 7 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उस पे आवश्यकता अनुसार 10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करेंगे तो आपका मखाना में किसी तरह का कोई बीमारी और कीट नहीं लगेगा। मैं नीम आधारित तेल का इस्तेमाल दवा का इसलिए कह रहा हूँ कि पानी में बहुत ही लाभदायक जीव जंतु भी होते हैं, उनको रासायनिक अगर कीटनाशक दवा इस्तेमाल करेंगे तो उनके इकोसिस्टम पे उनके खराब पड़ेगा
1: जी।
0: इसमें मछलियां भी रहती हैं, मछलियां भी मरने का डर रहता है, लेकिन नीम आधारित दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें किसी तरह का कोई किसी तरह का हानि होने का संभावना नहीं रहता है। अब बात आती है कि मखाना के खेती में हमने किया, अब बात आती है कि हमको कितना उपज प्राप्त होगा। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं और जो मखाना की बोराई होती है वो आदमी द्वारा किया जाता है और 1 हेक्टेयर खेत से आपको 30 से 32 कुंटल उपज गुर्री, जिसको मखाना के बीज को गुर्री कहा जाता है स्थानीय भाषा में, तो 30 से 32 कुंटल गुर्री प्राप्त होता है। 1 हेक्टेयर की खेती करेंगे आप तो आपको 80 से 85 हज़ार रुपये खर्च आता है और शुद्ध मुनाफा जो आता है आपको 1,25,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। ये तो खेत पद्धति की बात है। आप खेत आपका जो खाली हो जाएगा वो जुलाई महीने में खेत खाली हो जाता है, उसके बाद आप उसमें धान लगा सकते हैं या धान के खरी फसल में आप तीसी, मसूर, खेसारी, केराव, बांकला इन सब चीज़ों को छिट करके काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि खेत पद्धति में तो जहाँ पे जुलाई महीने में 1 से 2 फीट पानी आया है और अक्टूबर महीने में सूख जाता है, वहाँ के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल प्रणाली है जिससे सबसे अधिक उपज प्राप्त होता है वो है मखाना और सरसों। मखाना के खेत में नमी बगैर जुताई के आप सरसों के छिड़काव कर दें तो एक बेहतर उत्पादन और प्राप्त होता है। और मखाना के खेती में सबसे खास बात क्या है कि हम लोग केवल इस फसल से केवल बीज निकालते हैं, बाकी पौधा का जितना भी प्लांट पौधे का जो भाग है वो खेत में ही सड़ जाता है, जो आने वाले फसल के लिए ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब तालाब पद्धति की बात हम करते हैं कि मखाना की खेती तालाब पद्धति में जब हम करते हैं तो उसमें मखाना के साथ हम लोग मछली का भी उत्पादन कर सकते हैं। मछली का उत्पादन जितना तालाब का क्षेत्रफल है उसका 1/10 भाग बीच में खाली जगह बांस के खूंटे के सहारे से छोड़ा जाता है, जिसको रिफ्यूज एरिया कहा जाता है। रिफ्यूज एरिया मछलियाँ पूरे तालाब में मूवमेंट करती है और रिफ्यूज एरिया में हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए उसमें मछलियाँ आरामगाह के रूप में इस्तेमाल करती हैं। मछली इसमें सबसे खास बात क्या है कि लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि मखाना के साथ मछली नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कांटे होते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन नहीं, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि रेहू, कतला, मृगल ये तीनों जो इंडियन मेजर कार्प जो मखाना है मछली है इनको हम लोग पालन करते हैं कर सकते हैं और एक साथ हम दुगुना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जो हमने पहले भी बताया है कि आपका कितना भी स्थिति खराब हो जाए तो 1,15,000 रुपये मखाना की खेती से मखाना से होना है और 1,25,000 रुपये आपको मछली से होना है। मछली में इसमें खाना देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जब मखाना का जब फल फटता है तो उससे एक तरल पदार्थ निकलता है जिससे फाइटोप्लांक्टन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और मछलियाँ उसको अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करती है, मछलियों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अब बात आती है कि 1 हेक्टेयर तालाब में मखाना के खेत में हम कितने मछली के बच्चे को उसमें डालें, तो मैं आपको बताऊँ 3 इंच का फिंगरलिंग अप्रैल महीने में आप अगर डालते हैं तो 4,000 से 5,000 आपको फिंगरलिंग डालेंगे तो आपको बेहतर उत्पादन मखाना का भी होगा और मछली का भी होगा। अब

0: खाना सह मछली में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिन जल जमाव क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आता है, उसमें आप अप्रैल महीने में मछली नहीं डालेंगे। जुलाई महीने में आप मखाना को निकाल लीजिए और खेत को खाली यूं ही रहने दीजिए। अक्टूबर महीने के बाद बाढ़ की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है कि अक्टूबर दुर्गा पूजा के बाद बाढ़ की संभावना नहीं होती है। तो एक हेक्टेयर खेत में आप ग्रास कार्प, जिसमें जो 100 ग्राम का लगभग हो जाता है, ग्रास कार्प मछलियां आप डालते हैं। मखाना के खेती के बाद जो जलीय खरपतवार का तेजी से बढ़वार होता है जल जमाव क्षेत्रों में, ग्रास कार्प उसको बहुत तेजी से खाता है और क्लीन कर देता है। अगर आप जो मखाना के खेत किए हैं जुलाई महीने में और आप उसको यूं ही छोड़ देंगे, तो पुनः दिसंबर महीने में अगर मखाना के खेती करने के लिए आप जाएंगे तो वहां आपको मजदूरों साफ सफाई कराने के लिए कम से कम प्रति हेक्टेयर 32,000 से 35,000 रुपये आपको लेबर खर्च, मजदूरी का खर्च लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें ग्रास कार्प डाल दिए हुए हैं अक्टूबर महीने में, तो अगर आप 3 क्विंटल डाले हैं तो जनवरी फरवरी में वो 6 क्विंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। बगैर किसी अतिरिक्त लागत का आपका एक तो साफ सफाई की मजदूरी का बचत हुआ और दूसरी डबल मुनाफे भी हुए। तो एक हुआ कि मखाना के बाद मछली उत्पादन, और जहाँ पे जिन क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या नहीं होती है, तालाब हमारा पूर्णतः बांध से सुरक्षित है, उसमें हम लोग मखाना के साथ मछली करते हैं। एक है मखाना के बाद मछली और एक क्षेत्र है मखाना के साथ मखाना सह मत्स्य पालन। उन क्षेत्रों में भी हमने पहले ही कहा कि 1/10 भाग तालाब क्षेत्रफल का छोड़ना होता है और उसमें हम रेहू कतला मृगल डाल के अप्रैल महीना में डालते हैं 3 इंच का, और उसको हम दिसंबर महीने में निकाल लेते हैं। तो आपके विपरीत परिस्थितियों में भी आपको मखाना सह मत्स्य पालन से अगर जो शुद्ध लाभ है वो आपको 2.5 लाख रुपए आने ही आने हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि मखाना की खेती आप कैसे कर सकते हैं। कठिन हो सकता है ये खेती, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, मुनाफा आपको बहुत ही ज्यादा होगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया। तो बस यहाँ पर दिए गए सुझावों को और निर्देशों को आप समझें और जैसे आप खेती करना चाहते हैं उस तरीके से करें। और सुझाव तो आप सभी को यूं ही दिए जाएंगे। 90.8 FM ग्रीन पर आपकी खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें हम लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए आपकी आरजे अनु को। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी

अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात

ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
2: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
8: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह

0: होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही

0: मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें

गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड

फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। आइए मित्रों, अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनि शाला में।
1: मेरे बहुत बहुत बहुत प्यारे बच्चों, आपको उषा दीदी का नमस्कार। आज आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी को हुआ क्या है। पहले तो वे सिर्फ बोलती थी मेरे प्यारे बच्चों, और आज उन्होंने बहुत बहुत बहुत, वो भी 3 बार बहुत शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, बात ही कुछ ऐसी है। आज मैं जो आपके साथ बतियाने वाली हूँ, वह दरअसल त्योहारों की बात है। अब जब बात त्योहार की हो तो मन झूम ही उठता है, और जब मन झूमने लगता है तो फिर हमें बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से आज बहुत शब्द मैंने 3 बार इस्तेमाल किया। किसी भी तीज त्योहार का नाम सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आती है? अच्छा, आपसे पहले मैं बताती हूँ, किसी भी त्योहार का नाम सुनकर या त्योहार की बातचीत सुनकर जो सबसे पहले चीज मेरे दिमाग में आती है, वे हैं तरह तरह के पकवान। मुंह में पानी आ रहा है, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। अगर हम होली की बात करें तो क्या चीज जहन में आ रही है? गुजिया। और अगर हम दिवाली की बात करें तो खीर, मालपुए। ये तो मुंह में और पानी आ रहा है। और पूरे भारत देश में अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। पता है बच्चों, कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, यानी मौसम में परिवर्तन आया, फसल कटने का समय है तो बस त्योहार मन गया। त्योहार कुछ और नहीं, मन की खुशी है। बस हम अपने मन की खुशी को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगह पर त्योहार को मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन मूल भावना एक ही है। और वह मूल भावना क्या है बच्चों? वही हम सभी से प्रेम कर सके, एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांट सके। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं फसलों के त्योहारों पर। ये जो हम बातचीत करने जा रहे हैं आज, ये दरअसल एक घर में होने वाली बातचीत है। तो हम देखते हैं कि किसके घर में क्या हुआ। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहां तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना, आज ई लोग के उठे के नईके का, बोल जल्दी तैयार हो खस। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठांड हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, छक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुलके बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। पता है, उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के

छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। अरे आप क्या सोच रहे थे कि हम खिचड़ी खाने की बात कर रहे हैं? नहीं जी, हम तो खिचड़ी मनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जब खिचड़ी मनाते हैं तो खिचड़ी खानी पड़ती है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। पता है झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है आदिवासी किसकी पूजा करते हैं? आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गाँव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। एक और मजेदार बात होती है, मालूम है घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरे का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। पता है बच्चों, धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। और तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। क्या मालूम है आपको, इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। प्यारे बच्चों, हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है,
जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर

उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। पता है, यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पता है क्या कहते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया, इसके स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं, तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। प्यारे बच्चों, कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं पता है? कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। पता है कौन से आकार? जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। और पता है क्या गाते हैं? वे गाते हैं, कौआ आओ घुगुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने की घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी, ऐसे गाते हैं गाना। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। पता है बच्चों, लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? बच्चों, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अरे, आप कहाँ चल दिए? अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा है। अच्छा, तो आपका मन कर रहा है कि हम जल्दी से रसोई घर में जाएं और खीर पुए और जो पकवान बने हैं उन्हें खाने बैठ जाएं। और पता है, कुछ बच्चे तो जल्दी से जाना चाहते हैं छत पर, ताकि ढेर सारी पतंग उड़ाएं। पतंग को भी सुस्ताने का मौका दीजिएगा और आप पकवान मजे से खाइएगा। तो ये तो थे फसलों से जुड़े हुए हमारे त्योहार। आपको अब एक अंदाजा हो गया होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में फसलों से जुड़े हुए कौन कौन से त्योहार हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों, त्योहार अलग अलग तरीके से भले ही हम मनाते हैं, लेकिन हमारी भावना एक ही है। और इस एक अच्छी भावना के साथ एक और चीज है जो सब त्योहारों में एक जैसी है। वो क्या भला? वो है पकवान। अब चाहे कोई खिचड़ी बनाए, या कोई खीर बनाए, कोई मालपुए बनाए, या कोई कुछ भी बनाए, लेकिन पकवान तो जरूर बनते हैं। और उन्हें खाने में जो स्वाद आता है, बस पूछिए मत। और यह लगता है कि यह त्योहार हम साल भर यूं ही मनाते रहें। किस लिए? इसलिए ताकि हमें रोज नए नए पकवान खाने को मिले। तो प्यारे बच्चों, आपने ये भी जाना कि खिचड़ी मनाने में और खिचड़ी खाने में फर्क है। खिचड़ी मनाने का मतलब है कि हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, यानी कि हम खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है।

और इस खिचड़ी मनाने में हम खिचड़ी खाते भी हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे क्या ज्यादा पसंद करते होंगे, बच्चे खिचड़ी खाना ज्यादा पसंद करते हैं या खीर खाना पसंद करते हैं? भाई मैं तो खीर खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, खिचड़ी खाने में तो मुझे कोई मजा नहीं आता। वो क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि खिचड़ी में होता है नमक और हमें तो मीठा पसंद है, तो कुछ मीठा हो जाए के नाम पर हमें खीर बहुत पसंद है। और अलग अलग बच्चे अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग पकवान खाते हैं, और अगर पड़ोसियों के यहाँ से त्योहार के दिन निमंत्रण आ जाए तो क्या कहने, हम पड़ोसियों के यहाँ जाकर भी पकवान खूब खाते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, हमने अलग अलग प्रांतों में रहने वाले अलग अलग त्योहार उनके तरीकों के बारे में जाना, लेकिन इस पूरी बातचीत में एक और अच्छी बात है, वो ये बात है कि जब हम अपनी बात कहते हैं तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज ये लोग के उठे के नहीं के का, यानी कि एक खास तरह की भाषा है कि आज ये लोग उठे या नहीं। तो ये बात किसके लिए कही गई है? बच्चों के लिए। उठ के नहीं देते हैं बच्चे, कोई त्योहार हो कोई काम हो, इतना ही नहीं परीक्षा भी हो, उठने में अक्सर वे आनाकानी करते हैं, बस पांच मिनट करके करवट बदलते रहेंगे लेकिन उठेंगे नहीं। तो ये बात बच्चों के लिए कही गई है कि आज ये लोग उठे हैं या नहीं। आपने दूसरा वाक्य भी सुना होगा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, यानी कि जाओ भाग के देख कराओ केरा के पत्ते आ गए या नहीं आए। तो ये जो दो बातें आपने सुनी है इसे आप खुद अपनी भाषा में बोलकर देखिए। एक और बात है बच्चों, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। हमारे पास विविधता के और कई बड़े पैमाने भी हैं, जैसे हमारी भाषा अलग है, हमारे कपड़े अलग हैं, हमारे पहनने का सलीका अलग है, हम नया वर्ष भी अलग अलग समय पर मनाते हैं, हमारा भोजन भी तो एक जैसा नहीं है, हमारी लोक कला भी एक जैसी नहीं है और लोक संगीत भी अलग है। लोक संगीत से याद आया कि क्यों ना हम असम का बिहू सुन ले और गुजरात का भी लोक संगीत सुन लेते हैं, और लगे हाथ हम झारखंड और बिहार में गाए जाने वाले गीतों को भी सुन लेते हैं। तो तैयार हैं सारे बच्चे इस लोक संगीत का आनंद उठाने के लिए? मजा लीजिए लोक संगीत का।

0: तो मजा आया आपको लोक संगीत सुनने में? आप सबको अलग अलग भाषाओं के कुछ लोकगीत तो याद हो गए होंगे, है ना? अच्छी बात है। और मैं आपसे आज विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता

0: बढ़ रहा है और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
1: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
0: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
1: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
0: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोन्स्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
1: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
0: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
1: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
0: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास

0: बस वो तुड़ाई हो जाता है, दो से तीन उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो दो से तीन तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं, उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक भूटा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर, सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या
0: बुआई
1: अपना?
0: की विधि में, जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पछया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में वो
0: हाँ,
1: चयन कर
0: देखिए
1: सके।
0: जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हर एक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप चॉइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, Bio 9544 है, SKM 1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें, और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है।

0: वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास, क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पर अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है। उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है। नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है, तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो

0: प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है। और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है। उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने 2 दवा बताया, सिर्फ 2 ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवे का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को समर्पित यह गीत। ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और महेश को संहार करता कहा गया है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में आइए तो हमारे किसान बंधु को पालन करता क्यों नहीं कहा जाए? विश्व के समस्त प्राणी, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, धरती पर चलने वाला मानव हो या जल में विचरण करने वाला जीव जंतु, यदि किसान नहीं होते तो इनका अस्तित्व मिट जाता। तो आइए, इन किसान बंधु के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने काफ़ी हद तक प्रयास किया है, जिसको गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25

5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की

मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अरका निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फास्फोरस, पोटास या सल्फर की मात्रा में कम डालता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमज़ोर होता है और आपका पौधा भी कमज़ोर होता है। आप जो उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है, और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व तो कम है और कौन सा पोषक तत्व तो उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है आप लोग ज़्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको जितना ज़रूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालें तो कितना डालें, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वैरायटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे, अगर धान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो पोषक तत्व, उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं, तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए, और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टीलरिंग होता है, टीलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए, और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय, उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी

ಭಾರತ್ ಕೃಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्य

कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय, और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय, उसके पहले बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, मतलब पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें, तो इसके लिए हम लोगों को एक हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसको देना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, ये सब का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फास्फोरस पोटास दे देना चाहिए। और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है, और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत ज़रूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर भर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन भर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं, इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में, जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे, उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को एक हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है, जो कि हरी खाद में। और एक हुआ, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटास भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है, और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जो है फास्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज़ करेंगे तो हम

0: अब फास्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट भर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि तीन बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम तीन बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका तीन हफ्ता या चार हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिक इनिशिएशन, उसका पहले एक बार। तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फास्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए, लेकिन पोटास को अगर हम दो बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा जहाँ पर धान के बाद व्हीट, धान के बाद गेहूँ, धान के बाद गेहूँ करते हैं वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है, तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000-7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से

0: बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
2: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
3: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
4: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
5: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी साथी आरजे अनु। और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। साथियों, आज मैं आप बता दूं आपको कि हमारे साथ हैं संजय कुमार जी, और ये हैं सहायक प्राध्यापक कनीय वैज्ञानिक पौधा प्रजनन व अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और ये आपके लिए कुछ खास बातें भी लेकर आए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है
7: मसूर के उन्नत प्रभेद वैज्ञानिक खेती।
1: जैसा कि आज का हमारा विषय है मसूर के उन्नत प्रभेद व वैज्ञानिक खेती, तो इससे जुड़े कुछ सवाल मैं पूछूंगी डॉक्टर साहब से, और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके हमें उपाय मिल सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि मसूर की बुआई की उपयुक्त समय क्या होती है?
7: सबसे पहले मैं किसान भाइयों को, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को मसूर के उन्नत प्रभेद वैज्ञानिक खेती कैसे करें और किन किन बातों का ख्याल रखें उसके बारे में मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। तो मेरा पहला, मसूर की बुआई कब करें? सर, किसान भाइयों, आप लोग जैसा जानते हैं कि मसूर एक दलहनी फसल है जो कि रबी में उगाई जाती है। इसकी बुआई का सबसे उपयुक्त समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। अगर आप देरी तक पूरा नवंबर ले सकते हैं, लेकिन सबसे उचित समय जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है, जिससे आप बुआई करके आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं।
1: तो ये तो बात हो गई कि मसूर की बुआई, और इसके बाद बिहार के लिए हम खास तौर पर जानना चाहेंगे कि बिहार के लिए मसूर की अनुशंसित प्रभेद कौन कौन सी है?
7: हाँ किसान भाइयों, आप लोग जैसा जानते हैं कि जो है हमारा बीज जो है, तो बीज जो है किसी भी फसल के लिए मुख्य है। तो बीज वैसे जगह से खरीदें और जहाँ का आपको विश्वसनीय स्रोत हो, एवं प्रभेद जो है किसी भी फसल के लिए मुख्य रूप से है कि जो हमारे क्षेत्र में अनुशंसित प्रभेद हैं उसी को प्रभेद की बुआई करें। तो आइए हम जानते हैं बिहार के लिए हमें मसूर की कौन कौन

0: ये अनुशंसित प्रभेद हैं। पहले आप किसान भाइयों जान लें, समझ लें कि मसूर के जो है दो तरह की प्रजाति होते हैं। एक छोटे बीज छोटे दाने वाले होते हैं, एक बड़े दाने वाले। छोटे दाने जैसे कि उसमें 100 दानों का जो वजन है 2 से 3 ग्राम होता है, और बड़े दाने के जो बीज होते हैं 3 से 5 ग्राम के लगभग होते हैं। तो पहले हम छोटे दाने की प्रजातियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला प्रभेद है PL4 पंत लेंटिल 4, जो कि जिसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जा सकती है, और इसकी उपज क्षमता है 15 से 16 क्विंटल पर हेक्टेयर। और इसमें सबसे बड़ी खास विशेषता है कि रतुआ जो रोग होता है, उकटा रोग होता है, और मूल रूप से जो मसूर में लगने वाली बीमारी है जड़ गलन बीमारी, उसके रोग रोधी है एक किस्म। दूसरी किस्म है PL 406 पंत लेंटिल 406, इसकी बुआई 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक कर सकते हैं, जिसकी उपज क्षमता है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये जो है रतुआ रोग रोधी एवं उकटा के प्रति सहनशील है। तीसरी प्रजातियां हैं PL 639 पंत मसूर 639, जिसकी बुआई 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक कर सकते हैं, इसकी उपज क्षमता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये प्रभेद जो है रतुआ रोग उकटा रोग के प्रति सहनशील है। जो छोटे दाने में सबसे प्रमुख जो प्रभेद हमारे यहाँ बिहार में जो उगाई जाती है हल संतावन, जिसकी उपज क्षमता है 14 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, और रतुआ रोग का ये सहनशील है। अगला प्रभेद है KLS 218, जिसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं, इसकी उपज क्षमता 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका विशेष गुण रतुआ रोग रोधी है। इसी तरह छोटे दाने में आशा है, रंजन है, जिसकी उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल है। इसका विशेषता है कि इसकी जो फूल होते हैं उजले रंग के होते हैं। अब हम बड़े दाने की प्रजातियां के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। जैसे बड़े दाने में हमारे मुख्य रूप से IPL 406, जिसको अंगूरी नाम से जाने जाते हैं, ये जो है प्रभेद 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता 17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और रतुआ रोग रोधी के प्रति सहनशील है। दूसरी वैरायटी प्रभेद है बड़े दानों में IPL 316, जो कि 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता है 17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये भी जो है उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। इसी तरह PL 5 पंत मसूर 5, जो कि 130 से 135 दिनों में परिपक्व होती है, और इसकी उपज क्षमता है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और रतुआ रोग रोधी है। हमारे यहाँ की सबसे प्रमुख प्रभेद है अरुण PL 77-12, जो कि 125 से 130 दिनों में पककर तैयार होती है, इसकी उपज क्षमता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। नेक्स्ट प्रभेद है मल्लिका K75, जो कि 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। और बड़े दाने वाले प्रभेद में L 40-76, जो कि 130 से 135 से दिनों में पककर तैयार हो जाती है, इसकी उपज क्षमता है 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। इसी तरह प्रिया, जिसको DPL 15 कहते हैं, ये भी 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसके उपज क्षमता है, और ये भी प्रभेद जो है उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है।
1: जी,
0: सबसे प्रमुख प्रभेद और हैं जो बड़े दाने में आते हैं नरेंद्र मसूर।

0: एक, सेरी डीपीएल 62, जवाहर मसूर 3 और नूरी आईपीएल 81, जो कि उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है।
1: तो यहाँ पर हमने जाना कि प्रजातियाँ क्या हैं, प्रभेद कौन कौन से हैं मसूर की बिहार में खास तौर पर। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है कि हम बीज दर की मात्रा भी जानें। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि मसूर की बीज दर की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
0: किसान भाइयों, बीज का जो दर है, ये जो है हमारे, जब पहले आपको बताएं कि हमारे जो है दो तरह के प्रजाति होती हैं, छोटे दाने वाले और बड़े दाने वाले। छोटे दाने वाले के लिए जो है बीज की दर की मात्रा जो है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगाएंगे, और बड़े दाने के लिए 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर।
1: चलिए, तो ये बात हो गई कि बीज दर कितनी होनी चाहिए, और इसके बाद उर्वरक का भी इसमें खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा उर्वरक दे देते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
0: हाँ, किसान भाइयों, जैसा आप लोग जानते हैं कि मसूर एक दलहनी फसल है, इसमें जो है ज़्यादा मात्रा की उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए शुरू में जब फसल की बुआई हो तो एक बार में 20 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से नाइट्रोजन, 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस और 20 केजी पोटास और 20 केजी सल्फर की दर प्रति हेक्टेयर की दर से इसको बुआई के समय खेत में ही प्रिपरेशन के समय डाल दें।
1: जी, तो यहाँ तो ये बात हो गई कि उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखें, जितना यहाँ पर बताया गया है सिर्फ उतना ही उर्वरक डालें। इसके साथ ही पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं।
0: हाँ किसान भाइयों, ये बहुत ही आवश्यक बात है कि जो है पौधे की पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अधिक उपज के लिए और अच्छी फसल के लिए बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए इसके हमेशा जो है दूरी पौधे से पौधे और कतार से कतार एक मेंटेन रखना चाहिए, जिसमें कि इसकी उपज क्षमता अधिक हो। इसीलिए इसकी जो कतार टू कतार जो है दूरी जो है 25 सेंटीमीटर पर हो और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर पर हो तो अधिक पैदावार होगी, और इससे क्या होगा कि आपका फसल का क्षति जो रोग व्याधि से जो बचाव होगा, पौधे के प्रॉपर उचित रोशनी मिलेगी, जिससे कि रोग कीट का प्रकोप कम होगा।
1: जी, तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और इसके बाद रोग की बात हम करें, डॉक्टर साहब ने बताया कि रोग कम होगा, तो क्यों ना हम जान लेते हैं कि मसूर के कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, ताकि उन रोग को हम पहचान लें और उनका निवारण करें।
0: हाँ किसान भाइयों, ये जो है मसूर के लिए सबसे प्रमुख चीज़ है रोग। रोग जो है इसको कैसे बचाव करें और कौन कौन से रोग आते हैं, तो सबसे पहले मसूर के जो है प्रमुख रोग जो है उकटा है, जिसको कहते हैं किसान भाइयों सूखना, ये सबसे प्रमुख बीमारी है। और दूसरा है रतुआ रोग, जो कि टेम्परेचर या बारिश होने पर उसका फंगस जो है ग्रोथ करता है। तो उकटा रोग और रतुआ रोग, इसके बचाव के लिए अगर आप शुरू में इसकी जो है उपचार कर देंगे तो आपको जो है करीब करीब 80-90% तक आप रोग व्याधि से बचाव हो सकता है। इसके लिए आप किसान भाइयों पहले से प्रिपेयर रहें कि जैसे ही आप सोइंग करते हैं उसके पहले बीजोपचार कर लें। बीजोपचार के लिए सबसे पहले फंजीसाइड से करें, फफूंदी नाशक से करें, उसके बाद कीटनाशक से करें, उसके बाद राइजोबियम से, तब उसके बाद पीएसबी से करें, जिसमें फंजीसाइड फंगस जो फफूंदी नाशक होते हैं वो उकटा और रतुआ रोग के लिए अच्छी उपयोग करते हैं, बीज उपचार करते हैं। और जो है कीट व्याधि कीटों के लिए जो है फसल को बचाने के लिए जो है क्लोरोपाइरीफॉस 8 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचार करते हैं, उसके बाद जो है राइजोबियम से उपचार करने के बाद तब है जो हम किसान खेत पर बीज को बुआई करते हैं।
1: तो इसके बाद एक सवाल और हमारे दिमाग में आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पौधे से पौधे और पंती से पंती की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये

0: तो आप सभी ने जान लिया, लेकिन मसूर की औसत उपज क्या है ये भी जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो इसे भी बताएं।
1: हाँ किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अच्छी है, अगर अच्छी तरीके से बीज ने आपने बुआई की है, प्रॉपर डिस्टेंस दूरी पर लगाए हैं, अगर पौधे के कतार से कतार और पौधे की पौधी दूरी मेंटेन करने के लिए आपने सीड ड्रिल या जीरो टिलेज का उपयोग किया है, तो इसकी औसत उपज जो है 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर तक आप ले सकते हैं।
0: जी तो ये तो बात हो गई यहाँ पर मसूर की। अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि मसूर की आप बुआई कैसे कर सकते हैं, समय क्या होना चाहिए, इसके बाद प्रभेदों के बारे में बताया गया आप सभी को, बीज दर के बारे में बात हुई, उर्वरक की मात्रा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। तो मुझे लगता है कि इतना जानने के बाद यह काफ़ी उपयुक्त होगा इसकी वैज्ञानिक खेती को जानने के लिए आपको, और मसूर के उन्नत प्रभेद की बात यहाँ पर हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि आज के इस वार्ता से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और अगर आप मसूर की खेती करना चाहते हैं तो इन सारी बातों को आप ध्यान रख लें, अपने दिमाग में रख लें और ज़रूर इसे अपनाएं, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों के लिए इतना ही, आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। अगले दिन उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक और अलग विषय, खास विषय आप सभी के लिए हम लेकर हाजिर रहेंगे। इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना है कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें, ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार

0: हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हम

0: हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूंगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में

खोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम

पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करे। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करे। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक एक, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वॉच कार्यक्रम में। आज हम बातें करने वाले हैं किसी एग्जाम के बारे में नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि फलाना एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी कैसे करनी है या कुछ भी। आज हम पूरी तरीके से स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, छात्र जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों ये जो हमारी लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, खास तौर से छात्र का जो जीवन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस दौरान जो आदतें हम अपनाते हैं वही आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता तय करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की, यानी कि गोल सेटिंग की। दोस्तों अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है ना कि

आपने तय ही नहीं किया है कि आपको क्या करना है, तो कल आप किसी और चीज के लिए तैयारी करेंगे, कल आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है तो हम उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं ना। इसलिए सबसे पहले तो ये तय करना जरूरी होता है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर कुछ और भी। जब आपका लक्ष्य साफ हो जाता है तब आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाती है। इसलिए सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही ये तय कर लें कि आपको बनना क्या है, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की। समय जो होता है ना बहुत कीमती होता है। पैसा खो देंगे, कुछ भी खो देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, पर समय अगर एक बार चला गया ना तो वो नहीं मिलता। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने दिन की एक योजना बना ले, पढ़ाई के लिए समय तय करें, खेलने के लिए समय तय करें और आराम के लिए भी समय निकालें, क्योंकि आराम भी जरूरी है ना, सेहत भी तो जरूरी होती है ना। और अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंसिस्टेंसी की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज पढ़ाई की, 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन पांचवें दिन पढ़ाई की, उसके बाद फिर 3 दिन गायब, तो ऐसा उनके साथ होता है। लेकिन और ये क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं बहुत जोश से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और पढ़ाई खत्म। लेकिन आपको पता है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी, खरगोश बहुत तेज था दौड़ने में और कछुआ बहुत स्लो, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश ने क्या किया, वो रुक गया, चलता रुक जाता, चलता रुक जाता। और ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि कंसिस्टेंसी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। रोज पढ़िए, पर लगातार पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन बंद हो गया, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन बंद हो गया। ध्यान रखना है कि नियमित अभ्यास ही आपको मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं एकाग्रता की, ध्यान और एकाग्रता की। आज के समय में जब हमारे पास मोबाइल फोन है, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया एप्स हैं, गेम्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटकाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय इन सारी चीजों से आप दूरी बनाकर रखें, एक शांत जगह पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको फोन की आदत है या फिर सोशल मीडिया की आदत है, तो आपको लगेगा अगर उसने मैसेज कर दिया तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, फिर आगे क्या होगा, अरे किसी का फोन तो नहीं बज रहा होगा, गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगा या फिर गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगी, अरे ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई नया गेम आएगा या फिर सोशल मीडिया पे कोई नया पोस्ट, नई कॉन्ट्रोवर्सी या फिर फोन पर किसी दोस्त से गपशप, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको इन सारी चीजों से दूरी बनानी है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। पहले दिन आप 5 मिनट फोकस कर पाएंगे, अगर आपका फोकस बहुत खराब हो चुका है तो आप पहले दिन 5 मिनट फोकस करेंगे, अगले दिन 10 मिनट, इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी आदत और आपका फोकस बेहतर होता जाएगा। और एक दिन आप देखेंगे कि लगातार आपने 40-45 मिनट पढ़ाई कर ली है। लगातार 40 मिनट, 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई करनी होती भी नहीं है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 45 मिनट या 40 मिनट पढ़ाई की, ये होता है एक हेल्दी तरीका पढ़ाई करने का। लेकिन आज के टाइम पे फोकस बहुत मुश्किल से होता है, तो ध्यान रखें मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स, इन सारी चीज़ों से एक

0: और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है, और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से, और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं, तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें, ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
0: यस मैम। मैम अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
1: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है, या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है, तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
0: मैम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया हैं उसको और भी सरल बनाना, और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
0: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
1: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
0: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
1: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है, और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभ

0: प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
1: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
0: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे STSC उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
1: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
0: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहाँ से फंडिंग आएगा और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि PPT, PDF, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण के तरफ जाएंगे जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है। फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहाँ पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहाँ पे हमारा

0: लेखांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है, और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहाँ पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है, और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह 8 चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम, आपने 8 चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो 6 चरण से गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम 6 स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज, और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता 6 स्टेज होते हैं, 6 चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप।
1: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया, ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है?
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि

0: विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पे, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहाँ से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर बल्कि अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
1: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगे?
0: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से जो हमारे युवा वर्ग हैं उनसे यही मैं कहना चाहूँगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की एक नई दिशा देने की क्षमता है तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए, और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। TB के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। TB रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न TB, नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। TB मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: TB हारेगा देश जीतेगा।
6: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
7: कौन सी कहानी टीकी?
6: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
8: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
6: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार

0: पकड़ने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
1: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
1: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि।
3: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आपके लिए खेती से जुड़े अलग अलग विषय लेकर आती हूं। और आज भी बिल्कुल आपके लिए है ये विषय, धान में खरपतवार प्रबंधन। तो इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं आज डॉक्टर महेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। अब सबसे पहले तो अपने टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, विषय की ओर। धान की बुआई किन किन विधियों द्वारा की जा सकती है और किन किन विधियों से खरपतवार प्रबंधन हम कर सकते हैं, बताएं।
5: आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में धान की जो बुआई है या रोपाई है, वो मुख्य रूप से हम लोग दो विधियों से करते हैं। देखा जाए तो एक हम सीधी बुआई कहते हैं और दूसरा धान की जो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है, जिसमें हम धान की नर्सरी डालते हैं और उसके बाद रोपाई करते हैं
3: जी।
5: तो धान की हम सीधी बुआई करते हैं और दूसरा धान की रोपी विधि से करते हैं। तो अब दोनों में जो खरपतवार है, खरपतवार का अलग अलग स्पेसीज आती हैं। जैसे धान की जब हम सीधी बुआई करते हैं तो धान की सीधी बुआई में सबसे अधिक समस्या अगर किसी बात की है तो खरपतवार की है, क्योंकि तो सीधी बुआई में पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। हम इवन वर्षा जो आधारित खेती है उसमें भी हम धान की सीधी बुआई करके खरपतवार प्रबंधन करके धान की उपज ले लेते हैं। तो वर्षा का पानी कम होने से या सिंचाई का पानी उसमें कम देने से खरपतवार ज़्यादा उगते हैं। तो यूँ कहें कि धान की जो सीधी बुआई है उसमें सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की समस्या है तो वो खरपतवार की है। तो उसमें खरपतवार का ससमय प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा धान की रोपित विधि है। तो धान की रोपित विधि में चूंकि हम बिचड़ा डालते हैं, बिचड़ा 21 दिन का हो जाता है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पडलिंग करके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसमें खरपतवार थोड़ा कम आते हैं। तो इसलिए दोनों विधियों में खरपतवार प्रबंधन का जो तरीका है थोड़ा सा बदल जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे धान की जो सीधी बुआई है, सीधी बुआई में खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि धान की जो हम सीधी बुआई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, धान के खेत को तैयार कर लेते हैं, जैसे गेहूं का खेत तैयार करते हैं उसी तरह धान का खेत तैयार कर लेते हैं। 2-3 बार जुताई कर लेते हैं, पाटा लगाते हैं, खेत भुरभुरा हो जाता है। उसके बाद धान को हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर 20 सेंटीमीटर के कतारों में बुआई कर देते हैं जी। तो ये धान की सीधी बुआई हुई। दूसरी विधि है सीधी बुआई में, जहाँ हमारा वर्षा का पानी थोड़ा यदि अधिक मिल जाता है, किसी कारणवश खेत गीला हो जाता है, तो वहाँ पर हम जो हमारा धान की बुआई के लिए ड्रम सीडर आता है उसको हम अच्छे से पडल सॉइल में, पार्शियल पडल सॉइल में ड्रम सीडर में बीज भर करके 20 सेंटीमीटर की कतार को मेंटेन करते हुए बीज को गिरा देते हैं। तो चाहे धान की सीधी बुआई, चाहे ड्राई मेथड से हो, चाहे वेट मेथड से हो, धान में खरपतवार बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मिल जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सांवा है, सवई है, ये सब आ जाते हैं, और मोथा कुल के कुल 6 प्रकार के खरपतवार आते हैं। तो इस प्रकार हम कहें तो धान में करीब 100 से 150 प्रकार की खरपतवार आते हैं, लेकिन इनको जब हम 3 ग्रुपों में बाँटते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं और मोथा कुल के खरपतवार रहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो खरपतवार हैं, तीनों ग्रुप के जो खरपतवार हैं, वो बहुत ही

सक्रिय मात्रा में होते हैं और इनका ससमय प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि धान जब हम बुआई करते हैं सीधी, तो सीधी बुआई करने के तीन दिन, दो से तीन दिन के बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू होने लगता है और खरपतवार के बीज का भी जर्मिनेशन उसी के साथ साथ होने लगता है। लेकिन खरपतवार का ग्रोथ जो है, जो उनका वनस्पतिक विकास है, वो बहुत तेजी से होता है, इसलिए सीधी बुआई में ये समस्या आ जाती है कि खरपतवार तेजी से बढ़ जाते हैं, धान हमारा छोटा रह जाता है। तो इसमें ससमय खरपतवार प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम लोग सीधी बुआई के लिए एक बहुत प्रचलित हर्बिसाइड है जिसको हम बोलते हैं पेंडामेथिलीन, पेंडामेथिलीन का उपयोग करते हैं। लेकिन हमें वहाँ सावधानी देने की ज़रूरत है, अगर हमको पता है कि अगले 24 घंटे में या अगले 48 घंटे में बरसात होने वाली है तो पेंडामेथिलीन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पेंडामेथिलीन का हम प्रयोग कर देते हैं, पेंडामेथिलीन का जो हमारा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है, अर्थात 400 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ दवा लेकर के उसको 200 लीटर पानी में घोल करके हम लोग बुआई के 24 घंटे के भीतर खेत में छिड़काव कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये पेंडामेथिलीन एक बहुत बारीक लेयर बनाता है जमीन पर, और जो ही खरपतवार उगने लगते हैं और उस लेयर को टच करते हैं वो मर जाके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अगर हम पेंडामेथिलीन आज छिड़के हैं और 48 घंटे के भीतर बरसात हो जाती है, तो वो पेंडामेथिलीन बरसात के पानी के साथ घुल करके बीज के टच में आ जाता है, क्योंकि बीज हम दो से ढाई सेंटीमीटर की गहराई पर ही उथला बीज बोते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर, तो बीज के टच में आने से बरसात के पानी के साथ वो बीज का अंकुरण भी खराब कर देता है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी देना पड़ता है कि पेंडामेथिलीन का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन अगर हमको मौसम विभाग से अलर्ट मिला हुआ है कि अगले 48 घंटों में बरसात होने वाली है, तो उस कंडीशन में पेंडामेथिलीन का प्रयोग न करें। तो अब पेंडामेथिलीन का प्रयोग कर भी सकते हैं और रेनी सीजन होने की वजह से बरसात का अगर आगमन होने वाला है तो आप न भी करें, तो उसके लिए हम फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन रखते हैं कि हमको बुआई के 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई हर्बिसाइड चाहिए। तो अगर पेंडामेथिलीन का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आप देखेंगे कि खेत में बुआई के 8 से 10 दिन बाद ही बहुत ज़्यादा खरपतवार आ जाते हैं जी। तो ऐसे केस में आप मार्केट में उपलब्ध है पाइरजोसल्फुरान, पाइरजोसल्फुरान का जो ब्रांड नेम है, बहुत से कंपनियों के अच्छे ब्रांड ही लिया जाए, चाहे टाटा का हो, चाहे सिंजेंटा का हो, चाहे एक्सेल वालों को, किसी का भी हम कंपनी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अच्छे ब्रांड का लिया जाए जिसमें उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो। तो पाइरजोसल्फुरान नामक केमिकल, उसका जो कि अगर हम 8 दिन पर दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली पोस्ट इमरजेंस, 8 दिन पर दे रहे हैं तो हमें डोज थोड़ा कम करना पड़ता है, तो उसमें केवल 10 ग्राम सक्रिय तत्व, चूँकि ये आता है 10% का, इसलिए अधिक से अधिक 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रोडक्ट लगेगा, जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसकी मात्रा 100 ग्राम हो जाएगी। तो हमने कहा कि पाइरजोसल्फुरान 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर देना है, अर्थात 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़। तो इससे क्या होगा कि जो 8 से 10 दिन पर जब हम इसको देते हैं तो 200 लीटर पानी में घोल करके, जैसे 4 ग्राम हमने पाइरजोसल्फुरान बताया और 200 लीटर पानी में घोल लिया जाए और उसको प्रति एकड़ बुआई के 8 से 10 दिन बाद छिड़काव कर दें, तो इससे जो जमे हुए खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम 20 से 25 दिन पर जब खरपतवार का प्रेशर दोबारा आ जाता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस। तो पोस्ट इमरजेंस के रूप में हमारे पास बहुत सी अच्छी रासायनिक दवाएं हैं, जिसमें पहला आता है बिसपाइरीवेक सोडियम। बिसपाइरीवेक सोडियम जो है ओडीसी के नाम से भी आ रहा है और नामनी गोल्ड के नाम से भी आ रहा है और बहुत से नाम से आ रहा है। तो बिसपाइरीवेक सोडियम का जो सक्रिय तत्व है वो कहते हैं 30 से 35 ग्राम हमें लेना है। बिसपाइरीवेक सोडियम 30 से 35 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत पड़ती है, अर्थात एकड़ में अगर हम बात करें तो 12 से 14 ग्राम सक्रिय तत्व बिसपाइरीवेक सोडियम का लिया जाए। बिसपाइरीवेक सोडियम का 12 से 14 ग्राम सक्रिय तत्व लिया जाए और इसको 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से बुआई के 20 से 25 दिन पर छिड़काव करें। ध्यान रखना होगा कि उस समय छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए जिससे कि दवा अच्छे से काम कर सके। तो इससे क्या होगा कि धान के जो विभिन्न प्रकार के सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, मोथा कुल के खरपतवार हैं एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, लगभग 80% तक

खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम विष पारिवेक सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश धान की सीधी बुआई में विष पारिवेक सोडियम की उपलब्धता न हो या बाजार में नहीं मिल रहा हो तो वहाँ पे आप पायरजोसल्फुरान ले सकते हैं। पायरजोसल्फुरान जो 8 दिन पर उपयोग किए थे वही पायरजोसल्फुरान आप 20 से 25 दिन पर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए उसका मात्रा जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो पायरजोसल्फुरान जो रसायन है उसका 20 ग्राम सक्रिय तत्व, देखिए किसान भाइयों हम सक्रिय तत्व की बात कर रहे हैं, मतलब 20 ग्राम जो पायरजोसल्फुरान होगा 100% केमिकल होगा। 20 ग्राम पायरजोसल्फुरान लिया जाए या प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, अथवा 8 ग्राम पायरजोसल्फुरान प्रति एकड़, अगर एक एकड़ में देना है तो 8 ग्राम पायरजोसल्फुरान लिया जाए, उसको 200 से 250 लीटर पानी में घोल लिया जाए और प्रति एकड़ की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे भी वही होगा कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं और मोथा कुल के खरपतवार, ये सभी लगभग 80 से 85% तक जो है नष्ट हो जाते हैं। इनका कम्बिनेशन अगर हम दें विष पारिवेक सोडियम और पायरजोसल्फुरान का तो ये भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि 20 ग्राम आपको पायरजोसल्फुरान लेना है और 30 ग्राम सक्रिय तत्व लेना है विष पारिवेक सोडियम का, दोनों को मिश्रित करके आप प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, तो इससे जो है जो भी आपके खरपतवार हैं वो लगभग 90% तक खत्म हो जाते हैं। जो 10% खरपतवार बच जाते हैं किसी कारणवश वो धीरे धीरे धान इतना बढ़ जाता है कि उसको अपने आप सप्रेस करके दबा देता है। तो इस प्रकार से धान की जो सीधी बुआई है इसमें खरपतवार के रासायनिक प्रबंधन द्वारा हम खरपतवार को प्रबंधित कर सकते हैं, जिसके लिए हमने आपको किसान भाइयों आपको हमने बताया कि बुआई के 24 घंटे के भीतर आपको पेंडीमेथिलीन देना है, पेंडीमेथिलीन का जो डोज बताया गया 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व देना है प्रति हेक्टेयर की दर से, अथवा 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। फिर हमने बताया कि अगर किसी कारणवश आप पेंडीमेथिलीन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आप पायरजोसल्फुरान नामक रसायन लें, उसका 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर देना है या 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ देना है और पानी में घोल करके उसको छिड़काव करना है। उसके बाद 20 से 25 दिन पर एक हर्बिसाइड जरूर देना है। बेहतर होगा कि आप पायरजोसल्फुरान सक्रिय तत्व 20 ग्राम लें और आप विष पारिवेक सोडियम सक्रिय तत्व 30 ग्राम ले लें, दोनों को मिक्स करके प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल करके 20 से 25 दिन बाद बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने धान के खरपतवार हैं वो लगभग 80 से 85% नियंत्रण में आ जाते हैं और आपको बहुत राहत मिलती है खरपतवार प्रबंधन में। दूसरी विधि हमने बताया धान की रोपित विधि, क्योंकि धान में जब हम रोपित विधि करते हैं तो इसमें हम पडलिंग करते हैं, पडलिंग करते हैं तो उसके लिए हम पानी में कल्टीवेटर 2-3 बार चलाते हैं और मिट्टी को, कल्टीवेटर चलाने से मिट्टी उसमें पडल्ड हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, तो जो खरपतवार उसमें उगे रहते हैं वो ऑलरेडी सड़ गल के नष्ट हो जाते हैं। और चूंकि पडलिंग मेथड्स में फिर हम धान की रोपाई के बाद भी अगर 1 से 1.5 इंच पानी स्टैंडिंग मोड में रखें खेत में अगले 20 दिन तक तो खरपतवार आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि पानी एक प्राकृतिक हर्बिसाइड है। अगर खेत में आपका 1 इंच खड़ा पानी लगा हुआ है रोपाई के 20 दिन तक तो आपके खेत में खरपतवार आएगा नहीं, लेकिन चूंकि वाटर बहुत ही कास्टली इनपुट है, स्टैंडिंग वाटर रखना आज के डेट में बहुत अच्छी बात नहीं है, तो वहाँ पर फिर हमें रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम यांत्रिक विधियों की बात करें तो पडल राइस में कोनोवीडर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम राइस में, राइस के कतारों के बीच में पडल्ड कंडीशन राइस है तो उसको कतारों के बीच में बुआई के रोपाई के 20 से 25 दिन बाद चला करके खरपतवारों को हम उसी जमीन में गाड़ देते हैं। तो कोनोवीडर का प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण हेतु। उसके बाद रासायनिक विधियों की अगर हम बात करें तो धान की रोपाई के ठीक 2 से 3 दिन के भीतर हम लोग प्रिटला क्लोर का यूज करते हैं, ब्यूटा क्लोर अथवा प्रिटला क्लोर, दोनों का 1 से 1.25 लीटर सक्रिय तत्व

0: प्रति हेक्टेयर लगता है। एक हेक्टेयर में आपको एक लीटर सकृतत्व लगेगा, क्योंकि प्रिटला क्लोर 50 cc का आता है, तो इसका जो प्रोडक्ट बाजार का आएगा वो 2 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 50% वाला है तो 2 लीटर लग जाता है। तो आप ध्यान रखें कि प्रिटला क्लोर जो सक्रिय तत्व है वो 1 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर यूज करना है, प्रयोग करना है, और रोपाई के 2 दिन के भीतर इसको आवश्यकता अनुसार 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाए, और रोपाई के 2 दिन के भीतर जो है खेत में अच्छे से छिड़क दिया जाए, जिससे अगले 10 दिन तक जो खरपतवार उग रहे हैं वो उगने नहीं पाएंगे और जल के नष्ट हो जाएंगे। अब रोपाई के 20 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद फिर खरपतवार का बहुत ज़्यादा जमाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसको हमें रोपाई से लेकर के करीब 35 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना होता है। अगर रोपाई से लेकर के 35 दिनों तक हम खरपतवार मुक्त रखते हैं तो हमारा यील्ड में निश्चित तौर पर 20 से 30% तक का बढ़ोतरी हो जाता है, अदरवाइज खरपतवार के प्रेशर से हमारा उत्पादन घट जाता है। तो अब रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अगर हमें खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करना है तो वहाँ पे हम पायरोसल्फ्यूरान जो रासायनिक दवा है, पायरोसल्फ्यूरान का 20 ग्राम सक्रिय तत्व लेंगे और उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देंगे, तो जो भी खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती वाले हों या सक्रिय पत्ती वाले हों या मोथा कुल के हों, वो लगभग 80 से 85% तक खरपतवार मर के नष्ट होते हैं। बशर्ते ध्यान रखना होगा कि जब हम छिड़काव करें उस समय हमारे खेत में खड़ा पानी न लगा हो, वो खेत उसमें थोड़ा नम रहे लेकिन पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। तो पायरोसल्फ्यूरान का हमने बताया 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल करके रोपाई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, आप 20 पायरुवेट सोडियम भी यूज कर सकते हैं। 20 पायरुवेट सोडियम का 35 से 40 ग्राम मात्रा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करें, जिससे आपका खरपतवार 80 से 85% तक नष्ट हो जाते हैं। तीसरी विधि में आप दोनों दवाओं को मिक्स कर सकते हैं, जिसके लिए पायरोसल्फ्यूरान आप 20 ग्राम लीजिए और 20 पायरुवेट सोडियम का मात्रा 25 ग्राम रख लीजिए, 25 ग्राम 20 पायरुवेट सोडियम, 25 ग्राम सक्रिय तत्व 20 पायरुवेट सोडियम का, और 20 और पायरोसल्फ्यूरान का जो सक्रिय तत्व है वो 20 ग्राम रखिए, और दोनों का मिश्रण आप 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद आप अगर दे देते हैं तो इससे खरपतवारों में बहुत हद तक कमी आती है, लगभग 80 से 85% तक खरपतवार को नियंत्रण में कर लेता है और आपकी धान की फसल खरपतवार मुक्त हो जाती है। इस प्रकार आप धान की चाहे रोपित विधि हो चाहे धान की सीधी बुआई हो, इसमें खरपतवार प्रबंधन करके किसान भाई आप अपने धान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, समेकित खरपतवार प्रबंधन कैसे करेंगे?
0: देखिए, जब समेकित की बात करते हैं तो इसमें हमें खरपतवार प्रबंधन के लिए जो भी हमारी विधियां हैं, दो या दो से अधिक विधियों को अगर हम लाते हैं तो उसको समेकित खरपतवार प्रबंधन कहते हैं। जैसे हमको धान की सीधी बुआई करना है तो निश्चित तौर पर हम पहले से अलर्ट रहें, गर्मी की गहरी जुताई कर दें। ध्यान रखिएगा, धान की सीधी बुआई करना है तभी गर्मी की गहरी जुताई करें, अगर रोपाई करना है तो गर्मी की गहरी जुताई न करें, क्योंकि उससे आपका केज व्हील उसमें धंस जाएगा और दिक्कत आ जाएगी। तो धान की सीधी बुआई करना है तो उसमें समेकित में हम सबसे पहले गर्मी की गहरी जुताई करेंगे, जिससे जो पेरेनियल खरपतवार हैं या जो सीजनल खरपतवार के बीज हैं वो करीब 30 से 35 सेंटीमीटर गहराई पर चले जाते हैं, 1 फीट गहराई चलते हैं, वहाँ जमाव उनका नहीं हो पाता है। तो 50 से 60% जो खरपतवार के बीज बैंक हैं वो ऑलरेडी उनका जमाव बाधित हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यांत्रिक विधि में हम चाहे तो ड्राई लैंड बीडर या कोनो बीडर का प्रयोग करके धान की रोपाई के 20-22 दिन बाद कतारों में के बीच में हम उसको चला करके खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। और तीसरा विधि जो मुख्य विधि है, कारगर है, रासायनिक मेथड। रासायनिक मेथड जैसा हमने भी पहले बताया, सीधी बुआई के लिए हमने बोला कि आप पेंडी मिथिलीन ले सकते हैं, उसके बाद आप रिटला जो है पर जो सल्फुरान ले सकते हैं,

0: या आप इस पर एक सोडियम ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से समेकित कृषि, समेकित खरपतवार प्रबंधन अगर रोपित धान में करना है तो इसमें हमें कोनो बीडर का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद रासायनिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, और पानी को भी उसमें रोपाई के से लेकर के 20 दिन तक स्टैंडिंग मोड में रखें 1 इंच पानी, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से समेकित का मतलब ही है कि हम दो या दो से अधिक विधियों को एक साथ उपयोग में लाएं जिससे खरपतवार थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रूप में नियंत्रण में आ सके।
1: जी, तो किसान भाइयों यहाँ पर आपने जाना धान में खरपतवार प्रबंधन जो विधियाँ हैं वो बताई डॉक्टर साहब ने आपको। तो आशा करते हैं आप भी इस प्रकार अगर डॉक्टर साहब की बातों को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो आप अच्छे से धान में खरपतवार प्रबंधन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इस फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर किप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर

0: से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम और इसमें बातें होती हैं खेती बाड़ी की और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आज एक खास विषय हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए। हम आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे बिहार में इनकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएँ हैं। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: मैम। नींबू वर्गीय फलों के बारे में और हमारे श्रोताओं को आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे कम लोग जो है नींबू वर्गीय इस वर्ग में कौन कौन से फल आते हैं नहीं जानते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है उनके बारे में भी बताएं।
1: सही कहा, नींबू वर्गीय फलों में खास करके मौसमी, संतरा, गागर नींबू, पूर्वी नींबू, कागजी नींबू इत्यादि प्रमुख है। लेकिन किसान भाई इसको लगाते हैं, किचन गार्डन के रूप में लगाते हैं, किचन में एक दो पौधा लगाते हैं, लेकिन बिहार में देखें तो इसकी व्यावसायिक खेती उतना प्रचलन में नहीं है। जबकि नींबू की खेती के लिए बिहार का जलवायु काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ अगर व्यावसायिक खेती की जाए तो किसान भाई को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बिहार में नींबू की खेती प्रचलित है, यहाँ संतरा और मौसमी की खेती की जा सकती है, जैसे कि पंजाब में होता है, महाराष्ट्र में मौसमी होता है, पंजाब में किन्नू होता है जिसको संतरा बोलते हैं, तो यहाँ भी वैसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई अभी इसके प्रति उतना अवेयर नहीं है, उतना नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको अभी उतना व्यावसायिक तौर पे अपना नहीं रहे हैं
0: जी।
1: अब इसकी बात करें कि इससे क्या क्या बन सकता है। इसको हम लोग एक तो फ्रेश खाते हैं, संतरा कहें तो उसको छिलकर खाते हैं, नींबू कहें तो आपका दाल में गाड़ के खाते हैं, उसका सलाद में डाल के खाते हैं, चाय बनाकर पीते हैं, इसका अचार भी बनता है, चटनी बनता है, स्क्वाश बनता है, आरटीएस बनता है। इसका छिलका जो है उसमें काफ़ी ऑयल होता है, तेल होता है, तो इसको अगर हम व्यावसायिक तौर पे करें तो फैक्ट्री वाले इसके छिलका को भी ले जाएंगे, अपना ऑयल निकालेंगे, तो इस तरह से इसका बहुत सारा यूज है, बहुत सारी उपयोगिताएँ हैं।
0: तो यहाँ पर आपने नींबू वर्गीय फलों के बारे में जाना और ख़ास तौर पर मैम ने बताया कि अभी फ़िलहाल बिहार में जो लोग हैं इसे व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अभी कम जानकारी है। तो मैम इसकी कौन कौन सी किस्में जो हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं?
1: इसकी जो है इसको हम वर्गीकरण इसका करना बहुत ही कठिन है। छोटा फल से लेके बहुत बड़ा बड़ा फल होता है। छोटा फल कहें तो जैसे कि कागजी नींबू है, बहुत छोटा होता है, और बड़ा कहें तो आप देखते हैं चकोतरा है जिसको कि डावा नींबू कहते हैं, छठ पर्व में चढ़ता है। तो इसका अगर हम वर्गीकरण करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन होता है इसका वर्गीकरण। जैसे कि आम है तो आम ही है, लेकिन नींबू के केस में क्या है कि फल का जो साइज में भिन्नता बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्गीकरण थोड़ा कठिन होता है। अब संतरा की बात करें तो संतरा को हम लोग छिल कर खाते हैं, यानी कि पौधा में ही फल पक जाता है, उसको तोड़ते हैं और छिलका छिलकर हम लोग खाते हैं। जैसे कि फरवरी में इसका मेन फसल आता है, हार्वेस्ट होता है, आप देखती होंगी कि ये होली के टाइम में बहुत अधिक संतरा रहता है बाजार में, और इतना रहता है कि 100 रुपीज़ में 3 kg 3-4 kg तक दे देता है रिटेलर। तो ये बहुत अधिक उपज देता है संतरा। संतरा में वैरायटी है, ये वर्ग हुआ संतरा, जैसे बोले कि वर्गीकरण करना काफी कठिन है, तो संतरा एक वर्ग हुआ। उसी तरह से एक नारंगी वर्ग होता है, कागजी नींबू वर्ग होता है, तो इसका वर्गीकरण बहुत है। तो संतरा में अगर हम वैरायटी की बात करें, किस्म की बात करें, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट किस्म है, मुख्य है किन्नो, जो कि हम लोग यहाँ भी लगाए थे बिहार कृषि विश्वविद्यालय।

0: नारंगी की बात करें तो इसमें सभी किसान भाई जानते हैं कि बाजार में मौसमी बहुत बिकता है, सभी लोग बच्चे बच्चे बड़े आदमी सभी लोग जानते हैं मौसमी। और इसका जूस, खास करके इसका हम लोग
1: बहुत
0: जूस
1: ज्यादा इस्तेमाल।
0: निकाल कर पिया जाता है। क्यों पिया जाता है? क्योंकि इसका छिलका जो होता है आप हाथ से नहीं हटा सकते हैं, छिलका काफ़ी उसका जो जूसी पार्ट रहता है अंदर में वो उससे सटा हुआ रहता है, वो इजीली अलग नहीं होता है, उसको चाकू से अलग करना पड़ता है। यही सब इसका, इसीलिए इसको वर्गीकरण किया गया। संतरा अलग है, हम छिलके खाते हैं, लेकिन नारंगी में किस्म है जैसे हेमलिन है, मौसमी है, ब्लड रेड है, जाफा है, बहुत सारी वेराइटी किस्में हैं। तो इसको हम लोग छिल कर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइट स्किन, यानी कि वो सटा रहता है, गूदा से सटा हुआ रहता है। तो उसको
1: अच्छा,
0: चाकू से छिल करके फिर उसका जूस निकाल कर लोग पीते हैं। इसलिए कहता है कि मौसमी का जूस, मौसमी का जूस मार्केट में बहुत मिलता है।
1: जी,
0: अब बात करें कागजी नींबू की, तो कागजी नींबू क्या है कि इसको हम लोग जैसे कि सलाद में डालकर खाते हैं, या चाय बनाकर पीते हैं, या दाल में डालकर खाते हैं, मतलब इसको हम लोग
1: रस
0: इसके
1: जो।
0: रस को यूज करते हैं खाने में, और इसका अचार भी बना सकते हैं। कागजी नींबू का ही हम लोग अचार भी बनाते हैं। तो ये पुराना है, घर में लोग अचार बनाकर रखते हैं, ये बहुत ही एपेटाइजर का काम करता है। इसको खाने से पेट का दर्द का ठीक हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ जाता है। तो इसके फल से अचार, शरबत, साइट्रिक एसिड इत्यादि बनाया जा सकता है।
1: जी, तो किसान भाई, यहाँ पर किस्मों की बात आपने यहाँ पर आपको बताई गई, जिसमें कि वर्गीकरण के बारे में मैम ने आपको बताया। मैम, पौध तैयार, जब खेती की ओर जाते हैं तो पौध तैयार की बात सबसे पहले की जाती है, तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई?
0: हम पौध तैयार करने की का बहुत सारा विधि है, जैसे कि कलम विधि से भी कर सकते हैं। कलम विधि क्या है कि आप जो सूट होता है, जो तना होता है, परिपक्व तना, जैसे कि ब्राउन जिसको हो जाता है तना, उसको परिपक्व कहते हैं। अर्ध परिपक्व, जैसे कि हरा हरा ही है तना और उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश भी आ गया है, तो उसको अर्ध परिपक्व कहते हैं। और तीसरा है मुलायम, कि हरा ही है तना, हरा है। तो तीनों का कटिंग करके हम इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। किसी इसमें क्या है कि 15 से 20 सेंटीमीटर काटते हैं, और 3 भाग को सॉइल में डालना है, मिट्टी में डालना है, एक भाग ऊपर रहेगा मिट्टी से ऊपर। और ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए इस कार्य को, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो जून जुलाई में वर्षा का सीजन है हम लोग के जगह यहाँ, तो जून जुलाई में करने से सक्सेस अच्छा होता है। किसान भाई इसको मार्च अप्रैल या फरवरी, फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं, जहाँ की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। अगर कटिंग हम लगाते हैं तो फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं, और सिंचाई करते रहेंगे तो उसमें भी सक्सेस होता है। और है गूटी बांधना, आप देखेंगे कि गूटी पौधा में ही मिट्टी ले जाकर बांधते हैं और उसको पॉलीथीन से रैप करते हैं, फिर 20-25 दिन के बाद उसमें जड़ आता है, उसको काट कर अलग कर लिया जाता है, और फिर पॉटिंग करके कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसके जड़ का ग्रोथ अच्छा हो। जब जड़ का ग्रोथ अच्छा हो जाता है तब उसको मेन फील्ड में लगाता है। और है चश्मा मेथड, चश्मा मेथड उसको बोलते हैं बडिंग, यानी कि बडिंग मेथड से भी इसका प्रवर्धन करते हैं। ये भी अगस्त सितंबर में इसका अच्छा देखा गया है, और हम लोग के कंडीशन में दिसंबर में और फरवरी मार्च में इसका जो है चश्मा मेथड या वेज ग्राफ्टिंग भी हम लोगों ने किया है। वेज ग्राफ्टिंग में भी ये अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, 80% सक्सेस आता है, और ये इसको हम लोग दिसंबर में और फरवरी मार्च में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि मूल वृंत का जरूरत पड़ता है, मूल वृंत जिसको बोलते हैं कि नीचे का जो रूट स्टॉक बोलते हैं, जिस पर कि हम लोग ग्राफ्ट करते हैं पौधा को, उसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक या मूल वृंत हिंदी में बोलते हैं। तो इसका अलग वेराइटी होता है। इसको क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मूल वृंत होता है, रूट स्टॉक होता है, वो काफ़ी हार्डी होता है। तो तो वो बीमारी से बचाता है, वे जलवायु से बचाता है, एडवर्स सिचुएशन जो जलवायु का होता है, प्रतिकूल स्थिति जैसे हवा, वर्षा, आंधी, तूफान, उससे ये जो मूल ब्रिंथ है, रूट स्टॉक है, वो पौधा को बचाता है। इसलिए रूट स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, जंभीरी है, जट्टी खट्टी है, करना

0: खट्टा है, बहुत सारा रूट स्टॉक है, उसको प्रयोग में लाने से पौधा का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है।
1: तो इस प्रकार किसान भाइयों, अभी आपने पौध तैयार की जो विधि है वो जानी, और मैम इसके बाद ज़रूरी है इसकी खेती में या फिर किसी भी फसल की खेती में कि खाद हम कितनी मात्रा में दें, कौन से खाद दें, सिंचाई कब करें, कटाई छटाई कब करें, पौध रोपण कब करें, कैसे करें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नींबू वर्गीय फलों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए इन सभी चीज़ों को कैसे करना चाहिए?
0: हम जैसे पौध रोपण की बात करें तो जैसे सब फल वृक्ष का पौध रोपण करते हैं, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, फिर गड्ढा बनाना, तो ये कार्य जो है अप्रैल मई में हम लोग कहते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को तैयार करने के लिए अगर अप्रैल मई में जुताई उसकी की जाए और जुताई कर कर 10 दिन 15 दिन छोड़ दिया जाए तो उसमें जो कीड़े हैं वो जो जो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट को वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अप्रैल मई में ज़मीन की जुताई करनी चाहिए, उसके बाद फिर पाटा चलाकर 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बना लेना चाहिए। गड्ढा हम देखिए नींबू का हम शुरू में ही बोले कि इसका वर्गीकरण अलग होता है, इसका पौधा का साइज भी सबका अलग अलग होता है, तो हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं, अब डवा नींबू लगा रहे हैं या कागजी नींबू लगा रहे हैं या संतरा लगा रहे हैं या मौसमी उस अनुसार से उसका लेआउट करना पड़ता है, यानी कि पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी हम लोग उसी अनुसार से रखते हैं जो हम लोगों ने सोचा है कि हमको ये लगाना है, उसी
1: जी
0: अनुसार से करते हैं। जैसे आप मौसमी के केस में 5 मीटर आप रख सकते हैं पौधा से पौधा और कतार से कतार। संतरा आप लगाएंगे ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके लिए 6 मीटर है, और महानींबू है उसके लिए 7 मीटर है, अब चकोतरा है जिसको कि डाभा नींबू को बोलते हैं इसके लिए 8 मीटर, इसका पौधा और बड़ा होता है। तो इस अनुसार से हम लोग कहते हैं कि प्लांटिंग डिस्टेंस आप बना लीजिए और ले आउट कर लेना है। उसके बाद गड्ढा खोद कर उसमें 40 किलो गोबर की खाद, 2.5 किलो हड्डी का चूरा और 1 किलो राख 3 टोकरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। गड्ढा भरने के बाद एक बारिश कम से कम जरूर होना चाहिए, पौधा लगाने से पहले एक बारिश हो जाए जिससे कि गड्ढा का मिट्टी जो है जो हम भरे हैं वो अच्छी तरह बैठ जाए। फिर उसको लेआउट करके जहाँ बीच सेंटर पे जहाँ पौधा लगाने का जगह है वहाँ पर पौधों को लगा देना चाहिए। ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए, पौधे लगाने का कार्य जून जुलाई में करना चाहिए जब बरसात शुरू हो जाता है।
1: जी
0: अब खाद की बात करें तो पहला वर्ष आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो अनुपात है 75 ग्राम 40 ग्राम और 75 ग्राम रखना चाहिए, और ये अनुपात हर एक साल बढ़ते जाएगा। जैसे 75 ग्राम पहली साल था नाइट्रोजन तो दूसरे साल 150 ग्राम होगा, फिर तीसरे साल 225 ग्राम होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 10वें साल में नाइट्रोजन की मात्रा 750 ग्राम होगा और फास्फोरस की मात्रा 400 ग्राम होगा और पोटास की मात्रा 750 ग्राम होगा। ये 10वें वर्ष में देना है पौधा को, और यही जो खाद की मात्रा है यही हर एक वर्ष अब पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि पौधा मेरा मैच्योर हो गया है, अब उसको इतना ही भोजन हर एक वर्ष चाहिए। इसके अलावे हम लोग कहते हैं कि खाद FYM जो होता है सड़ी हुई गोबर की खाद 50 किलो प्रति पौधा देते रहना चाहिए। अब सिंचाई की बात करें तो गर्मी के दिन में वीकली इंटरवल पे सिंचाई करना चाहिए, यानी सप्ताह में एक बार, और जाड़ा में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए।
1: जी
0: अब निकाई गुड़ाई की बात है तो वो तो बरसात के समय में घास बहुत निकल आता है तो उसका बीच बीच में सफाई होते रहना चाहिए जिससे कि मेरा जो मेन क्रॉप है नींबू का वो अच्छा रहे। अगर अधिक घास रहेगा तो उससे बीमारी और कीड़ा का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। अब कटाई छटाई की बात करें तो नीचे 30 से 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर कोई तना नहीं रखना चाहिए। जैसे पौधा हम लगाए तो 40 सेंटीमीटर मेरा फ्री रहना चाहिए, क्योंकि हम बाद में गड्ढा के चारों ओर खाद डालेंगे, वो सब कार्य करने में हमको आसानी होगा। निकाई गुड़ाई करेंगे तो वो सब कार्य करने में, अगर नीचे से ही मिट्टी के सतह से ही अगर दूसरा

0: सूट निकल जाएगा, तना निकल जाएगा। तो जो निकोनी गरोनी का जो कार्य है, खाद पानी देने का जो कार्य है, वो बाधित होगा। तो इस तरह से कटाई छटाई करनी चाहिए।
1: जी, तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने पूरी जानकारी पाई कि कैसे आपको पौधरोपण करना है, खाद आपको कैसे देना है, सिंचाई, कटाई छटाई, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। और अब अंत में बात करते हैं फलों की तुड़ाई और उपज के बारे में। मैम, तो ये भी बता दें कि क्या मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को उपज।
0: फलों को तोड़ना, जैसे कि अब जब फूल लगता है नींबू में, उसके 6 से 9 महीने बाद फल तोड़ने लायक हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी और कौन सा नींबू हमने लगाया है। तो इस तरह से, और जब फल सेट होता है, जब पकने की स्थिति में होती है, जब मैच्योर होने की स्थिति में होती है, तो कलर का, उसका फल का जो कलर है, थोड़ा चेंज होता है। ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा किस्म है। सभी
1: जी
0: का फल जो है पीला पूरा नहीं होता है, तो किसी किसी में हरा ही रहता है, थोड़ा लाइट ग्रीन रहता है, थोड़ा सा किसी में अधिक पीला होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी वेराइटी है। अब उपज की बात करें तो नींबू वर्गीय फल वृक्ष से 5 से 8 वर्ष में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। तो फलों का उत्पादन जाति, उसके जाति, किस्म, बाग की देखरेख और जलवायु पर निर्भर करती है। एक अच्छे माल्टे से, माल्टे के पौधे से 500 करीब फल प्राप्त होता है। प्रति पेड़ 500 फल मिलता है। संतरे, संतरा की बात करें तो 1000 से 150, 1500 फल प्रति पेड़ मिलता है। अब ग्रेप फ्रूट की बात करें कि 300 फल प्रति पेड़ मिलता है। लाइम, लाइम की बात करें तो 1000 फल प्रति पेड़ मिलता है। इस तरह से जो किस्म है, जो जाति है, उस अनुसार से उसका उपज प्राप्त होता है।
1: जी, तो किसान भाइयों इस प्रकार यहाँ पर बातें हुई नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में, और साथ ही बिहार में इसकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं उनकी बातें यहाँ पर हमने की हैं। तो आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा नींबू वर्गीय फलों के बारे में। और अगर आप व्यावसायिक तौर पर खेती करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है कि कितना उपज प्राप्त हो सकता है आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय को लेकर और हम हाजिर होंगे एक अलग विषय के साथ। तो फिलहाल आज के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं,
4: जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है

कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकालें और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर
मीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7।

का सूर्या और रेड लेडी। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी

0: गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें। क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहाँ पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहाँ पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टी विटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएँ। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी

0: से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 700-452-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 700-452-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियाँ कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और ये है आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन। जी हाँ, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन। और साथ ही हर रोज़ की तरह हम एक और खास विषय लेकर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हाजिर हैं, वो है हमारा धान में समेकित कीट प्रबंधन। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि धान जो है, अगर खाद्यान्न की बात करें, उसमें प्रमुख फसल है। हमारे बिहार की बात करें तो लोग जो है चावल बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। तो जहां तक बात होती है खेती की, धान की खेती उसी अनुसार करना होता है जहां पर मांग कितना है, जितना मांग हो उतना ही खेती हो। तो हमारे बिहार में इसका मांग ज़्यादा है, इसलिए इसकी खेती भी बहुत मात्रा में की जाती है। और जब खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो ज़रूरी होता है कि हम अपने फसल को कीट पतंगों से दूर रखें, क्योंकि ये हमारे फसलों को हानि पहुँचाते हैं, जिससे कि हमारी मेहनत बर्बाद होती है और हमें जितना आय, जितना मुनाफा मिलना चाहिए बाज़ार में से ले जाकर, वो नहीं मिल पाता है। तो आज इसी के प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो जिस प्रकार हमारा विषय है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम से कि धान में लगने वाले हानिकारक कीट कौन कौन से हैं।
1: जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि जो कीड़े हैं वो सभी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, और सभी फसलों की तरह धान फसल पर भी कीड़ों का प्रकोप होता है। और जो जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है, वही कीड़ों के बढ़ने में भी सहायक होता है। और कीड़ों की संख्या जुलाई महीने के बाद से ही बढ़ना शुरू हो जाती है, और सितंबर अक्टूबर महीने में इनकी संख्या बहुत चरम पर पहुंच जाती है, और फिर नवंबर महीने के बाद से धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगती है। धान के प्रमुख जो कीड़े हैं जो धान फसल को हानि पहुँचाते हैं, वे हैं तना छेदक, केसवर्म, गंधी कीट, पत्ती लपेटक, हरा एवं भूरा मधुआ, सैनिक कीट एवं ग्रास हॉपर।
0: जी, तो मैम तना छेदक कीट की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये किस प्रकार हानि पहुंचाता है धान की फसल को, और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं?
1: जी, तना छेदक कीट का पिल्लू गंदापन लिए हुए उजला रंग का होता है, और या पीला हरा भी होता है। तितली जो इसकी वयस्क होती है वो तितली होती है, और उसका अगला पंख नारंगी पीला रंग का होता है। उन पंखों पर एक एक काला धब्बा होता है। इस कीट के पिल्लू धान के पौधों में छेद कर उसकी गाभा को अंदर से काट देते हैं, जिसे पौधे का गाभा सूख जाता है एवं खींचने से आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहते हैं या मृत केंद्र भी कहते हैं। बालियां निकलने के समय भी तना छेदक कीट का प्रकोप होता है, और जब बालियों की अवस्था में इस कीट का प्रकोप होता है तो बालियां केवल सफ़ेद नज़र आती हैं और दाने खखड़ी हो जाती हैं। इस कीट से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, और बीजोपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 FS का 5 ग्राम या क्लोरपाइरीफॉस 20 ईसी का 4 ml प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। साथ ही खेत की सफाई, खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। जड़ की सफाई करने से भी कीट की संख्या में कमी हो जाती है। फेरोमोन ट्रैप 10 या 12 ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप, जिसे प्रकाश प्रपंच भी कहते हैं, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। इन ट्रैपों पर, यानी फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप पर, वयस्क मॉथ जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, इसमें फंसकर वो मर जाते हैं।
0: जी,
1: रोपनी के पहले पत्तियों के ऊपरी छोर को काटकर खेतों में रोपनी करना चाहिए, जिससे तना छेदक के कीट के जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
0: जी,
1: ट्राइकोग्रामा के 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 बार धान के पत्तियों पर प्रयोग करना चाहिए। कीटों का अधिक प्रकोप होने पर कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 4G या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
0: तो ये बातें हो गई हैं श्रोताओं हमारे किसान भाइयों तना छेदक कीट की कि आप कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप की बात की मैम ने, और इसके साथ ही कैसे आपको इसको पहचानना है, कैसे ये हानि पहुंचाता है, इसके बारे में भी बात की मैम ने। मैम अब आते हैं केश वर्म, जो कि आपने बताया कि मुख्य ये कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं, तो केश वर्म कीट कैसे हानि पहुंचाता है और इसको हम कैसे पहचान पाएंगे ये भी बता दें, और साथ ही साथ इसका प्रबंधन हम कैसे करें।
1: जी, केश वर्म कीट, इसे बुढ़िया कीट भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसे बुढ़िया कीट भी कहते हैं और भनभनिया कीट के भी नाम से जाना जाता है। ये पानी लगे खेतों में ज़्यादा लगते हैं और पत्तियों की हरियाली को खा जाते हैं, कभी कभी पत्तियों को लपेट कर नली जैसा बना लेते हैं, उसी के अंदर उसकी जो क्लोरोफिल हरियाली होती है उसको खाते रहते हैं, और ज़्यादा प्रकोप होने पर खेत बिल्कुल उजला दिखने लगता है, क्योंकि ये हरियाली खा जाते हैं इसलिए वो उजलापन जैसा हो जाता है। इस कीट से बचाव के लिए एक बड़ी रस्सी लेकर उसे किरासन तेल में डुबा देना चाहिए, फिर उसे दोनों तरफ से पकड़कर धान के खेत में एक तरफ से दूसरे

0: तरफ तक पौधे से सटाकर चलाना चाहिए, जिससे केसवर्म कीट खेत के पानी में गिर जाते हैं, और फिर पानी को खोलकर बहा देना चाहिए जिससे कीट वो खेत से बाहर आ जाते हैं।
1: जी, तो केशवर्म कीट के बारे में आपने जाना, और अब बात करते हैं मधुआ कीट और पत्र लपेटक कीटों के बारे में मैम, कि ये कैसे हानि पहुंचाते हैं और साथ ही इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
0: जी, मधुआ कीट दो तरह का होता है, एक तो हरा मधुआ और दूसरा भूरा मधुआ। हरा मधुआ पौधों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और जब इनका अधिक आक्रमण हो जाता है तो इनके पौधों से रस चूसने के कारण पौधे सूख जाते हैं। भूरा मधुआ पौधों के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं। ये पौधों की धड़ से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां झुलसी नजर आती हैं और दूर से जला जैसा दिखता है, और जिसके कारण इसे हॉपर बर्न भी कहते हैं। मधुआ कीट के प्रबंधन हेतु, यानी दोनों हरा मधुआ एवं भूरा मधुआ दोनों के प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप लगाना चाहिए, और रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में, या कोई भी नीम आधारित दवा का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पत्र लपेटक कीट पिल्लू, इसके पीले हरे रंग के होते हैं। ये कीड़े पत्तियों के किनारे को रेशम जैसे धागों से लपेटकर अंदर ही खाते रहते हैं, और जब इनकी अधिक प्रकोप होता है तो पौधे ठूंठ और बीमार जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि सभी पौधों को ये खा जाते हैं। इस कीट से प्रभावित खेत के फसल की ऊपरी पत्तियों की कटाई कर देना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव फसलों पर कम हो जाता है, क्योंकि ऊपरी छोर पर ही ये ज़्यादा खाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डायमेथोएट कीटनाशी का 1.5 ml प्रति लीटर या प्रोफेनोफॉस 50 cc का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी, तो मधुआ कीट के बारे में आपने जाना, साथ ही पत्र लपेटक कीट के बारे में, और अंत में कुछ और कीट बाकी हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं मैम। जैसे कि गंधी बग के बारे में आपने कहा था, सैनिक कीट के बारे में आपने कहा था, और ग्रास हॉपर, ये भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं धान की फसल को। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम अपने किसान भाई को ये बताना चाहते हैं कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, और साथ ही हानि और प्रबंधन के बारे में जानकारी।
0: जी, अभी तक तो जो भी कीट मैंने बताया, तना छेदक, केशवर्म, मधुआ कीट, पत्र लपेटक, ये सब ज़्यादातर पौधों के पत्तियों को खाते हैं। और अगला है गंधी कीट। गंधी कीट ये जो है, जब बाली लग जाती है तो दुग्धावस्था में ही ये बालियों से उसमें जो दूध बनते हैं उस दूध को चूसते हैं, जिससे दाने खकड़ी हो जाते हैं। और गंधी कीट जो है वो हरे एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं, और जहाँ पर ये दानों में रस चूसते हैं वहाँ पर भूरा दाग दिखाई पड़ता है। इसे हम वो पहचानते हैं कि गंधी कीट का आक्रमण हो गया है, और इससे जो है विशेष प्रकार का दुर्गंध तो निकलता ही है, वो भी ये इसका यह पहचान है। और इस कीट से प्रबंधन हेतु नीम बीज चूर्ण का जो है उसको छिड़काव करना चाहिए, जिससे गंधी कीट या का उसका जो है प्रबंधन हो जाता है, और बहुत प्रकोप की बहुत अधिकता में इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी,
0: और सैनिक कीट है, सैनिक कीट भी जब पौधे बड़े हो जाते हैं, बाली लग जाते हैं, तब ये जो बालियों पे ऊपर चढ़कर इनको काट गिराते हैं। और सैनिक कीट जो है इनको आर्मी वर्म भी कहा जाता है। इस कीट के जो पिल्लू होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं, और वयस्क पतंगा जो होता है मौत, जिसे मौत भी कहते हैं, वो भूरे रंग के होते हैं। और ये जो कीट होते हैं अंधेरा होने पर पौधों पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं, और दिन में ये पौधों की जड़ों में या जमीन के जो दरार होते हैं उसमें छिपे रहते हैं। और इसके नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG

0: का जो दानेदार कीटनाशी है उसका 2 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ग्रास हॉपर जो है वो हरे पीले रंग के होते हैं, 40 से 50 मिलीमीटर लंबा होता है। इसका प्रकोप अगस्त से अक्टूबर महीने में देखा जाता है। ये पत्तियों को किनारे से काट कर खाते हैं। ग्रास हॉपर के प्रबंधन हेतु खेत में पानी भर देने से इसके अंडे खत्म हो जाते हैं। मेढ़ की खुदाई कर देने से भी इसके अंडे जो है नष्ट हो जाते हैं। और जो नीम बीज चूर्ण है उसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। टीन पर कोल्टार लगाकर भी खेतों में चलने से ग्रास हॉपर टीन पर वो जो कोल्टार लगा रहता है उस पर आकर सड़ जाते हैं, जिससे वो कुछ तो मतलब सटकर मर भी जाते हैं और जिससे कि इनकी संख्या भी कम हो जाती है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की कि आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं, साथ ही आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ध्यान रखिए कि आप फसलों से अधिक मुनाफा चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी फसलों की देखभाल करें और उस समय जो कीट लग रहे हैं आप उन्हें पहचानें और उसका तुरंत से तुरंत प्रबंधन करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। श्रोताओं स्वागत है आपका 90.8 FM ग्रीन में और मैं लेकर आई हूं आपके लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हाँ, जहाँ तक किसानों की बात है तो किसान बहुत सारे यंत्र इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो आसानी से अपनी खेती कर सकें। तो आइए आज इसी यंत्रों के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर बात करें एक यंत्र यानी कि धान की कटाई के लिए जो बेहतर यंत्र होते हैं, मशीनें होते हैं, आज उनकी बारे में बात करेंगे हम। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंकज कुमार जी। ये हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि अभियंत्रण और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी कटाई के लिए जो बेहतर मशीनें, आज का हमारा जो विषय है, इसके लिए मशीनों के प्रकार कितने होते हैं?
2: ये जो धान काटने के लिए जो मशीनें अभी आ रही है उसमें 3 तरह का मशीन है। जैसे एक स्वतः चलने वाली मशीन, जिस मशीन पर अपना इंजन लगा हुआ होता है, 5 से 5.5 HP का इंजन उस पर लगा हुआ रहता है जो वह स्वतः चलती है और उससे 1 घंटा में 1 एकड़ की कटाई आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: और इसका मूल्य लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में अलग अलग कंपनी के हिसाब से आता है। और इस मशीन से हम 1.25 मीटर चौड़ाई का फसल काट करके, जैसे मजदूर एक खेत में पत्तन लगाते हैं उसी ढंग से एक लाइन से पत्तन लगा देता है ताकि मजदूर बाद में 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में वो अपना धान को उठा सके। और दूसरा मशीन है किसानों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, रीपर कंबाइंडर। रीपर कंबाइंडर का क्या है कि कटाई भी करे और धान का बंधाई भी करे। जैसे मजदूर को काटने के बाद बांधना पड़ता है, उसमें अलग मजदूर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि काटने के साथ साथ वो मशीन बंधाई का भी कार्य करता है। और इसका मूल्य लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में आता है। और इस मशीन से भी आप 1.25 मीटर चौड़ाई का आप कटिंग एक कर सकते हैं और 1 घंटा में ये भी मशीन 1 एकड़ की कटाई करती है।
1: अच्छा, तो यहाँ पर हमने इन मशीनों के बारे में जाना सर। और इसके बाद अगर छोटे किसान, बड़े किसान और मंझोले किसानों को 3 भाग में बांटा जाता है तो इनके लिए मुझे लगता है कि लागत के अनुसार जो अलग अलग मशीन अवेलेबल होंगे तो उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: छोटे किसान के लिए जो ये रीपर स्वतः चलने वाली मशीन है, इसको रीपर भी कहते हैं, हार्वेस्टर भी कहते हैं, ये एक

किसानों के लिए है जो कि छोटे छोटे खेत में आसानी से इसका ये कार्य करता है, और रीपर कंबाइनर भी छोटे किसान के लिए है, और मध्यम किसान

0: और ये जिस टाइप से आप कल्टीवेटर को उठाते हैं और गिराते हैं उसी ढंग से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि फसल कहाँ से काटना है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, और बड़े किसान के लिए जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर भी दो तरह का होता है। जैसे एक कंबाइंड हार्वेस्टर है जो ट्रैक्टर चालित होता है, और दूसरा होता है क्या कि स्वतः चलने वाली, उस पर 110 एचपी का इंजन लगा हुआ होता है। तो इस मशीन से अगर आप कटिंग करते हैं तो लगभग 7 फीट से 8 फीट का चौड़ाई का ये मशीन आता है, इससे आप फसल काट सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर का जो चक्का होता है वो कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन में लग जाता है नीचे, और उस मशीन को ट्रैक्टर के इंजन को हार्वेस्टर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और वो ट्रैक्टर चालित हो जाता है।
1: अच्छा
0: और इससे आप इस मशीन से जब आप कटिंग करेंगे तो इसमें आप 3 से 4 हेक्टेयर यानी कि पर डे आप उससे आप कटिंग कर सकते हैं, यानी कि कटाई भी कर सकते हैं। कंबाइंड हार्वेस्टर का मतलब होता है एक साथ फसल की कटाई, थ्रेसिंग और क्लीनिंग, यानी कि तीनों काम एक साथ करके आप सिर्फ भूसा जो है वो खेत में वो डंठल के नुमा वो गिरा देता है। और ट्रैक्टर चालित होने के चलते इसका थोड़ा कार्य क्षमता कम है, क्योंकि स्वतः चलने वाली जो कंबाइंड हार्वेस्टर होता है वो 110 एचपी का होता है। इससे 13 फीट से लेकर के 14 फीट तक कटिंग एक समान इससे किया जा सकता है। ट्रैक्टर चालित रीपर से आप जो है 60 से 70% लेबर आप जो है बचा सकते हैं, 40 से 50% आप अपने जो मैनुअल जो आप माने कटाई करते हैं उससे आप जो है इसके कंपैरिजन में आप 40 से 50% कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और ग्रेन कंबाइंड हार्वेस्टर जो होता है, जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड कंबाइंड हार्वेस्टर जिसको आप कहते हैं, वो 3 से 4 हेक्टेयर पर डे आप इसे कटाई करिएगा। और सेल्फ प्रोपेल जो कंबाइंड रीपर ये होता है, कंबाइंड हार्वेस्टर होता है जिसको कहते हैं आप स्वतः चलने वाली मशीन, इससे 5 से 6 हेक्टेयर पर डे आप उससे कटाई कर सकते हैं, कटाई थ्रेसिंग और क्लीनिंग यानी सफाई आप कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब अभी हम जानना चाहेंगे कि अगर कार्य क्षमता की बात आती है तो 1 घंटे में इन मशीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी?
0: 1 घंटे में जैसे कि आप हम बताए ना 5 से 6 हेक्टेयर पर डे, यानी कि पर डे का मतलब होता है 8 घंटा में आपको 5 से 6 घंटा 5 से 6 हेक्टेयर आपको 8 घंटा में आपका इसको कटाई करेगा।
1: अच्छा
0: और इसका इस मशीन का मूल्य लगभग 16 से 17 लाख रुपया होता है। और ट्रैक्टर ऑपरेटेड में क्या होता है कि जो ट्रैक्टर चालित कंबाइन हार्वेस्टर होता है इसका थोड़ा प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि आपको 6 से 7 लाख रुपया ट्रैक्टर का होता है और लगभग और 8 लाख से लेकर के 9 लाख रुपया तक कंबाइन हार्वेस्टर का होता है। अगर दोनों को अगर आप लगा देते हैं तो लगभग उतना ही हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जब भी आप फसल की कटाई करेंगे, रबी या खरीफ या जो भी गर्मा में आप मक्के का, तो आप बीच में जो आप समय बचता है जब कटाई नहीं होता है, तो ट्रैक्टर चालित कंबाइन हार्वेस्टर को अपने शेड में रख करके और ट्रैक्टर को नीचे उतार करके आप सालों भर उससे आप काम ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप 6 से 7 लाख जो ट्रैक्टर में लगा हुआ है वो आपका काम करता रहेगा, और लगभग 7 से 8 लाख रुपया में जो कंबाइन हार्वेस्टर उस पर है वो आपको सिर्फ कटाई में ही काम करेगा।
1: तो यहाँ पर धान की कटाई के लिए जो मशीनें हैं उनके बारे में जाना, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई और इसके कार्य क्षमता के बारे में बताया, और छोटे और बड़े किसानों के लिए कौन कौन से मशीन हैं अवेलेबल हैं बाजार में वो बताया, इसके परिचालन मूल्य के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे जुड़े किसान भाइयों बातें हम लेकर हमेशा आते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद मैडम,
1: और आगे किसान भाइयों आपसे मुलाकातें होंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए उन्नत कृषि, और आज भी आप सभी के लिए कुछ उपयोगी बातें होंगी यहां पर, और आप सभी को कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी नॉलेज के साथ मैं लेकर आई हूं यहां पर डॉक्टर संजय कुमार जी को, जो है सह प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब, हमेशा देखा गया है जब खेती की बात आती है और कहीं ना कहीं जल उसका एक मुख्य यूं कहें, जैसे हम खाना बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, तो खेती का कहीं ना कहीं ये एक इंग्रेडिएंट्स के तौर पर काम आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम हो रही है, और इस सिचुएशन में जल जो है प्रबंधन करना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सर, सबसे पहले तो जल प्रबंधन के तरीके हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो उन सारी बातों को हम यहाँ पर रखेंगे, अपने किसान भाइयों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जल प्रबंधन होता क्या है?
1: एक्चुअल जल एक ऐसा प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।
0: जी,
1: जल पौधों की समस्त जीवन क्रियाओं एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने में फसलों की सामयिक एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति आवश्यक है। हम अगर जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन का तात्पर्य असिंचित क्षेत्रों में जो अपवाह जल नियंत्रण है, जल संरक्षण, जल भंडारण तथा उचित कृषि विधियां अपनाकर इसके दक्षतापूर्ण उपयोग करने से है। वहीं जहां पे वर्षा अधिक हो रही है या वाटर लॉक सिचुएशन है, वहां पे अधिक पानी के निकास एवं उचित कृषि पद्धति अपनाने से है, तथा सिंचित क्षेत्रों में फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने, अंतःस्रवण, अपवाह एवं बाष्पन से होने वाली जन हानि के नियंत्रण से है, जिससे लगातार सिंचाई से भूमि पर विशेष कुप्रभाव हुए बिना उपलब्ध जल से अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। और ये हम कह सकते हैं कि सिंचाई जल की व्यवस्था वास्तविक रूप से मृदा पर निर्भर करती है। मृदा किस तरह से गठित है, मृदा की संगति क्या है, मृदा में पोरोसिटी क्या है, सिंचाई हमें कितनी सिंचाई देनी है, सिंचाई की क्या गहराई होनी चाहिए एवं सिंचाई की कौन सी विधि हम अपना रहे हैं, इन सब चीज़ों पर जल का प्रबंधन निर्भर करता है।
0: तो सर ने बताया कि सिंचाई की विधि भी इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जल प्रबंधन के लिए। तो सर, आपने बताया जल प्रबंधन क्या है, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे सर कि जल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है?
1: देखिए, जल प्रबंधन का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जल ऐसा चीज है जो पौधों को हमेशा जरूरत पड़ती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति हम करते हैं उस पौधे को सूखे से बचाने के लिए, अगर ठंडा का दिन है तो उसे पाले से बचाने के लिए, मृदा एवं वायुमंडल को ठंडा रखने के लिए, एवं वो मिट्टी जहाँ पे लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है उस मिट्टी को लवण से दूर, लवण की मात्रा को कम करने के लिए भी हम जल देने का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ हम भूमि की सतह को मुलायम करते हैं, जिसके कारण है जो कि हमारे जुताई में आसानी हो।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मृदा को लवण से दूर करने के लिए, साथ ही मिट्टी को मुलायम करने के लिए, ताकि किसान भाइयों को जुताई करने में आसानी हो, तो ये उद्देश्य है जल प्रबंधन का। आगे और भी बातें होंगी डॉक्टर साहब से, हम आगे जानना चाहेंगे कि धान की खेती में सबसे पहले कि सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई की विधि कैसी होनी चाहिए, जिस तरीकों को अपनाकर हमारे किसान भाई आसानी से जल प्रबंधन कर सके।
1: सामान्यतः धान की फसल में वर्षा न होने पे या कम होने पे, जब मृदा में नमी सेचुरेशन की अवस्था से कम होने लगे, मतलब संतृप्त अवस्था से कम होने लगे, तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा के पानी के अच्छे उपयोग के लिए हमें चाहिए कि धान की खेत की मेड़ खूब मजबूत होनी चाहिए। अब हम सिंचाई की विधियों की बात करें तो एक विधि है कंटिन्यूअस फ्लडिंग की, जहाँ पे जल प्लावन की स्थिति हम लगातार बनाते हैं। इस विधि में खेत में सदैव पानी को हम भर के रखते हैं ताकि मृदा संतृप्त रहे। मृदा अपचयन के कारण खाद्य तत्वों की उपलब्धता इस स्थिति में बढ़ जाती है और खरपतवार नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण है जो कि फसल का डेवलप

0: ज्यादा अच्छा होता है। मृदा की सतह पे हम सामान्यतः 2.5 से 5 सेंटीमीटर पानी को रोपनी से फसल के पकने तक की अवधि के लिए हम इसमें रखते हैं। विशेष परिस्थिति में जहाँ जीवांश की मात्रा अधिक होती है वहाँ और जहाँ जल निकास नहीं होती है वहाँ अगर ज़्यादा दिन तक ठहरा हुआ पानी रहता है तो उस स्थिति में पौधों में कुछ रोग लगने के कारण होते हैं। इस स्थिति में सामान्यतः देखा गया कि पानी के स्तर अधिक होने के कारण कभी कभी कल्लों की संख्या कम होती है और पौधे की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है जिससे उसके गिरने की संभावना बढ़ती है और फसल का उत्पादन कम होता है। दूसरी अवस्था है जहाँ कंटिन्यूस फ्लडिंग हो लेकिन साथ ही साथ हम ड्रेनेज जल निकास की सुविधा रखते हैं। इस विधि में फसल की सभी अवस्थाओं में पानी भरा रहता है लेकिन बीच में हम एक दो बार जल निकास करके मृदा को असंतृप्त करते हैं। इस प्रकार के जल निकास से मृदा के घोर अपचयन की अवस्था में सुधार होता है, विषैले पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा रोगों में कमी आती है, जड़ों का विकास में सहायता मिलती है तथा फसलों के गिरने की संभावना कम होती है जिसके कारण फसल का उत्पादन अच्छा होता है। एक तीसरी विधि होती है कंटिन्यूस सैचुरेशन का, जहाँ पे हम लगातार जल संतृप्त अवस्था में रखते हैं। इस विधि में फसल के दौरान जल मृदा को संतृप्त अवस्था से नीचे नहीं जाने देते। इस विधि में फसल की जल मांग पूरी हो जाती है लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अवगुण है कि इस स्थिति में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिस कारण श्रम की मांग बढ़ती है और श्रम की मांग जब ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ देखा जाता है कि उपज जो लागत है लागत में वृद्धि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संतृप्त जल प्लावन और या हम कहें कंटिन्यूस फ्लडिंग जहाँ हो और साथ ही साथ बीच में जल निकास की व्यवस्था हो वो विधि जल प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त है।
1: तो सर ने बताया किसान भाइयों यहाँ पर कि जल निकास की व्यवस्था जहाँ पर होगी वहाँ पर अच्छी तरीके से जल प्रबंधन किया जाएगा। धान की खेती में सिंचाई की विधि थी ये। और इसके बाद सर यहाँ पर कुछ बातें होती है ध्यान देने योग्य बातें, जो कुछ छोटी मोटी बातें होती है जिससे अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं भी रुकावटें नहीं आती है जल प्रबंधन में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल प्रबंधन के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं क्या जो जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए।
0: देखिए जल प्रबंधन में जल धान है जो कि पूरी तरह से हम जानते हैं कि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। संपूर्ण जीवन काल में हम कहते हैं कि खेत में जल का खड़ा रहना अति आवश्यक है और ये अनौक्षिकृत स्थिति होती है। इस कारण स्फूर्त लोहा और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है, खरपतवार की संख्या में कमी आती है, इससे हम धान को एक सही वातावरण देते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि धान के लिए दैनिक जल की आवश्यकता 6 से 10 मिलीमीटर प्रतिदिन है। इस प्रकार हम कहते हैं कि धान के संपूर्ण जीवन काल में 1200 से 1500 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है और सामान्यतः ये पाया गया कि अगर हमको 1 किलोग्राम धान की का उत्पादन करना है तो हमें 2000 से 2500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर हम जल की आवश्यकता की बात करें कि कब कब जल की आवश्यकता होती है तो ये देखा गया कि जनरली हम पौधशाला तैयार करने के लिए हमें 50 से 60 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है लेकिन खेत की तैयारी के दौरान 200 से 250 मिलीमीटर एवं रोपाई से पैनिकल निकलने तक 400 से 550 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पैनिकल निकलने से फूल होने तक सामान्यतः 400 से 450 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है एवं पुष्पन से पकने तक 100 से 150 मिलीमीटर। अगर हम गहराई की बात करें तो सामान्यतः हम कहते हैं कि जब आप धान लगाते हैं तो जल की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये अवस्था हमको शुरू के 7 दिनों तक कम से कम मेंटेन रखना चाहिए। पुनः हम कहते हैं कि कल्ला निकलने के समय 22 से 45 दिन तक भी जल की स्थिति जल ज़्यादा नहीं रखना चाहिए लेकिन जब हम बात करें बाली निकलने की या पुष्पन की अवस्था उस समय हम 4 से 5 सेंटीमीटर जल की गहराई रखें तो वो उपयुक्त होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पकने की अवस्था में हमें जल पकने की अवस्था या कहें पुष्पन की अवस्था के 3 सप्ताह के बाद हमको खेत से पानी पूरी तरह से निकाल देना चाहिए एवं उसको केवल संतृप्त अवस्था में ही रहने देना चाहिए।
1: तो कुल मिलाकर बातें हुई यहाँ पर डॉक्टर साहब की हमें जल की मात्रा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि धान की क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं।
0: देखिए

0: क्रांतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिस समय फसल को उस चीज की आवश्यकता विशेषकर हो। जल की क्रांतिक अवस्था का मतलब हो गया कि उस अवस्था में यदि नमी की कमी होगी तो फसल के उत्पादन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उपज
1: नमी रहना अनिवार्य है
0: या बहुत जरूरी है नमी रहना। अगर नमी की मात्रा घट जाएगी तो उपज में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। अब जब धान की क्रांतिक अवस्था की बात करें तो कल्ला निकलने का समय पहली क्रांतिक अवस्था है, दूसरा हम कहें बाली निकलने की अवस्था, फिर हम कह सकते हैं बाली निकलने के समय एवं फूल लगने के समय। ये चार अवस्था है जो जहाँ पे नमी की स्थिति कम से कम संतृप्त अवस्था में होनी चाहिए। सामान्यतः देखा गया कि अगर सक्रिय कल्ले निकलने की अवस्था में नमी की मात्रा घट जाती है तो उपज में 30-40% की कमी आती है। वहीं अगर रिप्रोडक्शन स्थिति में नमी की कमी हो जाती है तो हम उपज में 50-60% की कमी भी दर्ज कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आप इस बात का खास ख्याल रखें कि नमी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए अगर आप धान की अच्छी तरीके से खेती करना चाहते हैं तो। और इसके बाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल की दक्षता बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
0: सामान्यतः जल की दक्षता बढ़ाने का मतलब हुआ कि हम किस तरह से कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा उपज ले सकें। सामान्यतः हम देखते हैं जितना जल देते हैं, जल का बहुत सारा भाग है जो कि या तो बह के निकल जाता है या कहीं एक जगह पे जमा हो जाता है। तो दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें कदवा एवं समतलीकरण करें अपने खेतों की। अगर खेत समतलीकरण करेंगे तो खेत में एक समान पानी रहेगा और उस स्थिति में हमें जल की आवश्यकता कम होगी। सामान्यतः हमको जब खेत की तैयारी करें तो हमको ट्रैक्टर चालित केज व्हील सहित एमबी प्लाउ से जुताई करनी चाहिए। सामान्यतः एमबी प्लाउ से एक जुताई एवं डिस्क हैरो से दो बार पडलिंग करने से फसल की स्थापना अच्छी होती है। सामान्यतः ये भी करें कि रोपा के समय खेतों में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी न रखें, क्योंकि अगर पानी अधिक रहेगा तो रोपाई की गहराई ज़्यादा होगी, परिणाम स्वरूप कल्ला कम निकल सकता है। रोपाई के बाद अगले 7 दिनों तक हम 2 सेंटीमीटर खड़ा जल अवश्य रखें। उसके बाद पूरी फसल की अवस्था तक आप चाहें तो 5 सेंटीमीटर खड़ी जल रख सकते हैं। जड़ विकास एवं कल्ला निकलने के समय जल की कमी होने से कल्ला कम निकलता है, जिसके कारण पौधों की संख्या में कमी आएगी और अंततः उत्पादन पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बूटिंग और पकने की स्थिति में 5 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा खड़ी जल रहने की अवस्था में जल की हानि होगी, जड़ की हानि होती है एवं लीफ में सेनेसेंस हो सकता है, जिसके कारण बाली में भरे हुए दानों की संख्या कम होगी, मतलब आपका उत्पादकता पे असर पड़ेगा। समय के अनुसार हमको जल निकास की अवस्था भी रखनी चाहिए एवं कटाई के 10-15 दिन पहले हमको सिंचाई रोक देनी चाहिए। तो हम धान के जल प्रबंधन में इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारी जल की दक्षता बढ़ेगी।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि रोपाई की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल्ला कम आएगा। और भी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया आप सभी को, और आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों और बहनों की डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और धान में जल प्रबंधन आप अच्छे तरीके से करेंगे और धान की खेती बहुत ही अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: आगे और भी बातें होती रहेंगी हमारे किसान भाइयों से। अगले विषय, अगले चर्चा के साथ आप सभी से यूं ही मिलती रहूंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ, और हर रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ खास बातें, क्योंकि आपको पता है कि जब उन्नत कृषि कार्यक्रम आप सभी के सामने हाजिर होता है तो डेफिनेटली आप सभी के लिए कुछ खास बातें हाजिर होंगी। तो आज ऐसे ही एक विशेष जो हमारा विषय है वो है धान में खरपतवार प्रबंधन। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और वैसे मैं बता दूं कि हमारे किसान भाइयों और हमारे श्रोतागण, आप सभी को बता दें कि जब हम खेती करते हैं तो ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम अपने फसलों की सुरक्षा का

0: खास ख्याल रखें। और ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है कि खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अपनी फसलों को खरपतवार से कैसे बचाएं और किस तरीके से बचाएं, तो इसे ही कहते हैं खरपतवार प्रबंधन। और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर एस के चौधरी। तो सबसे पहले जब बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों ज़रूरी है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, बिहार में धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ मौसम में की जाती है, परंतु यहाँ इसकी उपज क्षमता प्रति हेक्टेयर औसत से बहुत कम है। और तो और बिहार में लगभग 35 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण है इस खेती में तकनीकी ज्ञान की कमी। धान की खेती प्रायः 3 प्रकार की जमीन में की जाती है। बिहार में इस खेती 25% ऊपरी जमीन में, 25% मध्यम जमीन में और 40% निचली जमीन एवं 10% गहरे पानी वाले क्षेत्र में की जाती है। विगत वर्षों में वर्षा की कमी होने के कारण या आवश्यकता अनुसार समय पर वर्षा नहीं होने पर धान की रोपाई समय से नहीं हो पाती है, तथा किसान सही समय सही किस्म के चुनाव, बिचड़े की तैयारी इत्यादि ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है तकनीकी ज्ञान से कि किस जमीन में किस प्रकार की किस्म का चयन करें, कितना खाद दे, कितनी पानी की व्यवस्था करें, उसका कीट व्याधि का सुरक्षा किस प्रकार करें, इस सब में तकनीकी किसान को अभाव रहता है। और तो और मेरा आज का विषय है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन एक ऐसा है जो अगर नहीं करेंगे, अगर समय से नहीं किए तो इसमें उपज में बहुत कमी हो सकती है। और तो जो धान सीधी बुआई होता है उसमें 100% तक का यील्ड जो उपज है वो कम हो जाती है,
0: मतलब कि जो 100% यील्ड है वो उपज कम हो जाती है अगर इसका प्रबंधन ना करें तो। और इसलिए हमारे किसान भाइयों को घाटा भी हो सकता है अगर ये व्यवसायिक तौर पर अगर फसलों को बेचने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं बाजारों में, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि इसलिए 100% यील्ड के लिए आपको खरपतवार प्रबंधन करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आप आगे भी कुछ कह रहे थे,
1: बोल रहे अभी जो खरपतवार प्रबंधन है इस पे अगर समय से कर लिए तो उपज बढ़ेगा ही, साथ साथ इसका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे प्रभाव पड़ता है।
0: हाँ।
1: जिस खेत में बहुत से खरपतवार रहता है उसमें उपज तो कम होता ही है, लेकिन उस जो उपज का जो चमक जो होता है धान की वो भी कम हो जाती है, इसका मार्केट वैल्यू या उसका प्राइस दूसरे से कम हो जाएंगे।
0: और हमारे किसान भाइयों का मेहनत भी बेकार चला जाता है, जितना वो मेहनत करते हैं उतना फसल उन्हें प्राप्त भी नहीं हो पाता है।
1: तो हमारे बिहार में मुख्यतः 2 प्रकार के धान लगाते हैं, एक तो जिसमें समय की कमी हो तो सीधी बुआई करते हैं, दूसरा नर्सरी लगा के उसको कदवा करके फिर से ट्रांसप्लांटिंग करके लगाते हैं। तो दोनों विधि से खरपतवार नियंत्रण अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि देखेंगे, पहला हम बता देते हैं धान का जो खरपतवार है सीधी बुआई से लगाने वाले धान में किस तरह से करें, तो मैं एक करके बताता हूँ जो कि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ध्यान में रखना चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। धान को बीज को खेत में डालने के बाद तथा उसको अंकुरण होने के पहले एक बहुत ही कारगर दवा है, नाम है पेंडीमिथिलीन, जो कि ये प्री इमरजेंस है। प्री इमरजेंस कहने का मतलब है जो उसमें मतलब वो खरपतवार निकलने से पहले आप उसमें डाल दीजिए, स्प्रे करिए, जो कि मार्केट में स्टॉम्प 35-30 इसी के नाम से मिलता है।
0: अच्छा।
1: इसको आप 1333 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में नमी होने पर छिड़काव अवश्य रूप से करें। या अगर ये दवा अगर बाजार में नहीं उपलब्ध है तो इसका एक अलग है ऑक्सीड्राइजिल, जो मार्केट में टॉप स्टार या रेफेट नाम से मिलता है, ये 50 ग्राम प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से स्प्रे करें। इससे बहुत हद तक खरपतवार नहीं निकलेंगे खेत में। उसके बाद धान जब अंकुरण हो गया, धान खेत में लग गया, उसके बाद भी अगर आप ठीक से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो एक भी नहीं आएगा। धान अंकुरण के बाद निम्नलिखित खरपतवार नाशी है जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं या चाहे बोलते हैं, ये किसान आप लोग खेत में स्प्रे निश्चित रूप से करें। धान में

0: वैसे तो बहुत तरह से खरपतवार निकलते हैं, और तो और खरीफ मौसम में खरपतवार निकलना एक नेचुरल या चाहे प्राकृतिक यह है, जो उसमें सारे क्लाइमेटिक कंडीशन फुलफिल करता है। तो इस विधि से भी खरीफ में ज़्यादा घास निकलता है अपेक्षाकृत रबी मौसम में। तो धान अंकुरण के बाद निम्न 4-5 खरपतवार नाशी है जो कि मैं बता रहा हूँ। पहला है विष पैरीबैग सोडियम, जिसको मार्केट
1: बिस्पैरबैक
0: में
1: सोडियम।
0: नॉमनी गोल्ड के नाम से मिलता है। ये 10% ईसी से मार्केट में है उपलब्ध। आप इसको 80 से 100 ml प्रति एकड़, या नहीं तो 250 ml प्रति हेक्टेयर को आप स्प्रे करिए, जो कि 15 से 20 दिन बाद आप इसको खेत में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है फिनोक्सोप्रॉप, जो कि 9.3 EC के मात्रा में मार्केट में मिलता है, जो 400 ml प्रति एकड़ या चाहे 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में स्प्रे करें, ये धान को अंकुरण के 25 दिन के बाद। उसके बाद तीसरा दवा है इथॉक्सीसल्फिरान, जो कि मार्केट में सनराइज के नाम से मार्केट में मिलता है, जो कि 40 का दर जो है 40 ml प्रति एकड़, या नहीं तो 100 ml प्रति हेक्टेयर। ये चौड़ी पत्ती के या मोथा कुल के लिए है, जो कि 15 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा दवा है एजीम सल्फिरान, जो कि मार्केट में 50 WDG के नाम से उपलब्ध है। ये 1820 ml प्रति एकड़, नहीं तो 50 ml प्रति हेक्टेयर, ये सिर्फ मोथा कुल के लिए है। ये भी 25 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये सब तो थोड़ा दवा महंगा होगा। एक सबसे किसान भाइयों के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ती दवा है 2,4-D इथाइल ईस्टर, जो मार्केट में 38 EC के नाम से मिलेगा। ये चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए है। इसको आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करिए 20 से 25 दिन के बाद। ये जितने भी दवा के नाम बताएं, ये धान में सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है।
1: सीधी बुआई के लिए।
0: उस सीधी बुआई कहने का मतलब, इसमें नर्सरी नहीं लगाते हैं, चाहे ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं, बस धान में ये प्लॉइंग करके आप उसमें या तो चाहे लाइन स्वइंग से, या नहीं तो स्प्रे मतलब छिड़काव विधि से आप धान लगा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: धान की दूसरी विधि है लगाने की, नर्सरी पहले लगाइए 20 से 21 दिन के बाद उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांटिंग करिए, जो कि कदवा करके खेत में लगाते हैं डिफरेंट स्पेसिंग में, 20 से 25, या 25x25, या 15x25। इसी हिसाब से दूसरा विधि है धान के नर्सरी विधि से लगाने के लिए खरपतवार नाशी अलग है। अगर आप धान को नर्सरी लगा लिए हैं, 20 से 25 दिन हो गया है, तो आप उसको उखाड़ के और मेन फील्ड जो कदवा किए हैं उसमें आप लगाएंगे, उसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग अलग होता है। उसमें सबसे प्रमुख जो दवा है वो है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो मार्केट में मीचेट नाम से मिलता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है 50 EC के नाम से मार्केट में मिलेगा। मीचेट 50 EC, इसका जो दर है 1.5 लीटर, एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये आप स्प्रे करिए 2.5 लीटर से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। ये 4 से 5 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब आप चार ट्रांसप्लांटिंग कर देने के 4 से 5 दिन के बाद आप इसको बालू में मिक्स करके और अच्छे तरीके से मिला के इसको खेत में छिड़काव करें। और ये ध्यान रखिएगा, जो खेत में 1 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, तब इसको आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत बहुत सारे जो खरपतवार है वो इससे नहीं निकलेंगे, इसके निकलने से बाद। अगर ब्यूटाक्लोर नहीं मिले तो पेट्राक्लोर है, जो मार्केट में रेफेट नाम से मिलता है, 750 ग्राम AI है, 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर को। ये भी 3 से 7 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, धान का 3 से 7 दिन के बाद लगाने के बाद इसका स्प्रे करिए। दूसरा तीसरा दवा है ऑलमिक्स, जो कि इसमें दो खरपतवार नाशी का कॉम्बिनेशन है। पहला है क्लोरीमिरॉन और दूसरा मेट सल्फिरॉन। ये एक जो डब्बा में आता है 4 यूनिट का रहता है, वो 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। ये 15 से 20 दिन के बाद आप इसको ट्रांसप्लांटिंग में स्प्रे कर सकते हैं।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और ये भी बताया कि कब करना चाहिए, दवाओं के बारे में बताया कि कौन कौन से दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि बिस्पारबिक सोडियम के बारे में कहा, इथॉक्सी सल्फ्यूरान के बारे में कहा। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपने बहुत सारी

0: देखिए डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर खरपतवार प्रबंधन करते हैं, इसका लाभ हम जानना चाहेंगे। आपने बताया जैसे कि 100% यील्ड होता है, इसके अलावा कुछ लाभ अगर हो तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा।
1: खरपतवार नियंत्रण करने से बहुत से ही लाभ हैं। खरपतवार क्या है, जो किसान भाइयों नहीं लगाते हैं वो अपने आप जो उपज जाता निकल आता है उसको खरपतवार कहते हैं। अगर खरपतवार खेत में रहेगा तो इसका एक तो लाभ ये है, सबसे जो प्रमुख लाभ है इसका उपज बढ़ेगा। दूसरा अगर लाभ देखेंगे तो दूसरा, जो आप खाद देते हैं, जो आप उर्वरक देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, वो क्या होता है, अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो खरपतवार का नेचर या चाहे आदत होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करने का। तो आप जो खाद देंगे धान के लिए वो क्या करेगा, खरपतवार ले लेगा। तो आपको समुचित जो उपज होना चाहिए जितना खाद देने से, उसमें कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है, और तो और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट, धान को नहीं जाके चल जाएगा खरपतवार में। तीसरा फायदा ये है, जो धान में प्रमुख जो होती है उसका नेचर होता है टिलरिंग देने का। टिलरिंग तभी देगा जब उसमें स्पेस होगा, जगह होगा। और खरपतवार क्या करता है, जो बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई खेत में बहुत तेजी से होता है, तो वो धान को बहुत कम स्पेस देता है, जिससे कि टिलर निकलने का जगह ही नहीं छोड़ता है। और उसके अलावा बहुत सा है, जैसे पानी दिए, पानी की जो धान को चाहिए वो खरपतवार ले लेगा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फायदा है, अगर खरपतवार नियंत्रण कर देंगे तो ये सारे जितना भी लाभ है वो खरपतवार को न जाके धान को, धान अगर धान में अगर आप खाद देंगे अगर बिना खरपतवार का नियंत्रण किए हुए, तो उसमें कंट्रोल नियंत्रण होने के बजाय ज़्यादा और तेज़ी से ग्रोथ हो जाएगा।
0: अच्छा, तो इसीलिए ज़रूरत है खरपतवार प्रबंधन की, और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप खरपतवार प्रबंधन, यानी कि आप फसल लगाते हैं तो आप टाइम टू टाइम समय पर आप देखते रहें कि फसलों में अगर खरपतवार आ रहे हैं तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो इसलिए इसका प्रबंधन ज़रूर करें और ख़ास ख्याल रखें अपने फसलों की सुरक्षा का। तो और भी बातें, और भी विशेष चर्चाओं के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे आप सभी के सामने। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, कि इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना जरूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी, या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी,

मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है, हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से, उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा।
लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को

0: नहीं सहती।
1: मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही हैं, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, ना सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए, आपकी बेटी, आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे, अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना। आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा, समझेगा, समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है।

कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है, हर पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना।

अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनः रोपाई कर दें और

उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें, मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी दें।

0: नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पर ऊँचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही

0: मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ और बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहाँ पर ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जाँच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और चीज जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 700-452-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 700-452-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त RJ उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच

0: एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमता की, यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो जमाना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो AI है ना वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती है। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात की AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है,
1: मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से
0: आम आदमी के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं, तो AI जब कदम रख रहा था तो, या अभी भी जिनके लिए AI नया है तो उनके बारे में, AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं, AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई, टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के, ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
1: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन न समझे, तो चीजें आसान हो जाएगी।
0: बिल्कुल, ये जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीजें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी, इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें, तो AI के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही AI

0: आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए, जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज़ को एआई बहुत तेज़ी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज़्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सबके डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है, और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं, और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप के आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए, कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद, पानी, जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है, या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है। उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती?

है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और ट्रिपल आईटी के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है।

0: nekvima. फ्लाइंग ऑफिसर शेखों अपने अपूर्व रण कौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
1: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर शेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर शेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
3: सर, अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूँ। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया, ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर देखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
0: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और अलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के 4 विमान बचे थे। 2 विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने बचे हुए 4 विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
3: ओए कायरो, ओए भागते कहाँ हो? हिम्मत है तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
3: कंट्रोल रूम, दिस इज शेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर, अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

फ्लाइंग ऑफिसर सेख हों, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना?
4: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
7: So, see you at the vaccination center soon.
8: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
10: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
11: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
10: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
13: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
14: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
13: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
15: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
13: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
16: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
13: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगा?

0: पानी की।
1: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
2: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें।